0: वेरी गुड.
1: अगर आपकी इनकम जितनी नोटिस ऑफ असेसमेंट 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट में जितनी कम है उतनी ज्यादा बेनिफिट है. 30 से लेके 100,000 डॉलर तक की फंडिंग होती है जिसमें अप्रोक्सीमेटली आधा पैसा तो ग्रांट है जो वापिस ही नहीं करना आपने.
0: ठीक है.
1: बाकी फैमिली साइज पे और अगर आपके बच्चे ज्यादा आपको ज्यादा फंडिंग आती है तो आप लाइक हमें कॉल करें, अपना असेसमेंट कराएं, हमारे ऑफिस आए 4372643175.
0: अच्छा वैसे आपने आपकी फीस तो तकरीबन एक ही जैसी रहती है ना, मतलब आप 199 to 499. किसी क्लाइंट के बैंक में सबसे ज्यादा फंडिंग कितनी देखी आपने अब तक?
1: पहले मैंने देखी थी जो हमारे क्लाइंट थे उनके चार बच्चे थे, चारों 12 साल से नीचे के थे.
0: ओके.
1: तो हमने मैक्सिमम फंडिंग देखी थी अप टू 100,000 डॉलर. हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ रहे थे, फुली ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, अभी भी एनरोल्ड है वो.
0: अच्छा.
1: फुली ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, इजी टू पास कोर्स कर रहे हैं, घर के कंफर्ट से कर रहे हैं, 3 घंटे लगा रहे हैं, पूरा दिन नहीं खराब कर रहे हैं अपना.
0: अच्छा, ठीक है.
1: और 100,000 डॉलर वो हासिल कर चुके हैं हस्बैंड वाइफ मिलके, फुली ऑनलाइन आसान सा कोर्स करके बिना एग्जाम्स के. अब मजे की बात, उस 100,000 में से 50,000 तो ग्रांट है जी, वापिस ही नहीं करना
0: उन्होंने जो. जबरदस्त.
1: और बाकी जो 50,000 उनके पास आया है वो 0% पे है और 1.5 साल बाद वापस स्टार्ट करना है, 1.5 साल बाद वापस स्टार्ट करना है और 1.5 साल बाद ही उस पे 2.5% पूरे साल का ब्याज लगेगा.
0: और वो भी इंस्टॉलमेंट वापस करना है,
1: वो भी 10 साल की इंस्टॉलमेंट है जी. $65 ब्याज है 50,000 पे एक महीने का सिर्फ.
0: सही बात, जबरदस्त हो गया.
1: और बाकी 800 लेकिन कमाल हो गई. आज आपके शो से हमारे पास आए फैमिली ऑफ 10, उनके 8 बच्चे हैं मियां जी के.
0: अच्छा.
1: तो बिल्कुल तो लगा जब एस्टीमेट निकाल रहे थे ना उनका, हमें लगा कि ये गवर्नमेंट का कैलकुलेटर ही फट जाएगा, लेकिन नहीं, दिखा दी उसने कि $130,000 आएगा उनको.
0: ठीक है, चलें. अच्छा, ये अकाउंट में जाते हैं डायरेक्ट क्लाइंट के अकाउंट में जाते हैं पैसे?
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल. इसमें बिल्कुल ऑनेस्टी से काम है, तभी हम इसमें है. क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपने आज सेशन शुरू करा अपना और 30 to 90 days में आपके अकाउंट में फंडिंग आ जाती है गवर्नमेंट से डायरेक्ट. क्योंकि गवर्नमेंट आपको ईमेल करती है, आपका अकाउंट पूछती है, आप खुद टाइप करते हैं घर के अंदर अपने घर से और अपना अकाउंट फंडिंग आती है.
0: ठीक.
1: उसके बाद आपको हमारे ऑफिस से फोन आता है, भाई साहब हमारी फीस कर दो.
0: सही बात है.
1: 10 से 9 बंदे तो खुद ही कर देते हैं, एक बंदे फोन नहीं उठाते
0: दोबारा फोन.
1: तो मतलब ऐसा जरूर है कि लोग बोलेंगे हमने यूनिक ग्रुप एडवाइजरी के $200 मार लिए, बट ये नहीं कह सकते हमने किसी के मारे, क्योंकि हम सेटिंग नहीं, अप्रोच नहीं, सिंपल सा काम है, पैसा पे खाते में आते हैं.
0: ऑलराइट. अच्छा, दूसरी बात ये है कि कोर्सेज कैसे, कोई असाइनमेंट्स होती हैं या मतलब ऑनलाइन करना मुश्किल तो नहीं होते, पास हो जाते हैं सब लोग?
1: हाँ जी, हमारे पास ज्यादातर क्लाइंट आते हैं मिडिल एज वाले.
0: ओके.
1: 50 साल वाले और मतलब उबर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, अनएम्प्लॉयड, सिंगल मदर, हाउसवाइफ, तो उनको चाहिए कोर्स. वो पहले इतनी जिंदगी से मतलब इतने बिजी रहते हैं, उनको चाहिए होते हैं आसान से कोर्सेज, सोखे से कोर्सेज, तो वो वही चूज करते हैं, मैंने वही देते हैं. वो आराम से पिछले इतने सालों से कर रहे हैं, 7 साल से हमें हो गया धंधे में, तो वही जो है वो अब कितने लोग तो दूसरा तीसरा चौथा कोर्स कर रहे हैं जी. और बाकी कहते हैं आप फंडिंग भी दूसरी तीसरी चौथी बार हासिल कर चुके हैं. अब जो रह गए हैं वो 2-3 बैच बचे हैं जुलाई से पहले. उसके बाद मैं अगस्त के बाद अनाउंसमेंट करूंगा कि फैमिली ऑफ फाइव को $1,00,000 का लोन आ रहा है. आज मैं कह रहा हूँ फैमिली ऑफ फाइव को $1,00,000 का लोन प्लस ग्रांट आ रहा है, जिसका आधा पैसा ग्रांट है जो वापस नहीं करना. कॉल करें 4372643175.
0: 4372643175 पे अभी कॉल कर लीजिए. और ये लास्ट 2 महीने हैं जिसमें ग्रांट भी आपको मिल सकती है, इसलिए पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए 4372643175. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका नागपाल जी. नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे बात करते हैं. थैंक यू. नंबर नोट कीजिए 4372643175.

0: Berlin.
1: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
2: Sirf Mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low ya commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of Leading Edge Mortgage Experts, 905-819-1001. 905-819-1001. License number 12374.
3: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी मेहंदी रिसेप्शन बर्थडे पार्टीज कारपेट इवेंट्स गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं इन हाउस स्टेजिंग ऑडियो विजुअल सिस्टम 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ बहुत ही कन्वीनिएंट लोकेशन 6887 डिक्सी Road, Mississauga. Ample parking or close to highways. For more information and booking, call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton May Queens Manor Event Center 2 Auction Lane, Brompton. For more information, call 416-814-3600. Queens Manor Event Center.
4: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी जस्सी को छोड़िए क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए परफ्यूम स्किन केयर मेकअप हेयर केयर डिजाइनर सनग्लासेस चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड वर्साचे अरमानी हजारो एंड मोर आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401 सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर विजिट lisascosmetics.com
5: SSR ऑटो सर्विस 921 पेप एवेन्यू साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ पेप एंड मार्टिमोर हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए ऑयल चेंज टायर चेंज लाइट रिपेयर ब्रेक्स सस्पेंशन मफलर सर्विस इंजन सर्विसेज इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज टायर्स भी अवेलेबल हैं ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782 416-466-8782 टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पे

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: राजधानी राजधानी राजधानी
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से रابطہ कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट हैं। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं, लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए, इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 4167106777। इट्स 4167106777। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, जहां आपको मिलेगा असली पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड। पीसी लाहौर के शेफ, जिन्हें 14 साल से ज्यादा अरसे का तजर्बा है, रिजवे प्लाजा में फूड लवर्स के लिए पाकिस्तानी चाइनीज खानों के लिए बेहतरीन इंतखाब। नो MSG, नो फ्रोजन मीट एंड नो पैकेट मसाला एट ऑल। हर चीज मिलेगी आपको फ्रेश और प्राइसेस इंतहाई रीजनेबल। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, 3920 इग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30, रिजवे प्लाजा, मिसिसागा। For booking information, call 905-514-7877. Wohi zaika, wohi lazzat aur wohi mehmandari. Chai khana, Pakistani Chinese cuisine.
3: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
2: प्रोग्राम का यह हिस्सा टीम भट्टी के तावन से पेश किया जा रहा है। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
4: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM स्टूडियोज में आप तक नंबर 4165930003। पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट बिलाल जमान साहब इस्तेमाल से मौजूद हुआ करते हैं, आपके कॉल्स लेते हैं, कुछ सवाल उनसे करते हैं। 9 बजे तक CMR पर हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा और कल की तरह हम कोशिश करेंगे, अगर कॉलर्स बच जाते हैं तो उनको हम कंटिन्यू कर लेंगे। सेम नंबर रहेगा, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या जो लोग बाकी रहें उस पर होल्ड करके रखें। और उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो यूट्यूब पर भी आप देख सकेंगे, फेसबुक पर भी देख सकेंगे, टिकटॉक पर भी देख सकेंगे, हमारी वेबसाइट पर भी देख सकेंगे। खुश आमदीद कहेंगे। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम।
5: जी वालेकुम सलाम।
4: बिलाल साहब, अभी आज तो बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन थोड़ी सी दोनों मुल्कों ने इल्ज़ाम आयद किए हैं और ईरान ने भी, अमेरिका ने, कि एक दूसरे पर उन्होंने जो है कुछ हल्की फुल्की फायरिंग की है। तो वो सदर ट्रंप कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, हल्का सा धक्का है, ये सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन आज जो इसहाक डार साहब ने सेनेट में जो तकरीर थी, उनका कहता है सऊदी अरब के लिए जो खतरा है वो हमारे लिए भी खतरा है। तर्जुमान पाक फौज का भी कहना था, ईरान को बावर करवाया कि सऊदी अरब के लिए पाकिस्तानियों की जान भी हाजिर है, तो पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब जो है वो रेड लाइन कह लीजिए या नो गो एरिया कह लीजिए, इसहाक डार साहब कहना था। तो क्या पाकिस्तान सऊदी दिफाई माहदे की वजह से खुद को गैर जानबदार नहीं रख सकता, और क्या ईरान के मुकाबले में सऊदी अरब के साथ ताल्लुक पाकिस्तान के मफाद में?
5: देखिए, अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई है यूएई के हवाले से, हमने देखा कि हमने कर्ज भी जो है वो यूएई का वापस किया, और उसके बाद जो खबर आई है लेटेस्ट के तकरीबन 15,000 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको डिपोर्ट किया गया यूएई की तरफ से। अब ये डिपेंड करता है कि यूएई की जो कुर्बतें हैं दूसरी तरफ उसकी वजह से ये हुआ, वरना खलीजी ममालिक के साथ चाहे वो कतर हो, बहरीन हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, पाकिस्तान के बड़े जो है वो दरीना ताल्लुकात रहे हैं। तो ये अब जो यूएई का जो शिफ्ट आया है एकदम से पॉलिसी के अंदर, इसने जरूर जो है वो खतरे की घंटी बजाई है कि आया वो ममालिक जो हैं अपना अमेरिका के और इसराइल के कैंप में हैं वो जो है किस तरीके से जो है ना इस सारी सिचुएशन के अंदर रिएक्ट करते हैं। वो के सऊदी अरब के हवाले से बिल्कुल ये खबर आई है कि उसने रेजिस्ट किया है और अपनी एयर स्पेस उसने जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करने दी, जिसके बाद जो है ना ये मतलब कि खुद अमरीकी जो है अपना
4: जो था प्रोजेक्ट उनका उन्होंने जो है वो खत्म किया था। जी बिल्कुल ठीक
5: जी वो। और उसके बाद ही तो अभी आप बता रहे हैं रिसेंट जो एस्केलेशन हुई है इसके अंदर भी रिपोर्ट्स यही आ रही हैं कि यूएई से जो है ना उनका जो अड्डा है वो इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो है ना मतलब एक अब बिल्कुल जो है ना वो एक कंसर्न होगा, और मैं समझता हूँ कि इस मौके के ऊपर हमारा यूएई से ताल्लुक थोड़ा जो है ना वो होना जो है ना ब्रेक होना ये भी जो है ना वो एक एक किस्म की जो है ना वो ब्लेसिंग ही जो है ना वो साबित होगा। सऊदी अरब ऑन दी अदर हैंड जब हम देखते हैं कि ईरान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं एक हमसाया मुल्क होने के नाते, और दूसरी जानिब जो सऊदी अरब के साथ हैं वो पुराने भी हैं, देरीना भी हैं और मुआशी भी हैं। मुआशी तौर पे भी पाकिस्तान को जब कभी मुश्किल का जो है ना वो सामना रहा तो सऊदी अरब ने कभी पाकिस्तान को जो है ना वो बैक नहीं दिखाई, बल्कि सऊदी अरब के सपोर्ट के साथ ही पाकिस्तान ने हमेशा हर फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर, क्रंच के अंदर, चाहे वो मईशत के हवाले से हो, कोई नई आने वाली जो हुकूमत होती है वो मतलब रिलाय करती है कि सऊदी अरब जो है वो हमें इस जो है ना सिचुएशन से जो है ना वो निकालेगा, और सऊदी अरब ने भी कभी जो है वो उसके अंदर बैक नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि जब तक जो है ना वो ऐसा है और सऊदी अरब भी जो है ना वो हमारे साथ जो है ना वो खड़ा है, तब तक पाकिस्तान को जो है ना वो कोई ऐसा तरफ से कोई प्रॉब्लम जो है ना वो नहीं होगी। और अच्छा है कि एक ऐसी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग जो ताल्लुकदारी है मिडिल ईस्ट के अंदर वो पाकिस्तान के साथ जो है ना वो रहनी चाहिए, और जिस किस्म की स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से सामने आई है वो बड़ी नेचुरल है।
4: ऑलराइट, मार्क हक में हमने एक अभी किस दिखाई है, हम तब भी तैयार थे अब भी तैयार हैं, किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आँच नहीं ला सकता। तर्जमान पाक फौज अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज तीनों मसल्ला फौज के जो उनके नुमाइंदे भी थे और DGISPR भी थे, उन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मार्क हक में पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को हर महाज पर बर्दनात शिकस्त दी है, DGISPR का कहना था। एयर चीफ की जानब से 8 जहाज़ों का भी जिक्र, तो क्या 7 मई और 28 फरवरी में ये 2 तारीखें याद रहेंगी हमला ना करने की याद दिलाने के लिए काफी है दुश्मन के लिए?
5: जी बिल्कुल, आपको याद होगा खान साहब के दौर में भी जो हुकूमत जब खान साहब की बनी थी तो उसके बाद गालबा 2019 के अंदर जो फरवरी का महीना था उसमें जो है ना भारत ने इसी तरीके से जो है ना वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बुनियाद बना के पाकिस्तान की एयर स्पेस को जो है ना इन्फिल्ट्रेट किया था, जब 2 जहाज अभिनंदन सबको जो है ना वो याद है कि पायलट पाकिस्तान ने जो है ना फिर पकड़ा भी और फिर उसको जो है ना वो हवाले भी जो है ना वो किया। तो ये जो है ना मतलब ये कि 2 तारीखें जो है 27 फरवरी और इसी तरीके से 7 मई, ये 2 तारीखें ऐसी हैं जो बिल्कुल जो है ना वो हॉन्ट जो है ना वो जरूर करती हैं। पहले 27 फरवरी का जो गुस्सा था वो थमा नहीं था, जिसकी वजह से 7 मई जो है ना वो हमने देखा होते हुए कि वो उसी का जो है ना वो एक तसलसल जो है ना वो चला आ रहा था। लेकिन अब भी जो है ना वो ये बजाय इसके कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सबक सीखें वो अपनी ही जो गुस्से की और इंतकाम की जो आग है उसके अंदर जो है ना वो जलते रहते हैं, और वो बजाय जो है ना वो सबक सीख के आगे बढ़ने के और मामलात को बेहतर करने के, ठीक करने के, वो जो है ना क्या कहते हैं अपना मजीद जो है ना वो अपना नुकसान कर लेते हैं। तो होना तो यही चाहिए कि आप जो है ना वो जरूर इससे जो है ना वो सबक सीखें और सबक सीख के जो है ना वो आगे बढ़े, लेकिन जो है ना जैसे जब तक वहां पे जो है ना वो हुकूमत की तब्दीली जो है ना वो नहीं होती, सोच की तब्दीली भी जो है वो कोई मुमकिन नजर नहीं आ रही।
4: अच्छा, अब 200 यूनिट तक बिजली की सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है, और पाकिस्तान इस हवाले से IMF को नया निज़ाम मुतारफ़ करवाने की पाकिस्तान ने यकीन दहानी भी कराई है। हुकूमती सब्सिडी के लिए बिजली के बिल पर जो मौजूद QR कोड था उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं, पावर डिवीजन हुकूमत सब्सिडी ख़त्म कर रही है, यह तरीक़ेकार तब्दील हो रहा है या वाकई कुछ जेन्युइनली इसके ऊपर काम हो रहा है?
5: जी देखें, जब तक हम IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं बहुत मुश्किल है। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि देखें पाकिस्तान की मौशत तब तक जो है ना वो IMF का जो है वो दो किस्म का जो है ना वो शिकंजा है। एक तरफ वो हमें रिलीफ भी देते हैं, पैकेज भी देते हैं और कहते हैं कि जी मौशत को आप बेहतर करें। दूसरी जानब मौशत जो है वो किस तरीके से बेहतर हो सकती है जब आपके टैरिफ और आपके जो है ना वो खत्ते के अंदर जो एक जो आप कह लें कि इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइसिस हैं वो सबसे ज़्यादा हाई होंगी। ये जो है ना वो डायरेक्टली जो है ना वो आप कह लें कि कोरिलेट करती हैं और चैलेंज करती हैं इस चीज को कि आप जो है ना वो मार्केट के अंदर जो है ना वो कंपीट कर सकें। और दूसरी जानब घरेलू सार्फिन के लिए भी कि अब बहुत सारी बिजली जो है वो लोग अपने घरों से प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप सोलर को जो है वो करें पॉपुलर करें, आप उसको फैसिलिटेट करें, आप लोगों को जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा सोलर की जानिब जो है ना वो रागिब करें। हुकूमत एंटी पॉलिसीज जो है ना वो लेकर आ रही है। क्यों? क्योंकि जितना सोलर ज्यादा लगेंगे हुकूमत के लिए उतने ही अपनी कैपेसिटी पेमेंट्स और दूसरी चीजें और अपने लोन्स जो है वो उतारने मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सोर्स है। जिस तरह पेट्रोल की बात करते हैं कि ओवरनाइट हुकूमत जो है वो पैसे कमाती है, इसी तरीके से दूसरा जो बड़ा सोर्स है हुकूमत के लिए वो ये है। अब हुकूमत जो IMF को और हुकूमत को जो इकदाम उठाने चाहिए वो ज़राअत के हवाले से हैं, वो बिजनेसेस के हवाले से हैं। बहुत सारे बिजनेसेस अभी भी पाकिस्तान के अंदर 70% जो बिजनेसेस हैं वो FBR के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, वो आपको पक्की रसीद जो है ना वो नहीं देते। वहां पे आपका बिजनेस, मैं अभी कल ही जो है ना वो देख रहा था कि ये जितने आपके हैं जो ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी पार्लर जो है, मैं खुद भी जब कटिंग करवाने के लिए जाता हूँ तो कोई जो है ना वो 800-1000 रुपया जो है ना वो कटिंग का, जो हम पहले मेरे ख्याल से 50 रुपए में जो है ना 100 रुपए में करवा लेते थे, अब सलून खुलने की वजह से जो है ना वो 1000-1000 रुपए पे जो है ना उनका रेट चला गया है। लेकिन कोई सिस्टम नहीं है, कमाइयां हैं सिर्फ, और कोई उनका जो है ना मतलब कि हर बिजनेस का एक होना चाहिए कि वो जितना कमा रहा है उसके हिसाब से जो है ना वो हुकूमत को टैक्स भी दे रहा हो, लेकिन उस तरफ हुकूमत जो है ना वो तवज्जो नहीं करती।
4: और ब्यूटी पार्लर पे ना जाया करें ना, वो जो पुराने नाई हमारे थे उन्हीं के पास जाया करें ना, जरूर आपने आर्ट
5: वो अब वो नाई भी ना वो या मादूम होते जा रहे हैं या फिर उन्होंने भी अपने आप को अपग्रेड कर
4: दिया। सर अभी अब इसके बाद बयान भी आए हैं, वजीर खजाना कहते हैं कि बिजली सस्ती हो गई महंगी, मैं कुछ इस बारे में नहीं कह सकता। वजीर तवनाई अवैस लगारी और वजीर अजम मुस्तसर इस पर काम कर रहे हैं, आइंदा चंद दिनों में बिजली सब्सिडी पर मजीद बातचीत होगी। मोहम्मद औरंगजेब साहब का इस खत्ते में शायद सबसे ज्यादा महंगी पाकिस्तान में है, और इस्तेमाल बनाने और इस्तेमाल की आखिरी वजह क्यों है, इतनी महंगी क्यों है, और सस्ते ज़राए से बिजली पैदावार की गवर्नमेंट हौसला शिकनी क्यों करती है, हौसला अफजाई कर सकती है वैसे, कोई है तरीका ऐसा?
5: जी देखें, जब तक हम, मैंने भी अर्ज किया ना कि IMF उसके से अपनी जान नहीं छुड़वाते तब तक जो है ना वो आपको किसी तरीके से जो है ना वो ऐसा कि कोई कदम आपको उठाने नहीं देंगे जिससे आप आवाम को जो है ना वो बुनियादी रिलीफ दे सकें। क्योंकि ये चंद सोर्सेज हुकूमत के पास अब ऐसे बचे हैं। देखें, आपने PIA को प्राइवेटाइज कर दिया, वापडा को, लेस्कोस को आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स को आपने कर दिया, जो आपके पास एंटिटीज थी जहाँ से आप पैसे कमा सकते थे, हाईवेज आपको याद होगा IMF का जो है ना वो लोन लेने के लिए आपने अपने हाईवेज को जो है ना वो गिरवी रखा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जहां से हुकूमतों को अर्न करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, जो आपकी रेलवे है वो आपकी लॉस के अंदर चलती है, आपकी बहुत जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके लॉस के अंदर जो है ना वो चलते हैं। तो बजाय इसके कि आप ऐसी एंटिटीज और ऐसी चीजें जो है ना वो खड़ी करें, पिछले जो 10-15 साल थे ये मौशत के हवाले से बड़े ही इंपॉर्टेंट साल थे। उसमें आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं रही, 4-4 हुकूमतें जो है ना वो आपने तब्दील कर दी और कोई स्टेबिलिटी जो है ना वो नहीं आने दी। आज भी जो है ना वजीर जो है हमारे वजीर दाखला है वो कहते हैं कि नहीं, आप जो है ना वो आसिम मुनीर की जो है अपना फील्ड मार्शल की जो सलाहियतें हैं उनको जो है ना आपने, ठीक है कि वो बयान जो है खास नाजुर के अंदर उन्होंने जंग के हवाले से था।
4: जी बिल्कुल
5: जी, वो उस हवाले से था। लेकिन ये हुकूमत जो है मतलब कि मौशी तौर पे अभी 4 साल इस हुकूमत को जो है ना वो इसके कंप्लीट होने वाले हैं, वो चाहे जो है ना वो इलेक्शन से पहले के 2 साल आप उसमें इंक्लूड कर लें और उसके बाद के, कोई हमें मौशी तौर पर ऐसी जो है ना वो बेहतरी नजर नहीं आती जिसमें हम कहें कि हमारी डायरेक्शन जो है ना वो ठीक होगी, हम उस तरफ जो है ना सफर करना शुरू करें।
4: अच्छा जनाब, कहते हैं शहरियों को घर बैठे पासपोर्ट अप्लाई करने की सहूलत दे रहे हैं, ये फैसला हुआ है। DG पासपोर्ट मोहम्मद अली रंधावा को इजलास में नादा की टेक्निकल टीम ने ब्रीफिंग भी दी है, इस्तेमाल कर सकेंगे शहरी इतने, मतलब वो कह लीजिए कि एजुकेटेड इक्विप्ड हैं, और माजी की अगर हवाले से देखें तजर्बात इस हवाले से क्या उनके रिजल्ट क्या थे?
5: जी देखिए, नादरा ने इससे पहले जो है ना वो कुछ ऐप्स इंट्रोड्यूस करवाई थी और हुकूमत ने ये भी फैसिलिटी दी थी कि आप घर बैठे ही जो है ना अपना आईडी कार्ड जो है ना वो आप हासिल कर सकते हैं, अपना बर्थ सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, डेथ सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो तजुर्बा जो है वो नाकाम इसलिए नजर आता है क्योंकि मेरे ख्याल से कोई 5% भी पाकिस्तानी जो है वो उसको इस्तेमाल जो है ना वो नहीं करते। आप नादरा सेंटर्स में जाए तो आपको गाइड जो है ना वो जरूर करते हैं कि जी ये सारा प्रोसेस जो है ना वो ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन जब आप घर आके उस एप्लीकेशन को जो है ना वो खोलते हैं और उस प्रोसेस को सारे को वहीं पे कंप्लीट करने की जो है ना वो कोशिश करते हैं, तो जिस किस्म के डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं, स्कैन्स मांगे जाते हैं, वो आप जो है ना वो ना चाहते
4: हैं। मिलासा पूरी दुनिया में ही होता है, मतलब जैसे हम हैं बहुत ज्यादा शायद टेक्निकल से भी ना, लेकिन हमारे बच्चे हैं वो बता देते हैं आपको ऐसा ऐसा करना, तो वहाँ भी बच्चे माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, तो उनसे क्यों मदद नहीं लेते पेरेंट्स?
5: जी जी मैं वो यस करने लगा हूँ कि मैंने उस प्रोसेस को भी जो है ना वो फॉलो करके, और मैंने खुद अपने वालिद साहब को क्योंकि उनको FRC जो है ना वो चाहिए था और उनको यही कहा गया कि आप घर से जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, यानी कि जब आप उस एप्लीकेशन को जो है ना वो ऑन करते हैं तो यानी कि एक जो सिंपल प्रोसेस है, मेरे जैसे पढ़े लिखे आदमी को भी जो है ना समझ नहीं आती कि आपने ए को प्रेस करना है कि बी को प्रेस करना है, और दूसरे नंबर पे कि ऐप के अंदर जो चीजें सिंप्लीफाई करनी चाहिए वो कॉम्प्लिकेटेड की गई है, यानी कि उनको बजाय जो है ना वो ओवर सिंप्लीफाई करने के कि आप ए प्लस एक प्रोसेस को फॉलो करें, उसकी बजाय जो है ना वो आपको एक नई जो है ना वो उसके अंदर जो है ना वो डाल दिया जाता है। और फिर सेकेंडली कि हमारे यहाँ पे जो है ना वो हर चीज के नए रूल्स जो है ना वो बना दिए जाते हैं। मैं पहले जो है ना वो FRC अप्लाई किया था तो बड़ी आसानी से मिल गया था, इस दफा गए तो उन्होंने 2-3 चीजों की जो है ना वो कैंसिलेशन मांग ली कि वो आप पहले करवाएं, तो फिर तो ये जब तक आप उस चीजों को जो है ना सबूत हाँ जी तब तक जो है ना वो ये पॉसिबल नहीं हो सकता।
4: अच्छा आप कॉल्स लेते हैं, जो रह जाएंगे कॉल्स वो आप होल्ड कर लीजिएगा, बल्कि हम आपको ये भी कहते हैं कि आप रिपीट कॉल भी कर सकते हैं बाद में, मतलब आप रहें तो आप होल्ड रखिएगा, अगर रिपीट बात करना चाहिए दोबारा भी ले लेंगे। आज मेरे पास जो पहली नज़र आ रही कॉल वो 5794 की, 5794 सर आप ऑन ले रहे हैं, 5794
6: अस्सलाम
4: वालेकुम सलाम जनाब।
6: देखें भट्टी साहब, अल्टीमेटली आपको जो आज आप नादरा की बात कर रही हैं, यहाँ के भी बच्चे पढ़े लिखे हैं और वहां के भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, चले होगा ये ज्यादा से ज्यादा कि आप वहां कुछ लोग छोटा मोटा कोई दफ्तर जो है ना वो कायम कर लेंगे, आप उनके पास चले जाएं, जिस तरह इधर भी है, यहाँ चले गवर्नमेंट के भी कुछ अदारे हैं जो हेल्प करते हैं, अगर आप नहीं ये कर सकते आप उनके पास चले जाएं, तो वहां भी मेरा ख्याल है जब आप आपके बच्चे चले थोड़ा बहुत नहीं कर सकते वो वहां छोटी मोटी एजेंसियां सामने आ जाएंगी जो आपसे 200-300 या 400 रुपया ले लिया करेंगे, तो बेहतर है कि आप खुद जाएं, खजल खराब हो तो बेहतर यही है कि उनके जरिए ये मामलात, लेकिन अल्टीमेटली ये सलूशन इसी तरफ ही है। बाकी रह गई भट्टी साहब जब गैस और बिजली, जब तक हम IMF से मेरे ख्याल में छुटकारा हासिल नहीं करेंगे ना, उस वक्त इन दोनों चीजों पे, इनकी कीमतों पे आवाम को जो सब्सिडी दी जाती है उससे छुटकारा हासिल नहीं किया जा सकता। और मेरे ख्याल में अगर मेरे हाथ में हो तो मैं तो मेरा ख्याल है एक साल में ये काम करके दिखा दूं। भट्टी साहब देखें, इसमें आप प्रोजेक्ट जो भी तरक्याती काम है इसमें नीयत अच्छी होनी जरूरी है, और बात यह है कि आप एक साल के लिए आप जो प्रोजेक्ट हैं वो रोक दें, क्या मसला है भाई? जब हमने एक अपनी मंजिल को पाना है तो एक साल के लिए कोई मेरा हाल आहट तो नहीं आ जाएगी कि अगर प्रोजेक्ट रोक दिए जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हम इस लानत से तो दूर हो जाएंगे ना, और हम आपके सामने वादे तौर पे IPL और दूसरे मामलात रखे ताकि हमको पता हो कि भाई क्या मसला है और क्या हमने करना है, और उसके लिए वाजे लेकिन नियत का मुकदार है मेरे ख्याल में। सब आते हैं, दावे करते हैं, लेकिन
4: बाकी अपना 9 बजे के बाद
6: में आते हैं, 9 बजे
4: आप बोर्ड रखिएगा, 9 के बाद बात कीजिएगा जरूर, ठीक है?
6: इंशाल्लाह अल्लाह
4: हाफिज़। 6492 सर आप ऑन, 6492 जनाब अली
7: भट्टी साहब, अभी जो आप न्यूज में सुनाया और ये जो सऊदी अरब के लिए कि हम बस यूं कर देंगे और यूं कर देंगे, भाई वन वे ट्रैफिक नहीं चलाए, अगर कल हमारा इंडिया के साथ मामला होता है तो क्या सऊदी अरब अपनी फोर्सेस और अपने एसेट्स, अपने तैयारे, अपने F-16 वगैरह, अपनी मिसाइल जो भी उसको अमरीका बहादुर को या दुनिया से मिला हुआ है तो क्या वो हमारे लिए आएगा?
4: नहीं, जरूरत ही नहीं होगी, इनको जरूरत नहीं होगी।
7: سعودی
4: عرب کو ضرورت ہے ہماری، ہمیں سعودی عرب کی اس حوالے سے ضرورت نہیں ہے.
7: بس سر پھر وہ ون وے ٹریفک چلے گا نا.
4: اچھا
7: دوسرا یہ
4: جی جی
7: ایران کے ساتھ آپ پنگا نہیں کیجیے گا. دیکھیں اگر آپ یہ سوچ کے کہہ رہے ہیں نا کہ ہرمین شریفین اور یہ وہ، تو بھائی یہ جو 10 سال وار تھی نا صدام حسین کے ساتھ، تو نجف اشرف اور کربلا میں کبھی بھی لائٹیں آن ہوتی تھی، کبھی بھی انہوں نے بمباری اور ایک شیل نہیں مارا ایرانیوں نے. تو ہولی سائٹ کے لیے ان کی ریسپیکٹ ہے. باقی ایران کا اور اس وقت سعودی عربیہ کا، چائنا نے پاکستان نے بہت کولابریشن کروایا ہے، تو ان کے آپس میں بہت معاملات سیٹ ہو گئے. البتہ یو اے ای، اسرائیل، افغانستان، انڈیا یہ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسپیشلی ہمارا جو سادن ایریا ہے جیسے کراچی ہوا اور اپنا بلوچستان کے پورٹ ہوئے، یہ ایک جو نہیں ہو تاکہ صرف ترقی جو ہے نا وہ دبئی میں ہوتی ہے. تو ہمیں تو 70 سال سے یہ جو نا یو اے ای والے عرب حضرات لوٹ رہے، تھوڑے سے ہوش کے ناکل لے کے فیصلے کرنے چاہیے.
4: تھینک یو، بہت شکریہ. 5666 سر آپ آنے رہے ہیں. 5666 5666.
8: السلام علیکم بٹی صاحب.
4: وعلیکم السلام سر.
8: بٹی صاحب شروع کرتا ہوں کہ اے مان نے مانا والیاں دے نائے ہوئے ٹکرا مار کرے. بات یہ ہے بٹی صاحب، آپ روتے رہے وہ ہمارے دوست کہتے ہیں اور تم روتے کیوں، وہ کہتا جی میری شکل ہی ایسی ہے. بات یہ ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کے جہاں تک بات کرتے ہیں، سعودی عربیہ نے ہمیشہ پروو کیا ہے دیٹ دے آر سنسیئر پاکستانی فرینڈشپ. یو اے ای نے کبھی شو نہیں کیا، یو اے ای نے اب بھی دکھا دیا اپنا اصل. اب آ جائے ایران کی طرف. ایران ہمارا برادر ملک ہے. ماضی آپ بھول نہیں سکتے.
4: ٹھیک.
8: ایران نے ابھی کل کی بات ہے میزائل مارا تھا. ابھی کل کی بات ہے چابہار بنائی تھی. ابھی کل کی بات ہے کلبھوشن ایران سے ملا تھا. ابھی کل کی بات ہے کہ ایران میں پاکستان کے خلاف انڈیا کے لوگ رکھے ہوئے تھے. ایران ہمارا برادر ملک ہے، ٹھیک ہے ہمارا ہمسایا ہے، ہماری ساری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں، مگر اس کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان ہمارا ہمسایا ہے، اس کے بھی کچھ رائٹس ہیں. اگر ہم ایک طرف
4: ایران کی بات کریں تو ان کا پوائنٹ آف ویو سنیں تو ان کے پاس بھی ایسے بہت سے جو ہیں اس حوالے سے جو بات ہیں.
8: بالکل، میں کہتا ہوں یہ میزائل کیوں مارا، بیٹھ کے بات کر لیتے.
4: کہاں
8: یو اے میں دیکھیے، یو اے ہمیشہ اس کا جو ہے جھکاؤ انڈیا کی طرف تھا، لیکن سعودی عربیہ ماشاء اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور کھڑا رہے گا.
4: ٹھیک ہے سر، دوبارہ آپ 9 بجے کے بعد پھر
8: لائن پہ. آپ 7 9 7 سر
4: 7 9 7
9: کیسے ہیں آپ؟
4: جی بالکل ٹھیک سر، تھینک یو.
9: بات یہ جناب کہ ایک دو چیزیں بڑی ہم عجیب ہی بات کرتے ہیں. ایک تو بات ہم یہ کرتے ہیں کہ بھائی سب سے بڑا ہمارا دشمن آئی ایم ایف ہے نا. آپ اپنے دشمن خود ہو، ٹھیک ہے. آپ اپنے آس پاس کی اکانومی کو دیکھ لو. ابھی پتہ نہیں انڈیا لوگ جاتے ہیں نہیں گئے کیا ہے، انڈیا میں جو غربت ہے نا بھٹی صاحب آپ تصور نہیں کر سکتے.
4: صحیح.
9: لیکن ان کی دیکھے ایکسپورٹ دیکھ لیں، ان کی چیزیں دیکھ لیں، ٹھیک ہے. پرابلم ان کے بہت زیادہ ہے، ہم سے بہت زیادہ ہے. اور پاکستان تو ایک جنت ہے، پاکستان میں منرلز ہیں اتنے ہیں، لیکن منرلز پہ جو لوگ قابض ہو گئے اس کے بارے میں کچھ بول نہیں سکتے. کوئی کام پاکستان میں ترقی کا، اور بیسیکلی آپ کی ہماری جو حکومت ہے نا یہ پبلک کی گوڈ اچھائی کے لیے نہیں حکومت، یہ اپنے لوگوں کو بھرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے ہے. اور پاکستان کے لیے کسی کی ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی ہم بڑا محبت کرتے ہیں،
4: ٹھیک ہے.
9: اور بھائی اپنے ملک میں ڈیموکریسی لے آؤ یار.
4: ٹھیک سر جی، تھینک یو. ابھی آپ کو کنٹینیو کریں گے 9 بجے کے بعد سر.
9: میں آخری بات کہہ رہا ہوں، اپنے ملک میں انصاف لے آؤ، کورٹ صحیح ہو جائے.
4: ٹھیک چلے، ٹھیک سر. 5415 سر، 5415 جی سر، 5415.
10: السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
4: جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سر.
10: جناب ڈی صاحب کی حالت ٹھیک ہے؟ منٹ کے بات کرنی ہے.
4: نہیں تو ایک ڈیڑھ منٹ گل کرو پھر ہولڈ رکھنا، تھوڑے نال کنٹینیو کریں گے باجوی.
10: جی انشاءاللہ. اچھا پٹی صاحب گل اے وے کہ بالکل ویکھو اے جڑیاں گلاں کیت کردے نا ایتھے آ کے پاکستانی، کہ ایران دے نال جو پاکستان نے کر چھڑیا ہے نا ਉਹ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਚੋਂ, ਆਪਣਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਚ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਚਾਇਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੇਖ ਲਓ
4: ਸਹੀ
10: ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕੀਤੀ।
4: ਚਲੋ ਸਰ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਹੋਲਡ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਐਮ ਆਰ 'ਤੇ। ਚਲੇ ਜਨਾਬ ਵਾਪਸੀ ਚਾਹੇਂਗੇ ਸੀ ਐਮ ਆਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੋ ਮੈਂ ਰੱਖੇਗਾ ਯਾਦ ਹੌਸਲਾ ਨਿਹਾਰਨਾ ਵਾਲ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਇਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਫਾਲੋ ਯੂ ਹਾਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਅੱਛੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਸ਼ਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਮਾਰੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ ਅਬ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸਟੂਡੀਓ ਜੀ ਮਰੀਅਮ ਪਰ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਭੱਟੀ ਕੋ ਦੀਜੀਏ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਲ।

ഇടയിനമാം.

சிஎம்ஆர் தமிழ்FM. அலிவிடி

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm. The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday.
2: क्या आप सुन रहे हैं?
3: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।

0: आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो टोरंटो कनाडा। हवा के दोष पर आप तक पहुंचती हुई ये आवाज़ आमिर तोफैल की है। कबूल कीजिए मेरा अकीदत भरा अस्सलाम वालेकुम, स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी नमस्कार और दिल की अथाह गहराइयों से निकलती हुई सत श्री अकाल। मैं रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से आपका स्वागत करता हूँ। आपका खैर मकदम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड डॉल्स, दिस इज लवी डवी शो एंड टुगेदर वी विल किस द एयरवेव्स ऑफ टोरंटो दिस ब्यूटिफुल मॉर्निंग।
1: लवी डवी शो, वेरी गुड मॉर्निंग। फ्राइडे की खूबसूरत सी सुबह है और मेरे स्टूडियो में जहाँ पे मैं बैठी हूँ वहाँ पे इतने खूबसूरत से चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल फ्राइडे के मूड में, जहाँ पे हंसी है, ठहाके हैं, आप लोगों से बातचीत की, आप लोगों से मिलने की एक कशिश है और उसी के साथ ले आया है हमको खींच के आज की सुबह एक बार फिर से लवी डवी शो पर। मैं हूँ शिवानी, मेरे साथ हैं आमिर और हमसे रबते का नंबर है 4163033639। नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदीद एंड अस्सलामुअलैकुम आमिर।
0: वालेकुम अस्सलाम एंड नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत तरोताज़ा, बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रही हैं और आज आपने जो लिबास ज़ेबे तन किया है वो क्या जच रहा है आप पर। ये साड़ी आपको किसने दिलाई, कब दिलाई, क्यों दिलाई, बहुत से सवाल उठे आज सुबह ही सुबह मेरे जहन में। ये गुलाबी रंग की जो साड़ी आपने पहन रखी है और इस पर हल्का सा काम भी हुआ है, ये आप पर ऐसे जच रही है जैसे अचानक सर्दी में खूबसूरत सी छनी हुई धूप निकल आए।
1: आमिर, तारीफ़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, तारीफ़ किस अच्छी नीयत से की गई है, किस जेन्युइन इरादे से की गई है और कितनी सच्चाई और कितनी आत्मीयता है इस तारीफ़ में, ये इसी से झलकता है कि बस एक तो ये सूट है, साड़ी नहीं है, लेकिन दूसरा ये पिंक कलर नहीं है, ग्रीन कलर है। अच्छा। लेकिन ये देखिए, इंसान की ऑनेस्टी और इंसान की जो इंटेंशन है प्रेस करने का, वो दिखाता है कि डजंट मैटर ये सूट है या साड़ी है, ब्लू है या पिंक है, एक ही बात है।
0: नहीं, देखिए, सेम थिंग। बात ये है कि आपने उन रंगों का नाम ले लिया जो आपको पसंद है, वो नहीं जो आपने पहने हुए हैं।
1: आमिर जब रास्ते में आ रहे थे तो एक पिंक कलर की साड़ी पहन के उनको एक बहुत अच्छी उन्होंने सोचा कि वो तो अब स्टूडियो में मिलने से नहीं, तो जो मिले उसके ऊपर पिंक भी डाल दो, उसके ऊपर साड़ी भी डाल दो। भाई, आई एक्सेप्टेड विद ऑल द ऑनर्स एंड ग्रेस।
0: और मुझे लग रहा है कि ये जो आपने पहन रखा है साड़ी नुमा सूट कहने चले इसको, चलिए लेट्स टेक इट दैट वे। तो ये जो आपने साड़ी नुमा सूट पहन रखा है, आधी सी साड़ी लगती है, आधा सा सूट लगता है, मुझे लगता है कि आपकी हालिया दिनों में किसी नए फैशन डिजाइनर से मुलाकात हुई है जिसने कुछ एक ऊटपटांग सा बना, इन्हें सॉरी मैं माजरा चाहता हूं, यानी ऊटपटांग से बना दिया है कि आजकल कुछ पता नहीं चलता ना कि ये साड़ी है, ये सूट है, ये गरारा है, ये लहंगा है, ये शरारा है, ये मतलब कुछ पता नहीं चलता, मिक्स सा हो गया सारा।
1: बेलिहाज बेसमझ इंसान को पता नहीं था कि आमिर को ग्रीन नहीं पिंक पसंद है और उसने ग्रीन बना दिया। आई विल नो कि नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होगी।
0: हाँ, और इस गुलाबी में थोड़ा थोड़ा ग्रीनिश आ रहा है दूर से, थोड़ा यू नो जैसे झलक सी दिखाई देती है। तो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ योर चॉइस। लेकिन मैं आपसे मैं एक वैसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आजकल के फैशन डिजाइनर्स से जरा बच के रहिए
1: जी।
0: वो फैशन के लिए नया कुछ करने के लिए, नया रुझान, नई जिद्दत देने के लिए
1: कुछ भी कर देते हैं,
0: कुछ भी कर देते हैं। आजकल जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड स्टार्स को आपने देखा होगा, वो कुछ भी पहन के निकल आते हैं, स्टेज पे आ जाते हैं। तो लिहाजा मुझे
1: लगता है कि पर्दे का जो कपड़ा था जो बच गया पर्दे लगाने के बाद।
0: नहीं, तो आज सुबह जब मैंने आपको देखा तो मुझे बिल्कुल उन बॉलीवुड आर्टिस्ट्स की याद नहीं आई, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। और मुझे अच्छा लगा कि आपने रिवायत को बरकरार रखा है, एक ट्रेडिशन को बरकरार रखा है, एक خوبصورت سی ویلیوز جو ہیں ہماری ہمارے معاشرے کی بیک ہوم کی خاص طور پر جی. ان کو مینٹین رکھنا اس ملک میں آ کے کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. اینڈ یو ہیو مینٹینڈ دیم ویری ویل. اور اب جو میں آپ کو کمپلیمنٹ دینے والا ہوں اس پر آپ کوئی ہیل حجت کا مظاہرہ نہیں کریں گی, اس پر کوئی آپ انکار نہیں کریں گی کمپلیمنٹ لینے میں کہ آپ نے یہ جو جوتا پہن رکھا ہے یہ جو ہم اس کو کہتے ہیں بیک ہوم میں خصہ کہتے ہیں, تو ساڑی کے ساتھ یہ خصے کا کیا کمبینیشن آپ نے بنایا ہے؟
1: نہیں یہ سوٹ کے ساتھ جاتا ہے.
0: اچھا تو
1: یہ سے یاد دلانا چاہوں آپ کو لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے. لائف ڈز ناٹ ڈیمانڈ پرفیکشن فرام یو عامر, اٹ جسٹ وانٹ یو ٹو بی ہیپی ود یور سیلف.
0: سو یو ٹیک دی کمپلیمنٹ
1: اف یو ار ہیپی
0: ود دس کمپلیمنٹ.
1: کمپلیمنٹ
0: کالنگ, آئی ایم ہیپی, دیٹس وائی کالنگ
1: می ویئرنگ ا پنک ساری, دین آئی ٹیک اٹ.
0: سٹے ٹیونڈ, یو آر ٹیونڈ انٹو لوی ڈوی شو. آپ کا ہمارا یہ تعلق جڑا رہے گا آج 11 بجے.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। It's 416-303-3639।
4: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह $500 से $1500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584, 416-605-2584।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: मम्मा, व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
3: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
4: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
3: क्या वो मदद करेंगे?
4: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 million की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
5: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
4: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
5: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
6: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं? लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार? स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए 5th generation एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से 437-829-6023। इट्स 437-829-6023, मास्टर धनिक महाराज।
7: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर।
8: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
7: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
9: साहब, जब इंसान हालते सफर में होता है तो अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ जाती है, गैर यकीनी सूरत हाल हो जाती है। रोड पर अगर कहा जाए कि सब महफूज हैं तो ये सबसे गलत स्टेटमेंट होगा। जब आप रोड पे होते हैं, आप कितने भी अच्छे तरीके से गाड़ी चलाएं, बहुत महफूज ड्राइवर हों, बहुत अच्छे ड्राइवर हों, बहुत मोहतात ड्राइवर हों, इसके बावजूद भी खतरा रहता है, खदशा रहता है, अंदेशा ज़रूर रहता है। इसलिए आप ड्राइव करते हैं फिर तो ये अज हद ज़रूरी है कि ये नंबर आप नोट कर लें। वो क्यों ज़रूरी है कि खुदा न खास्ता कहीं भी दिन रात सुबह शाम 24/7 आपका कहीं कोई हादसा हो जाता है तो व्हाट्सएप पर भी अवेलेबिलिटी हो और आम मैसेज पर भी मैसेज कर सकें, और ना सिर्फ ये बल्कि कॉल भी कर सकें। फौरी तौर पर आपको ये हेल्प मिलेगी कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किससे बात करनी है, पुलिस स्टेशन रिपोर्ट कैसे करवानी है, क्या करना है वहाँ जाके, वहाँ के प्रोसीजर्स क्या हैं, वहाँ का स्टैंडर्ड क्या है। उसके बाद फिर ये भी आपको बताया जाएगा कि ऑब्वियसली अगर आप मेंटली अपसेट हैं तो आपको सेशंस कहाँ से लेने हैं, फिजियोथेरेपी कहाँ से करानी है, अगर पट्ठों को कोई नुकसान पहुँचा है, अगर लॉस ऑफ इनकम हुआ है तो उस एतबार से आपको कितनी तलाफ़ी मिल सकती है। याद रखिए, नुकसान की तलाफ़ी, जिसे हम अंग्रेज़ी में कंपनसेशन कहते हैं, इस मुल्क का निज़ाम है, कानून है, जो इंश्योरेंस देते हैं उसके एवज़ आपको प्रोटेक्शन हासिल है, लेकिन ये प्रोटेक्शन मिलती किसी ऐसी शख्सियत के ज़रिए है जिसे एक तवील अरसे का तजुर्बा हो और वो स्पेशलिस्ट हो इस मामले में। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जब से वकालत शुरू की पलट के देखा नहीं, मोर देन फुल टाइम पर्सनल इंजरी में स्पेशलाइज किया और ये हजारों अफराद की सिर्फ जीटीए में ही हेल्प कर चुके हैं, मदद कर चुके हैं। इनका रिकॉर्ड है कि एक ही क्लाइंट को अप टू $2 मिलियन की कंपनसेशन अब तक दिला चुके हैं। एक बहुत बड़ा और आला नाम है पर्सनल इंजरी के हवाले से। पहले इनका नंबर बताऊंगा, फिर उनसे बात होगी। नंबर अभी के अभी नोट करें, 416-937-5046। वेलकम करते हैं सैयद एम रजा बैरिस्टर को। वेलकम सर
10: जी। तो फैल भाई, आपका और आपके रेडियो का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का कि आपके लिसनर से मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूं और हम उन्हें ऐसी टिप्स दें जो उनके काम आए। जैसा आपने इंट्रोडक्शन कराया है, ये वाकई जब भी एक्सीडेंट होता है तो ये सारी चीजें एक इंडिविजुअल फेस करता है और यकीनन उस इंडिविजुअल को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो फर्स्ट टाइम एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि अ थिंग विच हैज टू हैपन विल हैपन। यानी रोड पर है, एक्सीडेंट होना है और होगा
9: जी।
10: मतलब किसी का एक दिन होगा, किसी का दूसरे दिन होगा, बस इस पर बात यह है कि कितना जो है वो कोई प्रिपेयर्ड हैगा इस किस्म की इवेंचुअलिटी के लिए। इवेंचुअलिटी के लिए सबसे पहले तो रिपेयर होने के लिए जो है वो आपको चाहिए होता है कि आपके पास इंश्योरेंस हो
9: जी।
10: जब आपके पास इंश्योरेंस है तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो इंडेमनिफाइड हैं। यानी आपकी वजह से अगर कोई एक्सीडेंट होता है या आपको एक्सीडेंट होता है तो आपके पास वो सारे मीन्स अवेलेबल है जिसको यूटिलाइज करते हुए आप अपने डैमेजेस जो है वो क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो फिर जो है ये आपके लिए जो है इससे ज्यादा मिजरी वाली कोई सिचुएशन नहीं होगी कि कोई इंडिविजुअल जो है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह और जैसा आपने सारे बेनिफिट्स एक्सप्लेन किए वो सारे बेनिफिट्स ना मिल सकें। तो बहुत सी सूरतों में अगर इंश्योरेंस नहीं है और आपका अपना फॉल्ट हैगा तो यकीनन दूसरा ड्राइवर आपको टू भी करेगा और फिर उसमें जो है वो आपको अपने आप को जो है वो डिफेंड करना पड़ेगा और उसके साथ साथ उसके जो लॉसेज हैं अदर ड्राइवर के वो भी आपको पे करने पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो, तो इसलिए आपके पास न सिर्फ इंश्योरेंस होनी चाहिए बल्कि अच्छी इंश्योरेंस होनी चाहिए, कवरेज जो है आपके पास अच्छी होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस हो ताकि अगर आपका फॉल्ट भी हो तो आपको जो है वो उससे कंपेंसेशन, आपका प्रॉपर्टी डैमेज वगैरह का कंपेंसेशन मिले। एक्सीडेंट बेनिफिट्स तो वैसे भी मिलते होंगे चाहे आपके पास थर्ड पार्टी कवरेज हो या चाहे आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव हो, लेकिन अगर आपके पास फुल कवरेज नहीं होगी तो उससे आपको जो है वो जो आपका अगर आपका फॉल्ट है तो प्रॉपर्टी डैमेज का क्लेम जो है वो आपको नहीं मिलेगा। और फिर दूसरी चीज जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो ये हैगा कि अक्सर लोग जो है वो जो गैप इंश्योरेंस जिसे कहते हैं वो लेते हैं, तो वो जो होते हैं वो बेसिकली जो उनका उनको फाइनेंस करवाते हैं जिससे गाड़ी, बेसिकली वो उनसे गैप इंश्योरेंस ले लेते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर इंडिविजुअल जो है वो जो फाइनेंसिंग कंपनी उससे आप गैप इंश्योरेंस लेते हैं तो व्हेन यू आर इन नीड तो दे ट्राई टू अंडर कट यू, फिर के यू आर यूटिलाइजिंग यू नो व्हाट यू हैव ड्रिवन दिस कार ओवर द लिमिट, यू हैव मेड यू नो व्हाट वायलेटेड दिस कंडीशन टू डिनाई योर क्लेम। उससे बेहतर जो है वो ये होता है कि जो आपकी अपनी इंश्योरेंस है आप उसी से, दे ऑल्सो गिव यू द गैप इंश्योरेंस, आप उसी से गैप इंश्योरेंस लें तो वो जो है वो, क्योंकि ये वो टॉप इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं इधर की, रिमेम्बर जितनी छोटी इंश्योरेंस कंपनी के पास आप जाएंगे उतना ज्यादा वो आपको प्रॉब्लम करेंगी। क्योंकि छोटी इंश्योरेंस कंपनीज जो है उनके पास ना इतने रेवेन्यू होते हैं और उनको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज करने के लिए उनको क्लेम्स जो है वो डिनाई करने होते हैं।
9: बिल्कुल,
10: ये बात बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, और ये बात उस पर भी अप्लाई होती है इवन अगर आप कोई डिसेबिलिटी इंश्योरेंस वगैरह भी ले हैं तो आप जो है वो ऐसी इंश्योरेंस के पास जाएं जो कि टॉप, मतलब ये कि 2-3 में हो ताकि अगर आपको जरूरत पड़े तो वो आपको फिर भी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करेंगी। दो वो भी जो है वो कोई आपकी दोस्त नहीं बनेंगी, वो भी जो है वो एज पर पॉलिसी काम करेंगी और आपको डिनाई करने की कोशिश करेंगी, मगर फिर भी किसी हद तक जो है वो आपको सुनेंगी, रादर देन आप ऐसी के पास चले जाएं जो आपको कुछ सुनने के लिए ही तैयार नहीं हो। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैगा। तो ये आपके जो है वो लिस्नर जो बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त आपको सुन रहे होते हैं, उनको एजुकेट करने के लिए कि उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब वो इंश्योरेंस जो है वो बाय कर रहे हैं। हालांकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं इंश्योरेंस सेल नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं रोजाना ये एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, लोगों की कहानियां सुनता हूँ, उनके साथ मिसहैप जो होते हैं वो सुनता हूँ, उनको हेल्प करता हूँ मैं, तो ये सारी चीजें जो है वो मेरे एक्सपीरियंस में आती है, लिहाजा इसको शेयर करना जो है वो फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक एट लार्ज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो आप बताते ही रहते हैंगे कि हमारी लॉ फर्म जो है बेसिकली पर्सनल इंजरी क्लेम्स में डील करती है, कार एक्सीडेंट, स्लिप एंड फॉल, ट्रिप एंड फॉल, डॉग बाइट हैंगे, कॉस्मेटिक इंजरी हैगा, और आपको पता ही हैगा कि वी ऑल्सो डील विद द डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, यानी अगर आपकी लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी डिनाई कर दी है एंड यू हैव नो रिकोर्स तो आप हमारे पास आ सकते हैंगे। इसी तरह से अगर आपकी कोई होम इंश्योरेंस का क्लेम है वो डिनाई हुआ हैगा तो आप हमारे कॉन्टेक्ट कर सकते हैंगे। आपका अगर कोई प्रॉपर्टी डैमेज का क्लेम हैगा, यानी शॉप वगैरह कोई थी उसका कोई क्लेम डिनाई हुआ हैगा, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। रिमेम्बर कि यू हैव टू कॉन्टेक्ट अ लॉयर आफ्टर डिनाइल, एज लॉन्ग एज इंश्योरेंस कंपनी इज प्रोसेसिंग योर क्लेम एंड दे आर इन्वेस्टिगेटिंग, दैट्स फाइन। क्योंकि जाहिर बात है लॉयर का रोल जो है किसी भी जिसको कहना चाहिए इशू में या किसी भी केस में जब आता है कि जब दूसरी साइड से जो है वो डिनाइल हो जाए कि अब जी हम आपको जो है डिनाई कर रहे हैंगे, तो लॉयर जो होता है वो एक ऐसा एज आपका फ्रेंड जो है वो आपके केस को जो है फाइट करता है और उस डिनाइल को जो है वो चैलेंज करता है ना। तो लिहाजा ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैगा कि लॉयर को आप सही मायने में यूटिलाइज करें ताकि आपकी जो फीस दें वगैरह दें तो वो भी जस्टिफाई हो सके। और रिमेम्बर जो हमारा पर्सनल इंजरी क्लेम्स है वो नो विन नो फी की बेसिस पर हैंगे। इफ वी गेट यू द सेटलमेंट we get the fee, if for any reason we cannot get you anything, we don't charge you anything, all of our expenses are also written off, because the thing is that we want to make sure that our community is not left behind because they don't have the money or and they should not be suffering, you know, or suppose for example if for any reason their claim did not succeed, so that's not going to happen, we are here to help you, we are here to help our community members. Aap hamari website pe jaye Syed Law Office .ca, again I will say Syed Law Office .ca, आप हमारे गूगल रिव्यूज

0: एडवाइस मांगे, और अगर वो मेरे नॉलेज में हो तो मैं उसे ज़रूर जो है वो दे सकूं, ताकि उसके लिए जो है वो कोई ज़्यादा वो उसको उसकी जो भी वरीज है उसको किसी हद तक जो है वो अवॉइड कर सके वो।
1: बिल्कुल ठीक।
0: थैंक यू तो फिल भाई आपके टाइम का और आपके इंट्रोडक्शन का। तो आज फ्राइडे है, हैप्पी फ्राइडे और हैव अ गुड वीकेंड ऑल योर लिसनर्स एंड यू एज वेल।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ नंबर है सैयद एम रज़ा बैरिस्टर का, ये नंबर बेधड़क हो के, बेखौफ हो के, बग़ैर किसी हिचकचाहट के मिलाइए। एक्सीडेंट हो, इंजरी हो, स्लिप और ट्रिप हो, या फिर डॉग बाइट हो, कहीं गिर गए, ज़ख्मी हो गए, हादसा हो गया, रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, एक ही नंबर रहेगा 416-937-5046, 416-937-5046। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अमरजा बैरिस्टर, थैंक यू।
0: थैंक यू तुफान भाई, थैंक यू।

0: सी एम आर एफ एम 101.3 पर यह है लवी डवी शो और हमारे स्टूडियोज में रबते का नंबर है 416-593-0055 और मैं हूँ शिवानी, मेरे साथ हैं आमिर। गुड मॉर्निंग आमिर।
1: गुड मॉर्निंग
0: जी।
1: आपके मिजाज कैसे हैं, आपके हालात कैसे हैं, आपकी सुबह ये कैसी है, क्या महसूस कर रही हैं इस खूबसूरत से मौसम?

0: सब में आज सुबह ही सुबह आप
1: जी, मैं बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। फ्राइडे जिसी इज दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसमें फ्राइडे शाम से ही वीकेंड हम मनाने लगते हैं।
0: अच्छा।
1: अगर हम बैक होम की बात करें तो उसमें तो जो वीकेंड था वो सैटरडे भी नहीं होता था, संडे होता था। सारी यादें वीकेंड की संडे के साथ से जुड़ी हुई हैं। आपका
0: अरे बैक होम को तो आप छोड़ ही दीजिए, एवरी डे वॉज अ फ्राइडे।
1: हाँ, एवरी डे इन अदर सेंस एवरी डे वॉज अ फ्राइडे, लेकिन ऑफिशियली हर दिन फ्राइडे था। कब हमें ये एक किसी ने कहा है कि बड़े होंगे तो अपनी तरह से जिंदगी जिएंगे
0: जिएंगे जी,
1: ये बचपन का थॉट होता था ना सबका, बड़े होंगे तो अपनी तरीके से
0: जिंदगी जिएंगे जी।
1: अब वो बचपन वाले इस ख्याल को सोच सोच के अब हंसी आती है।
0: दरअसल मुझे लगता है कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रहें, किसी भी देश में रहें, आपकी जिंदगी का गुजारने का तरीका, जिसे हम तर्ज जिंदगी कहते हैं, वो खालिसतन आपके हाथ में होता है। आप जैसा चाहें इसको बना लें। आप यहाँ पे भी आके देखें, कुछ लोग 10-10, 12-15, 20 साल भी हो गए, और मैं ज़ाती तौर पर ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आज भी बेसमेंट में रहते हैं। दो कमरों की बेसमेंट है, 4-5 लोग हैं घर के, उन्होंने अपने अखराजात बहुत कम रखे हुए हैं। एक आम सी गाड़ी, जो बहुत सस्ती सी गाड़ी है, उसकी इंश्योरेंस भी कम है, वो अदा करते हैं। सादा जिंदगी है और किसी तरह की कोई परेशानी या स्ट्रेस या अजियत या तकलीफ नहीं है उनको। ऑन दी अदर हैंड, कुछ लोगों ने लाइबिलिटीज अपने ऊपर इतनी बढ़ा ली हैं कि उनका बचपन खो गया है। वो बचपन से महरूम हो गए हैं, शरारतें करना भूल गए, तारीफ करना भूल गए किसी की।
1: और वो लोग भी इसमें यहाँ पे पाए जाते हैं जो इतनी अच्छी तारीफ करते हैं कि वो एक तरीके से इतनी एनलाइटेंड सोल हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा रंग है, कौन सा लिबास है, बस नियत इतनी अच्छी है कि तारीफ
0: नियत अच्छी है कि तारीफ करनी है। और मुझे लगता है कुछ मुआशरे बड़े दबे हुए, बड़े सहमे हुए, बड़े डरे हुए मुआशरे हैं कि आप खुल के किसी की तारीफ ना कर सके।
1: और देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने बिल्कुल सही कहा, ऑन द सीरियस नोट, कि इतने ज्यादा कॉन्शियस हैं लोग यहाँ पे कि किसी की तारीफ करने से पहले उस इंसान पर पूरी पीएचडी करेंगे
0: PhD
1: और 4 लाइनों में इतनी नपीतुली बात उसके बारे में बोल देंगे कि उसको वो सारे दिन सिर धुन के ये सोचेगा कि मेरी तारीफ थी या क्या था।
0: इसमें एक और भी बात बड़ी अहम है कि कुछ लोगों की शख्सियत ऐसी रोबदार होती है, दबदबे वाली, अंदर से चाहे वो जितने भी नर्म हो, बड़े सॉफ्ट हो, लेकिन ज़ाहरी तौर पर यूं लगता है कि अगर एक जुमला भी कह दिया ना, तारीफ वगैरह में इधर उधर की ऐसी वैसी बात कर दी, तो भाई हालात बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं, बड़े हालात ख़राब हो सकते हैं, तो इसलिए बच के रहें। बहुत सी ख़वातीन मुझे लगता है कि इस वजह से भी तारीफ से महरूम रह जाती हैं कि उनकी शख्सियत देखने में बड़ी बारोब लगती है
1: जी।
0: तो इसलिए मुझे लगता है कि ख्वातीन की तारीफ करने में बंदे को जरा मोहतात भी रहना चाहिए, मतलब किसी भी वक्त कुछ भी हो
1: आप
0: सकता
1: रहते
0: है।
1: हैं मोहतात?
0: मैं मतलब 100 में से 99% मैं मोहतात रहता हूँ।
1: रहते हैं?
0: हाँ जी, क्योंकि मेरा जो दायां और बायां गाल है, मैं चाहता हूँ ये बैलेंस्ड रहे।
1: उसमें उतार चढ़ाव ज्यादा ना दिखे, ऊंच नीच ना दिखे, इसलिए 1% की गुंजाइश आप रखते हैं ना।
0: हाँ, क्योंकि एक्चुअली चेहरा बिगड़ जाए ना, तो इसको ठीक करते करते बहुत टाइम लगता है।
1: 1% की गुंजाइश हम इसीलिए रखते हैं कि कि मतलब कभी कभी दिल अपने बस में नहीं रहता, जबान अपने बस में नहीं रहती, तो कभी वो हालत आ जाए जब आदमी गालों से ऊपर भी सोचने लगे, तो उसकी 1% की गुंजाइश रखते हैं आप।
0: तो इसलिए जो ख्वातीन मुझे लगता है कि बड़ी सॉफ्ट स्पोकन है, अच्छी हैं, नाइस हैं, ज़ौक वाली हैं, ज़र्फ वाली हैं, बात को सुनने वाली हैं, बात को बर्दाश्त करने वाली हैं, तो वहाँ मैं थोड़ा बहुत रिस्क ले लेता हूँ।
1: अच्छा,
0: आई नो इट्स अ वेरी रिस्की मामला, लेकिन फिर भी चलो मैं सोचता हूँ कि चलो यहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादा फिसलन नहीं है, तो मैं यहाँ पे रिस्क ले सकता हूँ।
1: इसी तरीके से हम आमिर को समझते रहेंगे 11 बजे तक। और अगर आपको समझ में आ गए हो आमिर, तो आप कॉल कीजिए 416-593-0055। और दूसरा नंबर भी बता दूं, डिजिटल मीडिया प्रमोशन का जो कोर्स है उसके हवाले से थोड़ी सी सीट्स बची हैं, उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, जिस बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे आमिर के साथ। 416-303 3639। तो अमित, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे इस कोर्स के बारे में। 23 मई से शुरू हो रहा है, स्मॉल साइज क्लासेस होती हैं, बड़ी जल्दी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दो सवाल हैं जो शॉर्ट में जानना चाहूँगी कि डिजिटल मीडिया किसको कहते हैं और डिजिटल मीडिया प्रमोशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं आपके कोर्स में।
0: मैं आपको बता दूं, ये लाइफ लॉन्ग स्किल है। डिजिटल मीडिया पे अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं आप, कीजिए। किसी की मोहताजी नहीं रहेगी, किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। डिजिटल मीडिया पे खुद अपना कंटेंट क्रिएट कर सकेंगे, खुद आप उसको वायरल कर सकेंगे, खुद फॉलोइंग बढ़ा सकेंगे, सब्सक्रिप्शन बढ़ा सकेंगे। हम आपको मेथडोलॉजी सिखाएंगे, तरीका सिखाएंगे कि आपने डिजिटल मीडिया का पूरा काम कैसे सीखना है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको काम सिखाते हैं। आपकी उम्र 60 साल है, आप 55 साल के हैं, आप 50 साल के हैं, आपकी उम्र 45 साल है, आप कुछ पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, आपको सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, तो ये कोर्स आपके लिए है। कर लीजिए, ये उम्र भर का स्किल है। ये 30 तारीख को ही क्लासेस शुरू हो रही हैं, 14-15 दिन ही बाकी बचे हैं, 2 ही हफ्ते बाकी बचे हैं। इनरोल कराइए डिजिटल मीडिया क्लास में। ये रहा नंबर 4163033639। नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन का कोर्स है। कोई भी उम्र है आपकी, कोई भी एजुकेशन का बैकग्राउंड है आपका, अगर आप डिजिटल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे अपनी धाक बिठाना चाहते हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, वीलॉगर बनना चाहते हैं, अपने बिजनेस को खुद प्रमोट करना चाहते हैं या मार्केट में कोई बेहतरीन जॉब करना चाहते हैं डिजिटल मीडिया की, तो ये रहेगा नंबर। कोर्स कीजिए 4163033639।
1: जी, और चलते चलते एक और सवाल कि ये जो कोर्स है, इसमें जो कंटेंट्स आप पढ़ाएंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं शुरू से लेके आखिर तक, तो क्या उस कोर्स को करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट जाएंगी, जिसके लिए उन्हें हायर करना पड़ेगा किसी को, या पूरी तरीके से वो अपने आप में अकम्प्लिश्ड होंगे इस प्रोफेशन को टेक ओवर करने के?
0: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये कोर्स बनाया ही इसलिए गया है कि आप किसी पर डिपेंड ना करें, किसी के मोहताज ना हो जाएं। कोर्स करने के बाद भी आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत ना रहे, किसी की हेल्प की ज़रूरत ना रहे। इनडिपेंडेंटली अगर आपने पोस्टर डिज़ाइन करना है, उसका आर्ट वर्क बनाना है, उसको वायरल करना है, रील बनानी है उसको वायरल करना है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनानी है, घर का कोई भी वर्चुअल टूर बनाना है आपको, या मोर्टगेज में है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, या वीलॉगर बनना चाहते हैं शौक के अतबार से, तो दिस कोर्स इज फॉर यू। राइट फ्रॉम स्क्रैच टू एन एंड, शुरू से लेके एंड तक पूरी ट्रेनिंग है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल कोर्स है। ये रहा नंबर मिलाने के लिए, नंबर मिलाइए। 23 तारीख को क्लासेस शुरू हो रही हैं, वी हैव गॉट अनदर 15 डेज टू गो, और बहुत लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास इसके लिए। 4163033639।
1: जी, 4163033639। आमिर, फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी है, हर तरीके से लोग अपने आप को अनवाइंड करते हैं, ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। कुछ लोगों ने प्लान किया होगा कि रात में क्लब में जाएंगे और यू नो डाउनटाउन में घूमने जाएंगे, लेट नाइट हम आउटिंग करेंगे। कुछ का प्लान होगा कि बस शाम से ही घर में जाएंगे और रिलैक्स करेंगे, अपनी पसंद का ड्रामा देखेंगे या मूवी देखेंगे, अपनी पसंद का खाना खाएंगे, पॉपकॉर्न घर पे ही बना के साथ में रख लेंगे, नो अनवाइंड अपने घर पे करेंगे फैमिली के साथ, हाँ, बच्चों के साथ। कुछ लोग होंगे कि बस थोड़ी सी लाइट डिम, कल की पुरानी यादों में खो जाएंगे कि बैक होम में हम छत पे सोया करते थे, वीकेंड होता था लंबे टाइम तक सो जाया करते थे। एक गाना है, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, वाह वाह, कहते हैं बहुत याद आती है पुराने मकानों की छतों पर गुजरी वो बचपन की रातें। बहुत याद आती है पुराने मकानों की छतों पे गुजरी वो बचपन की रातें, पहले झाड़ू से छत को साफ करने की मुहिम, फिर पानी की बाल्टी से छिड़काओ और आखिर में उस पानी के सूखने पर उठने वाली वो भीनी भीनी खुशबू। दरिया बिछाकर लाइन से बिस्तर बिछाने की कवायद, पानी की सुराही के मुंह को लोटे से ढककर रखने का जतन, और लेट कर दिखाई देने वाले वो चमकीले सितारे, रात भर बरसता वो नीम का पेड़, कभी आधी रात को मौसम खराब होने पर, बारिशें होने पर अपने अपने बिस्तर समेट कर नीचे भागने की जल्दी।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: वो वक्त जो है वो लौट कर तो नहीं आएगा,
0: नहीं आएगा,
1: लेकिन उसकी यादें हमारे दिल में इतनी ताजा हैं कि जब भी दिल चाहता है उन यादों को निकालते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे
0: बिल्कुल,
1: मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात यह है शिवानी के इंसान को लम्हा मौजूद में रहना चाहिए, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन माजी के दरीचों से वो लम्हे हमेशा ताज़ा करने चाहिए जिनके साथ छोटी छोटी सी मासूम सी शरारतें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो शरारत इंसान की ज़िंदगी में मौजूद है तो इसमें रौनक मौजूद है, इसमें ताजगी मौजूद है, इसमें हुस्न मौजूद है, और नज़ाकत मौजूद है, हसासियत मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि जिस दिन इंसान में से ये छोटी शरारत का अंसर या एलिमेंट खत्म हो जाता है, उसी दिन जिंदगी वीरान हो जाती है, बड़ी बंजर सी हो जाती है, बहुत
1: बेनूर सी हो जाती
0: है, बेनूर सी है। ऐसा है कि मुझे लगता है कि बचपन का कोई एक दोस्त मिल जाए, या फिर कहते हैं कि तवानाई की कोई डोज मिल जाए,
1: क्या बात
0: है? एक ही बात है कि बहुत पुराना बचपन का कोई दोस्त मिले आपको, तो उसके साथ सिर्फ आधा पौना घंटा आप गपशप लगा लें, वो पुरानी यादें ताज़ा कर लें, तो आप यूँ लगता है जैसे वीरान फसल को किसी ने सैराब कर दिया पानी से। सो यू आर राइट, वी शुड कीप मीटिंग आवर ओल्ड फ्रेंड्स।
1: Absolutely. ये प्यारा सा गाना उन सभी के नाम जो मेरे और आमिर की तरह अभी इस वक्त उन यादों में खोए हैं, जो कभी वापस नहीं आएंगी लेकिन हमेशा हमारे साथ ज़रूर रहेंगी।

0: दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, ये जो हैप्पी हैप्पी मेमोरीज वाला ये थॉट है. एक बहुत अच्छा सा एक आर्टिकल है जो उसका टाइटल है आमिर, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ लवी लवी शो पे, हाउ टू एक्टिवेट योर हैप्पीनेस केमिकल्स. हमारे अंदर हॉर्मोन्स, हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं, लव हॉर्मोन्स भी होते हैं, बट बात यह है कि आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में वो सारे हॉर्मोन्स हार्बनेशन में हम रख देते हैं. सब अंदर है हमारे लेकिन हम उसको निकालते नहीं हैं, राइट. तो कहते हैं कि अपने हैप्पीनेस के केमिकल्स को कैसे एक्टिवेट करना चाहिए. एक हमारे बॉडी में एक हॉर्मोन होता है और एक केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं रिवॉर्ड केमिकल. अच्छा. वो हमें रिवॉर्ड देता है, रिवॉर्ड जैसा काम करता है. जब हमें रिवॉर्ड मिलता है तो हमें अच्छा लगता है ना. अक्षय कुमार ने एक बार कहा था कि मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे रिवॉर्ड चाहिए. रिवॉर्ड इज इन मॉनेटरी फॉर्म, अवार्ड इज इन ट्रॉफी. कहते ट्रॉफी तो आपने डिसाइड कर ली, दे दी किसी और को, दे दी. अवार्ड, रिवॉर्ड मेरे पास
1: ही रहेगा. सो
0: डोपामाइन जो होता है ये एक रिवॉर्ड केमिकल होता है. ये अगर आपके अंदर आप एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपको हमेशा ये फील आती है कि यू आर द बेस्ट.
1: तो इसको कैसे एक्टिवेट करना होता है?
0: उसमें होता है कि किसी टास्क को आप कंप्लीट करें.
1: ओह अच्छा.
0: अगर आपने आज सुबह अभी आप घर से निकाले, आप कितने फ्रेश नजर आ रहे हैं, आपने फॉर्मल्स पहने हुए हैं. और जब मैंने पूछा कि क्या
1: फॉर्मल पहने, थोड़ी पहने हुए, आप टी शर्ट को फॉर्मल कैसे, कैसे?
0: नहीं नहीं, आपने फॉर्मल पहना हुआ है, सेमी फॉर्मल्स में आप.
1: आज हमारी ड्रेसिंग सेंस बड़ी गड़बड़ाई हुई है.
0: नहीं, आपने फॉर्मल्स पहने हैं. और
1: टी शर्ट कैसे फॉर्मल हो सकती है शिवानी?
0: नहीं नहीं, शर्ट है, टी शर्ट कैसे?
1: आई थिंक इट्स टी शर्ट.
0: जो इंसान दूसरे की पिंक को ग्रीन को पिंक कह सकता है, सूट को साड़ी कह सकता है, वो आप बिल्कुल इसमें सरप्राइज ना होइए कि वो टी शर्ट को शर्ट या
1: शर्ट भी कह सकता है.
0: आपने शर्ट पहनी है और फॉर्मल्स पहने.
1: ओह थैंक यू वेरी मच.
0: तो मैंने जब पूछा कि आज का क्या प्लान है, बिकॉज मेरे जहन में फ्राइडे का वो प्लान गया, तो इन्होंने बात छुपाते हुए अपने फोन को उल्टा रख के कहा कि कुछ कुछ प्लान है मीटिंग्स के. तो मैं तो ये देखिए, आपने रिवॉर्ड केमिकल धीरे धीरे बाहर आया. तो ये डोपामाइन जो है वो एक टास्क को कंप्लीट करने से मिलती है. आपने सोचा दोपहर तक मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना है, एकदम से वो कंप्लीट हुआ, आपको लगा कि एकदम लाइट फील हुआ, आपको अच्छा लगा. दूसरी चीज, एक सेल्फ केयर एक्टिविटीज में अपने आप को डाला, जिससे आपको सिर्फ आपके लिए वो केयर की एक्टिविटीज.
1: अच्छा.
0: आप स्पा में गए, मसाज पे गए, आपने अपने लिए कुछ खरीदा, सो दैट गिव्स यू हैप्पीनेस. आप सिर्फ अपनी शॉपिंग पे गए, आपने चार चीजें ही खरीदी हो, दो चीजें ही खरीदी हो, अपने लिए खरीदी.
1: अरे वाह.
0: तीसरी चीज, एक ऐसा खाना आपने खाया जो आपको बहुत दिनों से सोच रहे थे, आप सीधे दोपहर में गए, आपने अपने आप को पैम्पर किया, वो फूड ऑर्डर किया, आपने खाया. चौथी चीज, अपने लिटिल विंस जो है जिंदगी के, जो छोटी छोटी खुशियां आपकी हैं, छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट किया, इससे हमारा डोपामाइन एक्टिवेट होता है.
1: वेरी नाइस.
0: दूसरी चीज, ऑक्सीटोसिन, ये हमारे लव हॉर्मोन्स होते हैं.
1: ये जो बड़ा मुश्किल सा लफ्ज है भाई.
0: नहीं, बड़ा आसान है.
1: जैसे मोहब्बत मुश्किल है, ये लव्ज भी मुश्किल है.
0: जी, मोहब्बत हो ना हो, ये हॉर्मोन्स आपके अंदर रहेगा. अच्छा. ये आप हमेशा एक्टिवेट कर सकते हैं. प्लेइंग विद योर पेट, आपकी कैट है, आपकी डॉग है, जिनको जो एनिमल लवर्स होते हैं उनको इसमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है. दूसरी चीज, एक बेबी के साथ प्ले करना, आपके अंदर का जो प्यार है वो जगता है, आपका बच्चा है कोई है. तीसरी चीज़, किसी का हाथ पकड़ना, किसी के हाथों को प्यार से अपने हाथों में लेना और किसी को हग करना और किसी दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना, भले ही वो सही हो या
1: या गलत हो,
0: ये ऑक्सीटोसिन है, ये लव हार्मोन आपके बढ़ाता है.
1: तो इसका मतलब है कि आज सुबह मैंने कुछ ना कुछ अचीव किया है, मुझे भी रिवॉर्ड मिला है, क्योंकि मैंने आपको इतना खूबसूरत जेन्युइन और असली कॉम्प्लीमेंट दिया है.
0: यू गॉट इट राइट,
1: है ना.
0: हाँ. और शॉर्ट में दो और बता दूं, सेरोटोनिन. सेरोटोनिन है एक, ये एक हार्मोन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड से ये मूड स्टेबलाइजर का हार्मोन होता है. अक्सर आजकल लोगों का मूड खराब रहता है ड्यू टू सो मेनी थिंग्स. उसके लिए होता है कि सन में थोड़ी देर जाना, जिससे विटामिन डी मिलती है और मूड इन्हेंस होता है आपका. और नेचर में थोड़ी सी वॉक करना, थोड़ा आधे घंटे नेचर,
1: दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
0: यस. स्विमिंग हुई, रनिंग हुई, मेडिटेशन हुआ, ऐसी कोई भी एक्टिविटी को लेना, क्योंकि उन चीजों में आप अपने में रहते हैं.
1: यू बिल्कुल
0: लिव इन योर सेल्फ. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंडोर्फिन नाम सुना होगा, ये एक पेन रिलीफ का हार्मोन होता है। ये सारे हार्मोन हमारे अंदर है।
1: अच्छा।
0: और ये आपके लिए जगता है जब आप एसेंशियल ऑयल्स से अपने आप को मसाज करते हैं, अपने आप को पैम्पर करते हैं, लाफिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, और डार्क चॉकलेट जो होती है ना, ये आपके मूड को बढ़ाती है। थोड़ी सी आप डार्क चॉकलेट खा लीजिए।
1: अच्छा।
0: ये आपको हेल्थ वाइज भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगी।
1: तो मतलब ये इसकी खास क्वांटिटी होती है, यानी ऐसा तो नहीं है कि डार्क चॉकलेट ज़्यादा खा ली तो हर वक्त बंदा फिर हंसता ही रहेगा?
0: नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं। थोड़ी सी खाइए।
1: अच्छा।
0: ज्यादा हंसेंगे तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। वहां भी जवाब देना है, वहां यहां मामले सुधर गए आपके, वहां मामला बिगड़ गए। ये सारे हॉर्मोन्स भी कुछ नहीं कर
1: इसका पाएंगे। मतलब है कि वो क्वांटिटी बहुत अहम है कि थोड़ी सी खानी है। मतलब हाँ। कुछ लोग तो है मतलब चॉकलेट शुरू करते हैं खाना,
0: अपनी खुशी थोड़ी सी जल्दी से छुपा सके।
1: अच्छा अच्छा अच्छा राइट। ये आपने बड़ी कमाल की इन्फॉर्मेशन दी है, और मुझे लगता है कि इनमें से कुछ भी बंदा अपना ले तो उसका मूड बेहतर रह सकता है। एंग्जाइटी है आजकल, डिप्रेशन है आजकल, लोग बहुत जल्द परेशान हो जाते हैं, बहुत सी डेडलाइंस हैं आगे, उनका ध्यान रखना होता है, और छोटे छोटे मसाइल इतने ज़्यादा होते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान का जो पैमाना है सब्र का, हिम्मत का, बर्दाश्त का, वो जवाब दे जाता है।
0: बिल्कुल सही।
1: तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो ऑल दीज पैरामीटर्स, द वंस यू हैव जस्ट मेंशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस योर लाइफस्टाइल।
0: जी बिल्कुल। और ज़रूर आप कोशिश कीजिए कि ये जो हार्मोन्स आपके अंदर हैं वो अंदर से थोड़ी देर के लिए बाहर आए।
1: सही बात।
0: और तो कभी कभी हम हमेशा खुशी दूसरों में ढूंढते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी खुशी
1: मौजूद है। बहुत खूबसूरत थॉट है। सबसे पहली चीज़, पहला हक, पहला राइट इंसान का उसके खुद पर है।
0: बिल्कुल।
1: अगर आप अपना ठीक से ख्याल रख सकेंगे, अपने आप को टाइम देंगे, अपनी केयर करेंगे, तभी तो किसी और का ख्याल रख सकेंगे। कहते हैं कि जहाज़ खुदा न खास्ता कहीं डूब रहा हो या क्रैश कर रहा हो तो उसमें प्रायोरिटी या तरजीह ये नहीं होती है कि आप दूसरों को बचाएं, प्रायोरिटी ये होती है कि आप खुद को बचाएं, सेल्फ डिफेंस करें। सेल्फ डिफेंस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ अटैक।
0: जी। और इसी के साथ हम एक फ्राइडे स्पेशल गाने की तरफ लिए चलते हैं। जैसे आमिर ने कहा कि ज़रूर आप करें, कहते हैं कि अपना बेहद ख्याल रखिएगा, कोई जी रहा है आपकी ही खुशी देखकर।
1: वाह वाह वाह, बहुत खूब। स्टे ट्यून्ड, दिस इज लवी डवी शो।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: This is Lovey Dovey Show. मैं हूँ शिवानी, मेरे साथ हैं आमिर और हम दोनों के साथ हैं आप सारे लिस्टनर्स। और ये है डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स। जाना पहचाना ये कोर्स है। अरसे से ये जो लवी डवी शो रेडियो टोरंटो कनाडा की जानिब से आपको दिया जा रहा है। कितने ही ऐसे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं जो अपना अपना बिजनेस जो है इससे करने के बाद शुरू कर चुके हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और अपना बिजनेस अब खुद प्रमोट करना चाहते हैं, खुद के बॉस बनना चाहते हैं। हायरिंग के लिए किसी को हायर करके ज़िंदगी भर पेमेंट करने से अच्छा एक छोटे अमाउंट दे के आप ज़िंदगी भर के लिए अपना खुद प्रमोशन कर सकते हैं A to Z। और उसके लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डिजिटल मीडिया कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आफीफ अली। आफीफ, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं?
4: Good morning. I'm well. How are you?
3: बिल्कुल ठीक ठाक, all good. Thank you so much for asking. और डिजिटल मीडिया कोर्स के हवाले से सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स जो नए नए लिसनर्स रोज जुड़ते हैं, तो सबसे पहले ये हमसे जानना चाहेंगे कि ये डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स क्या है?
4: ओके, सो ये डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन एक कोर्स है विच इज कल्मिनेशन ऑफ काफी डिफरेंट जो है ना फील्ड्स ऑफ मीडिया। इसमें कंटेम्प्रेरी मीडिया भी आ जाती है, जैसे फिल्म एंड टेलीविजन हो गई एंड सोशल मीडिया भी आ जाती है, राइट? तो इसमें हम सिखाते हैं काफी चीजें।
3: अच्छा।
4: सबसे पहले आपको कंटेम्प्रेरी मीडिया में सिखाते हैं डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन, कैमरा कैसे यूज करना है, उसके बेसिक्स, ISO वगैरह क्या होते हैं, लाइटिंग क्या होती है, राइट? उसके बाद अगर हम डिजिटल साइड पे आए तो हम पढ़ाते हैं सोशल मीडिया में क्या क्या चीजें होती हैं, सच एज कि आपको अपनी, क्योंकि सोशल मीडिया इज अ वर्टिकल फील्ड मोर ऑफन, तो उसमें कैमरा जो है वो स्ट्रेट होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता, तो उसकी डिफरेंट चीजें सिखाते हैं। बहरहाल ये सिखाते हैं कि उसमें आप किस तरह रील्स बना सकते हैं, क्योंकि टाइम स्पैन भी छोटा होता है, 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको अपना मैसेज देना है, वो आप कैसे करेंगे, स्टोरी बोर्डिंग कैसे होती है, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। उसके बाद पोस्टर डिजाइनिंग सिखाते हैं, एनिमेटेड पोस्टर्स होते हैं आपको, फिर सिखाते हैं कि पोस्टर रील्स कैसे बनाते हैं, काफी सारी चीजें। और उसके बाद आखिर में आता है कि एडिटिंग, आखिर में तो नहीं लेकिन जो थर्ड स्टेप होता है प्रोसेस का, वो कि आपने एडिटिंग कैसे करनी है, राइट? और एडिटिंग के लिए हम सबसे जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है अडोबी प्रीमियर प्रो, वो सिखाते हैं।
3: एंड
4: उसके बाद हम, जब आपका एक वीडियो बन गई या आपका एक प्रोडक्ट बन गया, तो आपने वो अपलोड कैसे करना है, मार्केट कैसे करना है, ये सारी चीजें सिखाते हैं इस कोर्स में। एंड दिस कोर्स इज फॉर लाइक 4 वीक्स का कोर्स है,
3: ठीक है,
4: सैटरडे एंड संडे फ्रॉम 1 PM to 6 PM।
3: जी, 1 PM to 6 PM, महज 4 हफ्तों में, वो भी सैटरडे और संडे जब मसरूफियत नहीं होती है, उसमें आप ये आइए कोर्स कीजिए और सिर्फ 4 हफ्तों में आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। जिंदगी भर के लिए आपके पास एक ऐसा हुनर होगा जो आप खुद अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। कंटेंट क्रिएशन और जो पंच लाइन होती है, जो टैग लाइन होती है, वो सब भी कुछ इसमें पढ़ाया जाता है, इंक्लूडिंग फंडिंग?
4: जी बिल्कुल, पंच लाइन, टैग लाइन, ये भी हमारे जो राइटिंग के अंदर आता है ना, उसमें आ जाता है।
3: अच्छा, ठीक है।
4: कि आपको फॉर एग्जांपल अगर आपका एक ब्रांड है तो आप उसकी जो है ना एक टैग लाइन क्या बनाएंगे, या फिर आपके एड की पंच लाइन क्या होगी, ये सारा भी सिखाया जाता है। एंड फंडिंग जहाँ तक आ जाता है तो फंडिंग भी सिखाते हैं, क्योंकि कैनेडा में काफी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फिल्म या फिर डॉक्यूमेंट्री को फंड करती हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, आपका सबसे पहले आइडिया होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद आपको किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, ये सारा सिखाया जाता है।
3: जी बिल्कुल, और उसके लिए नंबर एक ही घुमाना है आपको, एक छोटा सा अमाउंट, वेरी वेरी रीजनेबल अमाउंट एज कम्पेयर टू व्हाट यू विल बी टॉट इन द कोर्स, बहुत रीजनेबल अमाउंट है जिंदगी भर के लिए, सिर्फ वन टाइम फी है ये। 416-303-3639, आई रिपीट द नंबर 416-303-3639। हफीफ, इससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, कुछ और ऐड करना चाहेंगे?
4: या मैं ये कहना चाहूंगा कि इट इज ये जो कोर्स है ये हमने बनाया इसलिए है कि वो लोग जो खुद अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहे, या फिर वो खुद अगर फॉर एग्जांपल अगर उनको शौक है कि उनको जो है ना एक इन्फ्लुएंसर बनना है, या फिर उनको वीडियोस बनाने का शौक है, तो ये स्पेशली हमने उन लोगों के लिए बनाया है।
3: Amazing.
4: तो मेक श्योर यू कम टू दिस कोर्स, एंड जब आप आएंगे आपको खुद सीखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा इस कोर्स लेने में।
3: क्या बात है, तो बस मजे मजे में प्रोफेशनल बनिए और बहुत जल्दी से चार हफ्तों में प्रोफेशनल बन जाइए इस कोर्स को करके। 416-303-3639। हफीफ, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, प्लेजर हैविंग यू विद अस, थैंक यू।
4: थैंक यू सो मच।

0: लवी डवी शो, नदीम, श्रवण, दिलीप सेन, समीर सेन, जतिन ललित, इन तरह की जो म्यूजिक, अनु मलिक, इन सब सारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्हें अगर कहीं से भी पता चल गया
1: कहीं से
0: कि इन सब पर भारी पड़ेंगे आप 90s को लाइक करने के लिहाज से,
1: या
0: तो मतलब ये 90s का दौर कोई वजह नहीं कि वापस ना आ सके. ये क्या मतलब, ये क्या ऐसी एक्स फैक्टर था जो आपको खींच लाता है हमेशा 90s के?
1: देखिए, 90s का दौर दरअसल 90s का दौर नहीं है, वो एक कैफियत है जो इंसान पर तारी हो जाती है. जैसे कोई नशा तारी हो जाए इंसान पर, अपनी शुद्ध बुद्ध होश गंवा बैठे इंसान. इसी तरह की मौसीकी थी 90s की, वो बजती थी तो इंसान के दिल के तार बजते थे, आंखें रोशन हो जाती थी, अचानक रंग गुलाबी सा हो जाता था और होंठों पे वो बोल जारी हो जाते थे, और वो ऐसे नरमो नाजुक खूबसूरत बोल हुआ करते थे जिससे कितना भी कोई पत्थर दिल हो अचानक मान सा जाता था, अचानक शर्मा सा जाता था, अचानक वो जो हिचकचाना और घबराना था किसी का शायरी के दो बोल सुन के, वो बड़ा नायाब सा आजकल ज़रा हो गया है. आज वो शर्माना नहीं रहा, आज वो हिचकचाना नहीं रहा, आज वो पहली नज़र को देखने के बाद नज़र को झुकाना नहीं रहा. वो सारी चीज़ें नापैद सी हो गई हैं, और मुझे लगता है कि वो लोग जो 90s के दौर की एक आध फिल्म देख लें और उसी को अपना लें वो 3-4 घंटे को, तो उनकी ज़िंदगी आज भी बड़ी खूबसूरत और हसीन हो सकती है. क्योंकि जो मज़ा, जो नशा, जो कैफियत, जो हैसियत उस दौर के शर्माने घबराने में थी, आज के इस खुलेपन में नहीं है, और वो बड़ी शिद्दत से महसूस की जा रही है.
0: दिल में सनम की सूरत, आंखों में आशिकी दे, मेरे खुदा मुझे तू एक और जिंदगी दे.
1: जिंदगी दे, वाह वाह. और मेरा, मेरी ख्वाहिश ये है कि जो जिंदगी एक और पता नहीं दे के ना दे, चलो उस पे तो चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन जो दी हुई है वो जिंदगी अच्छे लोगों के साथ बीते. आपकी जिंदगी को ख़राब करने के लिए, आपकी जिंदगी को अपसाइड डाउन करने के लिए, अंग्रेजी का मुहावरा है, एक ही शख्स काफी होता है जो इसको नीस्तो नाबूद कर दे, आपकी सोचों की एक तरह से मट्टी बना दे, यानी उनको खाक आलूद कर दे. खाक आलूद का मतलब होता है मट्टी में मिलाना. तो एक ही शख्स काफी होता है. आपके आसपास अच्छे लोग हों, मुस्बत तवानाई हो, यानी जिसे पॉजिटिव एनर्जी कहते
0: जी,
1: हैं
0: जी.
1: और आपके आसपास मौजूद लोग आपके हम ख्याल हों. हम ख्याल होना बहुत ज़रूरी है. कोई खूबसूरत हो, कोई हसीन हो, कोई दिलकश हो, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन कोई आपके ख्याल के साथ हाँ में हाँ मिलाए, ये बहुत बड़ी बात होती है. बहुत से लोग तो ऐसे हैं ना कि वो कुछ भी कह लें उनसे पहला जवाब उनका ना ही होगा. आप जितनी भी,
0: और ये वाले ना जो है आमिर का जो मतलब इस ना से है वो 90s के शर्माने वाला ना नहीं है.
1: शर्माने वाला
0: जिसमें ना हाँ छुपी हुई थी.
1: मतलब वो दौर था जब मुलाकात के लिए बहाने तराशे जाते थे, खत लिखे जाते थे, और बकरे के खून से खत लिखने के बाद कहा जाता था ये मेरा खून है, अगली बेशक टेस्ट करवा ले किसी लेबॉरेटरी में जाके सर. और उस वक्त परखा जाता था, आजमाया जाता था, देखा जाता था किसी की मोहब्बत पे कितना दम है, और किसी की आवाज़ जांची जाती थी, किसी का अंदाज देखा जाता था. मुलाकात के लिए बहाने ना सिर्फ घर वालों से बल्कि 1000 तरह के तरद्दुद करके मुलाकात की जाती थी, और मुलाकात बड़ी मुख्तसर होती थी, कोई इतनी तवालत इख्तियार नहीं कर सकती थी. रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाके मिलने का भी रुझान कोई इतना आम नहीं था, पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा थी. बाप की एक नज़र बड़ी सख्त किस्म की और बड़ी तल्ख किस्म की 10-12-15 दिन के लिए आपको लर्जा देने के लिए काफ़ी हुआ करती थी. इसके अलावा बहुत से गीत जो आपके लबों पे हमेशा रहते थे, सुबह उठते थे गुनगुनाते हुए, शाम को सोते थे गुनगुनाते हुए, जूतों तक में भी आप परफ्यूम लगा के जाया करते थे, और हर तरह से बालों शालों का ख्याल रखते कि घने हैं, खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, मजबूत हैं, क्योंकि यू नेवर नो कोई उंगलियां फेरना चाहे उसमें.
0: तो बाल ही नजर आए ना, बालों को समझ के इंडिया, और एक दूसरे के मम्मी पापा की झूठी तारीफ करना, और दिल में है कि वो इंसान हमें छोड़ के नहीं जाए, हमसे मिले, लेकिन उससे कहना नहीं अभी तुम्हें घर जाना चाहिए ना।
1: और किसी का, किसी के लिए बहुत पोसेसिव हो जाना, किसी का बहुत ख्याल रखना, और लैंडलाइन फोन हुआ करते थे उस जमाने में, आप फोन मिलाते थे और ये जानते, ये सोचते और ये यकीन रखते हुए कि वही उठाएगा जिसके लिए आपने फोन किया।
0: और उस वक्त फोन पे बातचीत करना, और मोबाइल तो होते नहीं थे, लैंडलाइन पे भी आमिर कहते कितना टफ था, इट वाज अ चैलेंज। ऐसे में कोई नाराज हो गया दूसरे से तो चार चार दिन तक समझ में ही नहीं आया, बाद में कहीं मिला तो पता चला कि क्यों नाराज थे,
1: क्यों नाराज थे,
0: पता चले तुमने उसकी तरफ क्यों देखा, कुछ और समझ में नहीं आया तो ये कहते कि तुम्हें सोच के देख रहा था, और मान भी लिया जाता था, ये एक भोलापन देखिए किस बात को।
1: जी, और हम भोले लोग उसी दौर के हैं, हम मासूम लोग उसी दौर के हैं, हम सीधी सोच के हामिल लोग उसी दौर के हैं, हम सादा तर्ज ज़िंदगी रखने वाले लोग उसी दौर के हैं, हम सीधे को सीधा और गलत को गलत कहने वाले और स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट और ईमानदार लोग उसी दौर के हैं, हम शफाफ खूबसूरत हसीन रातों में जाग के दिए की लौ में पढ़ने वाले लोग उसी दौर के हैं, किताबों को अपने सीने से लगा के अजीज तर रखने वाले लोग भी उसी दौर के हैं, और इस्तेमाल शुदा कपड़े धुलवा के पहनने वाले और स्कूल में जाके ये बताने वाले कि ये मेरे वालिद ने कल ही खरीद के दिए हैं, हम उसी जमाने के लोग हैं।
0: सच ए ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, अमेजिंग।
1: तो हम मान रखने वाले लोग हैं, हम बात रखने वाले लोग हैं, हम इज्जत लिहाज वाले लोग हैं, हम अदब एहतराम वाले लोग हैं, हमने रिश्तों को सजाना बनाना चलाना सीखा है, हमने ताल्लुक को तोड़ना नहीं सीखा है, हमने वालिदैन से अदब सीखा है, किसी ने पाँव में झुकना सीखा है, किसी ने हाथ मिलाना सीखा है, किसी ने सलूट मारना सीखा है, और किसी ने अपने से बड़े के लिए ताजीम के जज्बों को दिलों में भरना सीखा है। हम उसी दौर के।
0: बहुत खूब आमिर, सच अ ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड, और ऐसे ही खूबसूरत सी आवाज़ के बाद आपकी एक गाना तो बनता है फ्रॉम द मूवी निकाह, और जावेद अख्तर साहब ने उसी दौर में चार कुछ लाइनें लिखी। अब अगर आओ तो जाने के लिए मत आना,
1: वाह।
0: अब अगर आओ तो जाने के लिए मत आना, सिर्फ एहसान जताने के लिए,
1: वाह वाह वाह।
0: मैंने पलकों पे तमन्नाएं सजा रखी हैं, दिल में उम्मीद की 100 शम्में जला रखी हैं,
1: जला रखी हैं,
0: ये हसीं शम्में बुझाने के लिए मत
1: आना, वाह वाह वाह।
0: प्यार की आग में जंजीरें पिघल सकती हैं, चाहने वालों की तकदीरें बदल सकती हैं, तुम हो बेबस ये बताने के लिए मत आना, अब अगर आओ तो जाने के लिए मत आना, अब अगर तुम आना जो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, मुझसे मिलने की अगर तुमको भी चाहत है कोई, तुम कोई रस्म निभाने के लिए मत आना,
1: बहुत हो,
0: तुम अगर आओ तो जाने के लिए मत आना। 416-303-3639 is the number to call.

0: मसाज थेरेपिस्ट जो 15,000 से 20,000 डॉलर महीना कमाता है, सुकून से रहता है, रिसेशन फ्री किस्म का काम है, ये काम कभी ख़त्म नहीं होगा, बंद नहीं होगा, कम नहीं होगा, आप के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट भी हो सकती है, आप बात ज़रूर कीजिए रूहानी कॉलेज, ये रहेगा नंबर 905-731-2555 नंबर दोबारा बता रहे हैं 905-731-2555 बहुत शुक्रिया आपका ओम जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू,
1: थैंक यू अमित जी। जस्ट एक सेकंड ऐड करना चाहूंगा
2: मैं, बिल्कुल,
1: कि इसमें ना जिनकी जॉब आजकल बहुत लॉस हो रही है, जिनकी जॉब लॉस हो गई है, हालांकि गवर्नमेंट ने उस आप में बहुत सारे चेंज किए हैं, लेकिन जिनकी जॉब लॉस हो गई है ईआई पे है, उनके लिए बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री।
0: अरे वेरी नाइस,
2: बात है, क्या बात है,
1: ग्रांट है जी, ग्रांट मतलब कि उसमें पैसा आपको वापस भी नहीं करना।
2: क्या बात है। और देखिए एक बहुत फ्लरिशिंग करियर आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी से कॉल घुमाइए, पूरी जानकारी लीजिए 905-731-2555। और ओम जी आपने वक्त निकाला हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू आप दोनों का जी,
2: थैंक यू जी। और ये जो गाना है मुन्नी बदनाम तेरे लिए आमिर, ये 90s का नहीं है लेकिन फ्राइडे का है,
0: फ्राइडे का है, और
2: कुछ काम चला देगा आपके लिए।
0: मैं ये समझता हूँ कि हर 90s का गाना फ्राइडे का गाना ही है।
2: पॉजिटिव सोच अगर आपको लेनी है तो ये नंबर घुमाइए आमिर से बात करने के लिए 416-303-3639।
0: मुझे 90s के गाने बहुत पसंद है, लेकिन जिस तरीके से वो फिल्माए गए हैं वो उससे भी ज्यादा पसंद है।
2: बिल्कुल,
0: हीरोइन का जो रक्स है वो बड़ा कमाल का हुआ करता था, हीरो के टेंट्रम ज़्यादा होते थे, हीरोइन के कम होते थे उस ज़माने में, तो हीरो तो मतलब उसकी उसका रोब, उसका दबदबा, उसकी अहमियत, उसकी हैसियत, उसकी प्रेजेंस सब कमाल की होती थी पर्दा स्क्रीन पर, हीरोइन भी थोड़ा बहुत कर लेती थी बीच में
2: तो काम चल जाता था,
0: तो काम चल जाता था मिला जुला के। मैं इक्वलिटी ऑफ राइट्स का सबसे बड़ा हामी हूँ, मानने वाला हूँ, समझने वाला हूँ, और मैं इसके लिए लोगों से बहस भी करता हूँ, आर्गुमेंट भी करता हूँ कि इक्वलिटी ऑफ राइट्स का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन 90s के गाने मुझे पता नहीं क्यों पसंद हैं, ये भी बहुत जरूरी है बताना। सो आई लव दोस सॉन्ग्स, आई मीन टू देम
2: जी।
0: या 80s में भी थोड़ा बहुत अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस हुआ,
2: नहीं हीरोइन उस वक्त अपनी राइट ऑफ इक्वालिटी इक्वालिटी समझती थी, उनके नाज उठाना, तो इफ दे वर हैप्पी इट्स ओके।
0: आप सुन रहे हैं लवी डवी शो, सिलसिला जारी रहेगा आज 11 बजे तक, स्टे ट्यून्ड।

0: ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
1: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਵਾਰ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
2: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
3: लवी रवि शो, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। आमिर, तुम्हारी आंखें शरारती हैं, तुम अपने पीछे छुपे हुए हो, बगौर देखूं तुम्हें तो मुझको शरारतों पे उभारती हैं, तुम्हारी आंखें शरारती हैं। अब ऐसी कितनी ही लाइनें आमिर आप के लिए तो बड़ी कॉमन सी बात है, आप अक्सर जिंदगी में इन लाइनों से आपका पाला बहुत ज़्यादा पड़ा है। तो आंखें कैसी भी हों, नीली आँखें हों, ब्राउन आँखें हों, खूबसूरत आँखें हों, लेकिन वो कम लगती हैं। ऐसा लगता है कुछ और होना चाहिए, कुछ और खूबसूरती होनी चाहिए। तो इन सब के ऊपर एक चीज़ भारी पड़ती है, वो है एक ऐसा डेस्टिनेशन जहाँ पे आप जाते हैं। जहाँ पे आप जाते हैं तो आपको लगता है एक ऐसी दुनिया में आ गए जो आपको बेहतरीन और खूबसूरत बनाने की वो सारी सलाहियतें अपने पास रखती है, सारी अकम्प्लिशमेंट अपने पास रखती हैं। वो है कांडा ऑप्टिकल की अमेजिंग लोकेशंस। और आमिर, आप और हम कितनी ही बार वहाँ पे गए हैं, और वहाँ की जो कस्टमर सर्विस है, वहाँ के जो डिज़ाइनर फ्रेम्स हैं, वहाँ का जो कलेक्शन है, वहाँ का जो सिलेक्शन है, वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है।
4: जब आप कनाडा ऑप्टिकल जाते हैं तो मुझे यूँ लगता है तब आपको जाके ये एहसास होता है कि आपका चेहरा नामुकम्मल सा है। इस पर ये खूबसूरत से ग्लासेस लगेंगे तो आज के मौसम में ये मुकम्मल होगा।
3: समथिंग वॉज मिसिंग। जब
4: कोई ऊपर वाला हुस्न दे आपको और आप उसकी हिफाजत ना करें तो मुझे लगता है ये तोहफे की नाकदरी है। ऐसे ही जैसे खूबसूरत आंखें मिली हों आपको और आप उनकी हिफाजत करना भूल जाएं, इसका मतलब है आपने उस तोहफे का शुक्र अदा नहीं किया।
3: सही,
4: तो आंखों की हिफाजत कीजिए। किसके साथ करनी है? कांडा ऑप्टिकल से। हमें आपकी, हमारी, सबकी, हर दिल अजीज शख्सियत ने ज्वाइन किया है। अश्विनी जी, वेलकम करते हैं आपको।
3: गुड मॉर्निंग।
5: थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शिवानी जी एंड अमीर जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम, बहुत प्यार से सुन रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, और इतना ब्यूटीफुल डे भी लगा है। मदर्स डे का इवेंट, देखिए मदर्स डे इवेंट, आपके प्रोग्राम की मैं इंतजार में था आज सुबह।
3: अच्छा।
5: उसके वहां पे अनाउंस शुरुआत होगी, उसके बाद हम उसका रिबन काट के इवेंट को शुरू करेंगे।
3: क्या बात है।
5: तो ये देखिए, बहुत आगे मैंने ये ऐसी डील नहीं लगाई, सो दिस इज गोइंग टू बी ओनली गुड अंटिल संडे एंड ऑफ द डे।
3: अच्छा।
5: ऑल लोकेशंस आपके अनाउंस करने के बाद, फिर मैं जो हमारी जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसके बाद वो सेंड की जाएंगी।
3: जी,
5: तो आप ये देख लीजिए कि कितना पावरफुल स्टेशन है आपका और कितना पावरफुल प्रोग्राम है।
3: थैंक यू।
5: कि वहां से हम शुरुआत करते हैं।
3: बहुत बहुत
5: शुक्रिया। दूसरा, शिवानी जी, आप अमीर जी को ज्यादा मत तारीफ किया करो इनकी आंखों की, ये आ रही ऑलरेडी बहुत आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं।
3: नहीं, इनको लगता है कम है, इनको लगता है कम है। अभी मैंने ऑफ द एयर इनकी तारीफ की तो उन्होंने कहा नहीं, जल्दी अश्विनी जी को लीजिए, समथिंग वॉज मिसिंग, वो मुकम्मल करेंगे तारीफ।
5: इनको कहा करो कि आपकी आंखें भी बुरी हैं, आप बूढ़े लग रहे हो, सफेद बाल पे रहेंगे, थोड़ा सा बता दिया तो इन्होंने फिर चढ़ जाना, फिर मुश्किल हो जाता है, टावर पे पहुंच जाते हैं। तो इनके ऊपर इजी लिया करो। तो अमीर जी, ये तो है आपके ऊपर टिप्पणी हमारी। तो सारी जो हमारी प्यारे प्यारे कस्टमर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट है, खास मदर्स डे के लिए। अभी सोशल मीडिया पे भी पोस्ट हो जाएगा विद इन 10 मिनट्स। उसमें जितनी भी लेडीज जो भी शॉपिंग करेंगे आज का दिन सैटरडे एंड संडे, उनको प्रिस्क्रिप्शन फ्रेम्स है 60% की है, नो मोर 40% फॉर देम, but only very limited time until Sunday, end of the day, when store closes, the deal is finished. So 60% unko deal di jayegi on डिजाइनर प्रिस्क्रिप्शन फ्रेम। देखिए रेगुलर फ्रेम पे तो आपको 90 लोग कहते हैं जी 90% ऑफ, कोई एक को मैंने सुना था जी हम 95% भी कर देंगे, बट दोज फ्रेम्स वर्थ नथिंग, यू कैड गिव व्हाट एवर यू वांट, एंड व्हाट वी कैरी इज टॉप डिजाइनर प्रिस्क्रिप्शन फ्रेम्स, नेम ब्रांड, समथिंग हाईएस्ट क्वालिटी, नॉट डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट, समथिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, टोटल करंट प्रोडक्ट हमारे स्टोर में जो कैरी करते हैं उनके ऊपर लेडीज को, खास लेडीज को इस स्पेशल टाइम के साथ हम उनको 60% ऑफ देंगे एंड ऑफ संडे। सभी से मेरी हाथ जोड़कर बेनती है, अगर आपने कुछ खरीदारी करनी है ग्लासेस की इस वक्त, तो दिस इज द एब्सोल्युटली बेस्ट टाइम टू कम इनटू अवर स्टोर्स एंड एंजॉय दैट सेविंग, the yeah, top best nice. of the best saving, this is what it is. Even मैं बताता हूँ शिवानी जी, मैं आपको कि ये जो अनाउंसमेंट मैंने की है ये अभी तक हमारे स्टोर स्टाफ को भी नहीं पता।
4: अरे वाह वाह,
5: I'm going to tell them from now on until Sunday anybody walks in, लेडीज खासकर लेडीज के लिए, ये माताओं के लिए हमने लगाई है 60% ऑफ उनको ऑटोमेटिकली किया जाए प्रिस्क्रिप्शन फ्रेम्स के ऊपर। ये सेल अभी से शुरू हो चुकी है, 10 और 11 बजे हमारे सारे स्टोर खुल जाते हैं, सभी को पता ही है, तो प्लीज अपॉइंटमेंट लेनी है डॉक्टर के साथ, हमारे पास डॉक्टर्स का पूरा इंतजाम होता है इवनिंग्स के लिए, वीकेंड के लिए। You can also call 416-922-5263. इस नंबर से आप हमारे किसी भी स्टोर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या go to kandaoptical.com, वहां पे आई एग्जाम का सेक्शन है, वहां क्लिक कीजिए, यू कैन सेंड ए रिक्वेस्ट, वी विल टेक ओवर फ्रॉम देयर एंड वी विल ऑर्गेनाइज फॉर यू वे यू लाइक इट।
3: क्या बात,
5: वेरी सिंपल शिवानी जी, कोई हमने सिस्टम इतना इजी बनाया हुआ है कि किसी को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। व्हेन दे वांट टू रीच अस, इजी टू रीच अस, आई ऑलवेज इवन माय ओन नंबर आई मेक इट वेरी विजिबल टू एवरीबॉडी, सो इफ एनीथिंग कॉल मी इवन डायरेक्ट।
3: क्या बात है,
5: इससे ज्यादा देखिए वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर अवर कम्युनिटी इज टेकन केयर, स्पेशली व्हेन कम्स टू द आईज, दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी को कोई डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बनानी है, वी बना के देंगे आंखों के लिए, ग्लासेस लेने हैं, कॉन्टेक्ट लेंस लेने हैं, वी आर देयर फॉर यू। यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ योर आईज, वी स्पेशलाइज इन दिस, वी गॉट इट ऑल, एनी कलर। देखिए बहुत पार्टीज भी होंगी, डिनर्स होंगे, खासकर दिस वीकेंड, तो अगर किसी को किसी तरह के कॉन्टेक्ट लेंस चाहिए जिससे आंखों का रंग दे वांट टू मैच विद देयर ड्रेस, यू नो, शिवानी जी आपको तो पता है लेडीज,
3: अश्विनी जी ने कितना अच्छा एक्सप्लेन किया है ना।
4: आज तो फिर शिवानी जी को गुलाबी रंग के लेंस चाहिए।
5: देखिए शिवानी जी के लिए तो कुछ भी पॉसिबल है।
4: वाह वाह वाह वाह, वेरी नाइस,
3: थैंक यू।
5: आपका मुझे फिक्र है
3: अश्विनी जी, अगर जिंदगी में एक इंसान आमिर को वन ऑन वन ले सकता है तो मैं शर्तिया कह सकती हूँ, उनके खुद के अम्मी अब्बू नहीं है आप।
4: चले कोई तो पूरी दुनिया में बड़ा भाई है हमारा, हमारे लिए सोचने वाला, हमारे लिए परेशान होने वाला।
5: इसलिए पहले ही इनको क्लैरिटी से बताना जरूरी है। तो दिस इज एन अमेजिंग डे
3: जी,
5: आज भी इतना ब्यूटीफुल डे लगा है, एंड सैटरडे एंड संडे, सभी से हाथ जोड़ के बिनती है, प्लीज डू कम। इफ समबडी नीड्स टू गिव समबडी अ गिफ्ट वाउचर, वी हैव दोज अवेलेबल एज वेल इन कांडा ऑप्टिकल, तो वो भी आप ले सकते हैं। अपने किसी को गिफ्ट देना है, देखिए आंखों की रोशनी का गिफ्ट तो किसको देना है, वो तो सारी उम्र उसकी हमेशा अप्रिशिएट ही करेंगे।
4: बिल्कुल सही,
5: आंखों की रोशनी है जो बहुत जरूरी है, और आंखों की भलाई के लिए प्रॉपर चश्मे लगे हो, प्रॉपर आई एग्जाम हो, किसी ऊपर कुछ नहीं है,
3: क्या
4: बहुत,
5: नथिंग लाइक इट,
4: बहुत।
5: सो वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर इन दिस बिजनेस, आई एम इन दिस बिजनेस, एंड आई ब्लेस्ड दैट आई हैव अ टीम लाइक यू विद अस, मेकिंग इट विजिबल टू द पब्लिक, हमारा संदेश सब तक बड़े प्यार से आप पहुंचाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया
3: जी अश्विनी जी। इस नोट पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी आमिर कि ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ हैं, हमें इतने नेगेटिव कभी कभी हालातों से सामना करना पड़ता है, तो हर एक ओकेजन को इतना पॉजिटिव बना देना। और देखिए अभी मदर्स डे में परसों है मदर्स डे, आज से ही हम सब इतने खुश हो गए कि हमें डील्स मिल रही हैं। और इस पॉजिटिव नोट पे आमिर जी मुझे ना आंटी की यानी कांडा जी की जो मदर थी उनकी बहुत याद आ रही है, क्योंकि हर ओकेजन पे वो साथ में होती थी और उनकी जो मुस्कुराहट थी ना इतनी खूबसूरत थी कि हम लोग दौड़ दौड़ के उनके पास बैठ के पिक्चर्स खिंचवाते थे। अब वो जहाँ भी हैं आपको जरूर इतनी ब्लेसिंग्स दे रही होंगी क्योंकि आप हर ओकेजन को स्पेशल बनाते हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है अश्विनी जी। आई जस्ट वॉन्टेड टू ऐड दिस,
5: आई डू अप्रिशिएट यू टॉकिंग अबाउट माई मॉम बिकॉज आई डू मिस हर।
3: थैंक यू अश्विनी जी, शी इज़ ऑलवेज देयर विद अस। और मुझे याद आ गया क्योंकि जब हम इतने सालों हो गए हर ओकेजन पे हम साथ में होते हैं, तो उनकी उनकी उनकी जो आंखें थी उनमें तो चमक थी, तो वो किसी भी आई केयर की मोहताज नहीं थी, लेकिन उनको हर एक ग्लासेस का पता होता था। कितनी बार मुझे कहती थी तुम गलत रैक पे हो, तुम उधर जाओ, तुम्हारे पर वो अच्छा लगेगा। थैंक यू अश्विनी जी। नंबर जरूर बता दूँ 416-922-5263। अश्विनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द इवेंट।
5: थैंक यू जी, थैंक यू।

0: साहब, अगर आप किसी कैद से आज़ाद होना चाहते हैं, काम अपना करना चाहते हैं और अपनी मर्जी से अपने हिसाब से करना चाहते हैं और पैसा भी उतना ही बनाना चाहते हैं जितनी के मेहनत करें, ऐसा नहीं है कि जॉब में जैसे मेहनत तो आप करते हैं लेकिन उसका ज़्यादा हिस्सा, उसका ज़्यादा फ़ायदा, उसका ज़्यादा बेनिफिट आपका एम्प्लॉयर उठा जाता है या वो शख्स उठा जाता है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कम पैसे में, कम रिसोर्सेज में ज़्यादा रिटर्न मिले आपको, और उसके लिए ज़रूरी है कोई ऐसी तजुर्बाकार शख्सियत जो आपको बिजनेस दिला दे। बहुत सी बेशुमार और लामहदूद अपॉर्चुनिटीज उसके पास मौजूद हों। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हसीब शेख, वेलकम करते हैं सर आपको।
1: थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस इंट्रोडक्शन एंड काइंड वर्ड्स अजी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी, हाईली अप्रिशिएट।
0: शेख साहब, ये बताइए सबसे पहले कि आपने बहुत से ऐसे लोगों को भी हेल्प किया, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि जो पहले जॉब करते थे, 4,000, 5,000, 3,000 महीना बना लिया आपने उन्होंने, और साथ में उन्होंने आवर्स के हिसाब से काम किया, आप उनको बिजनेस में लाए, ये आपको क्रेडिट जाता है और ये बहुत बड़ा क्रेडिट है जॉब करने वालों को बिजनेस में लाना। तो हाउ हार्ड वाज इट फॉर यू टू कन्विंस पीपल टू कम इनटू बिजनेस?
1: सही, वो ले ऑफ हो जाती है ना बंदों को, या शॉर्टेज ऑफ ओवर हो जाती है, खर्चे नहीं कम होते, लाइबिलिटी से भी कम हो रही है, लाइबिलिटी से बढ़ रही है, बच्चे भी बढ़ रहे हैं, लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, नीड्स बढ़ रही है, लेकिन जो ऑवर्स है वो और पे रोल नहीं बढ़ता, तो लोग बेचारे मजबूर हैं कि कुछ करने के लिए। और ये लाइफ ऑफ, ये जो कैनेडा है ना, ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे लैंड बहुत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी कम है। तो जब हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि अपॉर्चुनिटी ले लो, थोड़ा सा उतरा के चलो, तो फिर आप उसका फायदा उठा ले।
0: अच्छा, मैं दूसरा बहुत अहम सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ शेख साहब, कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जैसे खाना पीना है, चाहे हालात अच्छे हों बुरे हों, इकोनॉमी उरूज पे हो या लोअर साइड पे जा रही हो, खाने पीने का बिजनेस तो होना ही होना है, लोगों ने खाना तो बंद नहीं करना वरना तो ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे, तो कौन से बिजनेसेस अच्छे बुरे दिनों दोनों तरह चलते रहते हैं और लोगों को फ़ायदा देते रहते हैं?
1: सही, देखिए जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है ना, जिसमें रेस्टोरेंट्स वगैरह आते हैं, बंदा टेंशन भी होता है, चला यार बाहर चलने हैं, जाके खा रहे हैं, बंदा खुश है, चल यार डील हो गई, आया बाहर जाके खा रहे हैं, ठीक है ना, फैमिली टाइम अच्छा करना, चलाओ जी बाहर जाके भी कुछ खा आते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो की ऑल सीजन है, कोविड में भी ये चलता रहे, कोविड में भी आपने देखा होगा कि कोई बिजनेस, बहुत ज्यादा स्टोर बंद हो गए थे लेकिन रेस्टोरेंट्स और गैस स्टेशन नहीं बंद हुए थे, ये दोनों बिजनेस चलते ही रहे थे। तो ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप डेफिनेटली बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब आ जाता है, बहुत से लोग कहते हैं जी मेरा ना कुकिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। भैया हमें एक्सपीरियंस तो चाहिए नहीं, हमें तो आपकी कमिटमेंट चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: कमिटमेंट दे। ये QSR बिजनेस होता है, जैसे टीम होटल में जाओगे तो आपको चाय की आपने फैक्ट्री नहीं डालनी, आपने चाय को वहां पे ब्रू करके आगे भेज देना है। सिमिलर आपके पास चिकन है तो हमने उसको फ्राई करके आगे दे देना है, फ्राइज है वो फ्राई करके दे देना है, टेम्परेचर लगे हुए हैं, आपको मैक्सिमम 1 वीक की ट्रेनिंग जो है वो बहुत मोर देन एनफ है, आपको पूरी ट्रेन किया जाएगा QSR बिजनेस का, आपने उसका बेनिफिट लेना है तो हम हाजिर है। हमारे पास इस वक्त तामर भाई एक नॉन ब्रांडेड रेस्टोरेंट है जो कि ब्रैम्पटन में है, एक ब्रांडेड जो है वो ब्रैम्पटन में है, नॉन ब्रांडेड हमारे पास है हैमिल्टन में है, और एक हमारे पास शवरमा है ब्रांडेड इसमें ब्रैम्पटन में, और टॉप ऑफ दैट अगर कोई राजा महाराजा स्टाइल का कोई अपना आप लेके आना चाहते हैं, कोई थीम लाना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे 17,000 स्क्वायर फीट का रनिंग रेस्टोरेंट है जिसकी प्लस 3.4 मिलियन की एनुअल सेल है, $600,000 उसका प्रॉफिट है, और उसके ऊपर ऑलरेडी जो है 20-25 बंदे काम कर रहे हैं, वर्किंग रनिंग प्रॉफिट प्रूवन बिजनेस आपको देने के तैयार है हम लोग। लेकिन यह है कि स्टेप तो आपने आगे लेना है ना, हम तो बैठे हुए हैं आपके लिए, आप स्टेप लें, आपके पास कितने फंड्स हैं, उस लिमिटेड फंड्स में हम आपको कौन सा बिजनेस दिलवा सकते हैं, आप करें मेरे साथ। देखिए अमित भाई, हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, कल भी परसों आपके रेडियो प्रोग्राम से एक बंदे ने कहा जी मैं पैसा लगा दूंगा लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस होते हैं, ये आपने कौन से 2 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी है। एक रेस्टोरेंट है जो कि आप 4.5-5 लाख का ले रहे हैं, आपकी 100,000 डॉलर की इन्वेस्टमेंट है और आप कह रहे हैं जी मैं घर बैठ जाऊँ वो काम चलता रहे, ये नहीं होता। इसमें आपको ड्यूटी देनी पड़ती है, थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, फिर आप एक सिस्टम बिल्ड कर लें और आपके पास अच्छे एम्प्लॉयज आ जाते हैं, तो फिर आप बेशक अपने घर में बैठे काम करें, कोई मसला नहीं है। अमर भाई आपको इसका ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपने भी बिजनेस किया था
0: जी।
1: और मुझे याद है कि आपने शुरू में 2-3 हफ्ते लगाने के बाद एक टीम बिल्ड कर ली थी।
0: बिल्कुल।
1: फिर मैं वहाँ पे जाता था, आप मुझे कभी नहीं मिले वहाँ। मेरी हसरत भी रहेगी क्योंकि यू आर ए गुड इन मैनेजमेंट मैनेजिंग द टीम। आपने मैनेज कर लिया टीम, आपको ट्रस्टवर्दी बंदे मिल गए, देन यू आर रनिंग द शो।
0: बिल्कुल, टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क। बहुत अच्छी बात की आपने शेख साहब, और मैं सुनने वालों को बता दूं कि शेख साहब के पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। आपने ब्रांडेड बिजनेस लेना है, नॉन ब्रांडेड लेना है, कोई प्राइवेट रेस्टोरेंट लेना है, चलता हुआ कोई फ्रेंचाइज लेना है, प्रूवन रिकॉर्ड्स के साथ। ये आपके साथ खुद बैठेंगे, ड्यू डिलिजेंस करेंगे, नंबर्स को देखेंगे, सेल कितनी है, परचेज कितनी है, प्रॉफिट कितना है। ही नोज द निटी ग्रिटी ऑफ दिस बिजनेस। हर दिन इनके लिए एक नया दिन होता है, नई डील्स होती हैं, नए लोग होते हैं, नए लोगों को बिजनेसेस मिलते हैं। शेख साहब से कांटेक्ट कीजिए, आपने गैस स्टेशन खरीदना है, आपने रेस्टोरेंट खरीदना है, फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, प्राइवेट बिजनेस लेना चाहते हैं, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, स्कारब्रो, मार्कम, कहीं भी आपने लेना है। ही हैज गॉट वेरी गुड इन्वेंटरी, इनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, दैट्स व्हाट ही इज नोन फॉर। यहां नंबर दे रहे हैं आपको, शेख साहब का ये नंबर मिलाए, बिजनेस की तरफ कदम बढ़ाए। 6479884449 नंबर दोबारा बता रहे हैं, शेख साहब का नंबर है, अभी मिलाइए, काम कीजिए अपना। 6479884449 शेख साहब आपका एक स्लोगन है वो जिसमें मुकद्दर का नसीब का जिक्र है, वो क्या है, मैं भूल जाता हूँ अक्सर।
1: तेरा किस्मत तेरा नसीब शेख नसीब शेख
0: नसीब। आई लाइक योर स्लोगन। ये नसीब और किस्मत अपना अपना है, तो इसलिए हसीब शेख साहब से बात करें, अपने मुकद्दर को बेहतर करें। इंसान का मुकद्दर उसके अपने हाथों में है, क्योंकि डिसीजन आपके हाथों में है। स्पीक टू हिम एंड पेव अ वे टू डू योर ओन बिजनेस। 6479884449 स्टे ट्यून, दिस इज लवी डवी शो।
2: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
3: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001 लाइसेंस नंबर 12374।
4: पंजवा महान 3 दिनों दा कीर्तन दरबार, मई 16-17 दिन शनिवार अते ऐतवार दोपहरे 3 बजे लेके रात 10 बजे तक, मई 18 दिन सोमवार 12 बजे तो लेके शाम 7 बजे तक,
5: ब्रैम्पटन फेयर ग्राउंड 12942 हार्डलेक रोड कैल्टन विखे करवाया जा रहा है। पंथ दे सरमौर रागी जथे पद्म श्री भाई साहब हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले, संत अनूप सिंह जी ऊना साहेब वाले, भाई अनंत वीर सिंह जी एलए वाले, भाई साहब जगजीत सिंह जी बबीहा दिल्ली वाले, प्रोफेसर परमजीत सिंह जी पटियाले वाले, भाई मनिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले। फॉर मोर इनफॉरमेशन कॉल पंजाबी विरसा रेडियो दे सिंह हरजीत नूं कीती जा सकती है 6474481000 6474481000। सेवा भेजन वास्ते सेवा2022@yahoo.com ते अपनी सेवा भेज सकदे हो।
6: लवी डवी शोर इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। आमिर और शिवानी को दें इजाजत। हैव अ नाइस वीकेंड। किसी भी जानकारी के लिए, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, हमसे बातचीत के लिए आप कॉल कर सकते हैं 416-303-3639। दैट्स 416-303-3639। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। हैप्पी मदर्स डे इन एडवांस। नमस्कार।
0: यहाँ हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचता है इस पैगाम के साथ कि ज़िंदगी खुश रहने का नाम है। जो लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी खुश रहने का राज पा लेते हैं वो ज़िंदगी के राज से बाखबर हो जाते हैं। ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज यही है कि आप मुश्किल से मुश्किल हालात में खुश रहने का हुनर सीख लें। तो मुस्कुराइए, आपकी ज़िंदगी बढ़ेगी, आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। मुस्कुराहट भी एक सदका है, एक ज्ञान है, एक ऐसा इल्म है, एक ऐसा नॉलेज है जो बहुत मखसूस लोग इस्तेमाल करना जानते हैं। ये एक स्किल है मुस्कुराहट, जिसको इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, कितनी मकदार में करना है, ये भी सब लोग नहीं जानते। इसलिए मुस्कुराते रहिए और ये खूबसूरत अनमोल तोहफा लोगों में बांटते रहिए। अपना ध्यान रखिए। रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से अगले प्रोग्राम तक के लिए शिवानी और आमिर तोफैल को इजाज़त दीजिए। हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड हे यू।

0: You're listening to CMR. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
2: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
1: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
3: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: You're listening to CMR for advertising. Call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट ले. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वेयर योर कार गेट्स अ It deserves.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: You're listening to CMR. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ ही ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9 46 1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: You're listening to CMR for advertising. Call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहां बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वेयर योर कार गेट्स अ केयर. It deserves.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: You're listening to CMR for advertising. Call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9 46 1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट ले. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.

0: You're listening to CMR. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, jahan news, views, sports, entertainment ki khabre hongi bilkul unlimited. Entertainment to bahut hai, lekin yahan par milega aapko bilkul unlimited. News aur views to har jagah milenge, lekin yahan par milega bilkul unlimited.
1: Yahan bhi hoga, wahan bhi hoga, ab to sare jahan mein hoga kya? Mera hi jalwa.
0: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
2: है आदत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
0: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम.
3: म्यूजिक स्टार्ट करो भाई,
0: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम. स्टे ट्यून्ड.

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 PM साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज, व्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती है बिल्कुल अनलिमिटेड। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055 और बाहर का तापमान हो चुका है 12 degrees Celsius एंड मैक्सिमम टेम्परेचर्स 13 degrees तक पहुंचेंगे। मिनिमम विल रिमेन 6 टुनाइट एंड टुमारो 16 and 6 एंड विद सन एंड क्लाउड्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ रेन एंड देन संडे को 15 degrees और मिनिमम होगा 4 एंड स्टॉर्म्स लाइकली सैटरडे आफ्टरनून 60% चांसेस है एंड सनसेट होगा 8:28 पर 8:28 PM एंड अम्मी गीत जिससे दिन की शुरुआत की है एंड सतिंदर सरताज की आवाज़ में, बिकॉज संडे को मदर्स डे है। वैसे मदर्स डे को ईच एंड एवरी डे ही होना चाहिए, देर शुड नॉट बी दैट वन सिंगल डे जो हमें बताया जाता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट इज़ एंड शुड बी ऑल टाइम्स। सो ऑल द मदर्स को डेडिकेट किया है पहला गीत, और मदर्स होती हैं ऐसी हैं, चाहे आप 50 साल के हो जाएं या आप 75 साल के हो जाएं, इफ़ द मदर्स देयर शी इज़ ऑलवेज, यू नो, आपकी दुआएं मांगने के अलावा मुझे लगता माओं को और कोई काम नहीं होता। दे डोंट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एज मच एज दे प्रे फॉर अस ऑल द टाइम। 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है। बॉलीवुड फ्राइडे है आज साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का। 12:15 हेडलाइन, स्पॉन्सर्स के मैसेजेस एंड गीत संगीत का कारवां चलेगा। कुछ मम्मीज को, मदर्स को डेडिकेट करते हुए कुछ गीत आगे चलकर भी प्ले करेंगे, आपकी रिक्वेस्ट को भी प्ले करेंगे। एंड द सेगमेंट इज ब्रॉट यू बाय ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज, जहां पर मदर्स डे की बहुत भारी सेल चल रही है। सुल्तान जी हमारे साथ होंगे आगे चलकर। टीवी, अप्लायंस, लॉन्ड्री, हर सेक्शन में अमेजिंग मदर्स डे डील्स एंड सेल्स आर गोइंग ऑन। सेगमेंट इज ऑल्सो brought to you by Lisa's Cosmetics Spring Warehouse Sale, brand name fragrances, cosmetics. अब आपके पास सिर्फ 3 दिन है, 8, 9, 10, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एंड उसके बाद जो है आपको इंतज़ार कुछ और महीने करना पड़ेगा फॉर दिस अमेजिंग सेल जो होती है। एंड मदर्स डे के लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम, अप टू 80% की सेविंग्स है। 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्टर्न मार्कम, परफेक्ट गिफ्ट फॉर मदर्स डे। फाइन चॉकलेट्स, डिजाइनर सनग्लासेस, प्रेस्टीज ब्रांड नेम्स, फ्रेगरेंसेज, कॉस्मेटिक्स एट लीसाज कॉस्मेटिक स्प्रिंग वेयर हाउस सेल, एंड पहुँचिए और अमेजिंग डील्स अपने मदर्स डे अपनी ममाज के लिए लीजिए, आपकी वाइफ के लिए, बहन के लिए, सिस्टर्स के लिए, अमेजिंग। एक कॉलर है, क्विकली उन्हें लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आप ऑन एयर हैं, प्लीज गो अहेड।
1: हेलो जी, सत श्री अकाल जी।
0: ओके, कैंट हियर योर वॉइस। एंड मोटरसाइकिलिस्ट हैज सीरियस इंजरीज आफ्टर कोलिजन नियर स्कारब्रो गोल्फ क्लब रोड, एंड पुलिस ने 4 अरेस्ट किए हैं। ज्वेलरी डिस्ट्रैक्शन रॉबरी इन्वेस्टिगेशन, ये भी स्कारब्रो से खबर जो है सामने आ रही है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। TTC ने कहा है नो सर्विस ऑन लाइन 1 बिटवीन किपलिंग एंड जेन ऑन सैटरडे ड्यू टू सिग्नल वर्क। शटल बसेस जो है Thank God will be running. And Toronto mein women in her 30s in hospital following a stabbing near Bathurst Street or Queen Street West. Aur is par jaanch jo hai police ki jari hai. Aur Rexdale mein one man in critical condition, another one is arrested following a stabbing in Albion Road and Islington Avenue wala ilaka, close to our studio by the way. Anyways, ek choti si break lete hain. 12:15 ki headlines bilkul ready hai. Don Valley North Hande de rahe hain FIFA ki tickets. Is weekend bahut kuch ho raha hai Toronto downtown mein. Lots and lots of activities happening. So DVP will be closed for maintenance. So we'll open Monday 5 AM उसके हिसाब से डिटोर की के लिए, यू नो, मेक श्योर यू कीप योर आईज ओपन। एंड डॉन वैली नॉर्थ हांडे दे रहे हैं फीफा टिकट्स। इट्स अ बैलेट दैट विल बी ड्रॉन इन जून, ऑफर एंड होती है 31 मई को। अगर आप हांडे की गाड़ी खरीदते हैं फ्रॉम देम, 2 नेम्स फॉर 2 टिकट्स विल बी पुट इन फॉर अ लकी ड्रॉ। अगर विंटर टायर्स बाय करते हैं विद स्टोरेज, 1 नेम फॉर 1 टिकट विल बी पुट इन फॉर अ लकी ड्रॉ। और एक्सटेंडेड वारंटी परचेज की जाती है, 1 नेम फॉर 1 टिकट in will be put in for the lucky draw. 7537 Woodbine Avenue in Markham, Steeles Woodbine Wala intersection. Who knows, aap honge FIFA tickets ke malik. We'll take a short break, aate hain wapas.
2: He's breaking through the midfield.
3: Don Valley North Hyundai aapko de raha hai mauka FIFA World Cup 2026 ke tickets jeetne ka. Koi bhi vehicle buy karke ghar le jaye aur pay double entries. Winter tires ya extended warranty le aur har ek ke sath pay ek extra entry. Aaj drive kare, kal jeete. Visit donvalleynorthhyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
4: Thank you.
1: मॉर्गेज का कोई भी काम याद रखें एक ही नाम मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी फर्स्ट मॉर्गेज सेकंड मॉर्गेज होम इक्विटी रिन्यूअल्स बैड क्रेडिट इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक बेस्ट रेट्स बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी 6478631940 6478631940
4: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी जस्सी को छोड़िए क्योंकि लीसा कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए परफ्यूम स्किन केयर मेकअप हेयर केयर डिजाइनर सनग्लासेस चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड वर्साचे अरमानी हजारो एंड मोर आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401 सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसाज वेयरहाउस सेल पर विजिट lisascosmetics.com
5: हाय अंजू कैसी हो हाउ इज योर सन डूइंग
6: निशा पूछ मत सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है आंखें तो खराब होंगी ही होमवर्क के टाइम बैटरी गुल
5: मैं समझ गई उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल
7: शी इज राइट चाहे बच्चे हो या बड़े वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 905-457-3232 Clear Optical by Varun Kanda.
8: सुनो आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से
9: अच्छी याद है अच्छा उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से
8: अजी इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो सीधा choleBhature.ca पे चलो
10: choleBhature.ca बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन छोले भटूरे पतीले वाले मटर कुलचे पाव भाजी अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे choleBhature.ca कॉल 905-458-2448
11: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga, and 1 by Vaughan Mills.

0: त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर मूर्तियाँ हवन सामग्री, फेंगशुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 9054586808
1: और विजिट pujahut.com।
0: जय श्री राम।
2: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
3: Good afternoon, शुरू करते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस।

0: Welcome back, friends. And the headlines are brought to you by Lisa's Cosmetic Spring Warehouse Sale, Brampton TV and Appliances, Rajdhani Sweets and Restaurant, Clear Optical by Varun Kanda, Kavya Home Your Care, McVean Dental Care, Dawn Valley North Hyundai, and Will Lifetime Trading. Shuru karte taza tareen headlines. Hantavirus hit cruise ship, heads for Canary Islands. Spain ne evacuations plan kiye. Remote South Atlantic island par new suspected hantavirus case identify hua. US military ne Iran ke port aur Bandar Abbas par kiya hamla. Dusri aur officials ke anusar ye restarting of the war nahi lagta. US trade adalat ne Trump ke 10% global tariffs ke khilaf ruling de di hai, favored the small businesses. Trump ka kehna hai ki European Union ko July 4th tak ka mauka denge to fulfill trade deal or will raise the tariffs. Trump ne Brazilian President Lula se White House mein ki mulaqat. Tarif mein bole, very dynamic president. Trade ke alawa kai topics par dono ke beech hui charcha. US ne Iraq ke deputy oil minister par lagaye sanctions over support to Iran. Aur report ke anusar Cash Patel apne FBI staff ko gifts ke roop mein alcohol ki bottles dete hain. United Nations maritime body ke anusar 1500 ships Gulf mein trapped hain due to Iran's Hormuz blockade. Aur hantavirus confirm hua, two British nationals test positive. लोकल समाचारों में हॉल्टन पुलिस ने स्मैश एंड ग्रैब रॉबरीज के कई सस्पेक्ट्स को पकड़ लिया है. जीटीए में कल रात टेम्परेचर ड्रॉप्ड क्लोज टू फ्रीजिंग मार्क एंड ओंटारियो ने कोनेस्टोगा कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया आफ्टर ऑडिट अनकवर्ड फाइनेंशियल मिसयूज. अगले महीने फीफा के किक ऑफ होने पर टोरंटो ट्रांजिट सिस्टम का रियल टेस्ट होगा. कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर रिलीज्ड इन जीटीए, टोरंटो पुलिस वार्न पब्लिक. Rexdale stabbing ke baad, man has been critically injured and teenager arrested after three people found dead in Ontario home. भारतीय समाचारों में मनीशंकर अय्यर ने विजय टाया पर कांग्रेस को टारगेट किया और कहा इमोरालिटी ऑफ जॉइनिंग विजय. सुवेंदु अधिकारी बीजेपी के जाइंट किलर बंगाल के अगले चीफ मिनिस्टर बनेंगे. फॉर्मर कैलकटा हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने एसआईआर ट्रिब्यूनल से किया रिजाइन. गुजरात के मोरबी में स्ट्रे डॉग ने 8 साल के बच्चे को अटैक करके मार डाला. सीरीज ऑफ अग्रेसिव डॉग अटैक्स रिपोर्टेड इन द सिटी इन द लास्ट 48 आवर्स. एक्स तृणमूल एमएलए डायरेक्टर राज चक्रवर्ती ने पॉलिटिक्स को हार के बाद अलविदा कहा. इंटरस्टेट गैंग ने आधार लोन फ्रॉड के लिए डीप फेक्स का इस्तेमाल किया, पूरा गैंग पकड़ा गया. सूत्रों के अनुसार टीवीके के विजय के खिलाफ डीएमके और अन्ना डीएमके का गठबंधन होने की संभावना बन रही थी, ऑल टू कीप द एक्टर पॉलिटिशियन आउट ऑफ पावर. नीडा खान की अक्यूज्ड इन द टीसीएस कन्वर्जन केस अरेस्टेड इन महाराष्ट्र. सूत्रों के अनुसार अगर डीएमके एआईए डीएमके गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो 108 टीवी के एमएलएज करेंगे रिजाइन. दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला दिया. डिक्लाइंस अनिल अंबानीज बिड फॉर इमीडिएट रिस्ट्रेंट ऑन एनडीटीवी आर्टिकल्स. एंड सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया प्लेन क्रैश की जांच अब फाइनल स्टेज में है, रिपोर्ट लाइकली इन अ मंथ. एंड टीवीके ने 118 मार्क क्रॉस कर लिया है विद वीसीके एंड लेफ्ट सपोर्ट फॉर विजय. दूसरी ओर पाकिस्तान की खबरों से, इस्लामाबाद सोसाइटी में मेजर हाउसिंग फ्रॉड एक्सपोज हुआ. कई सिटीजन्स ने प्लॉट फाइल्स को सेल किया फॉर लैंड दैट डिड नॉट इवन एग्जिस्ट. डीजी खान स्कूल रूफ कलैप्स मामले में 4 स्टूडेंट्स मारे गए, 20 हुए जख्मी. पुलिस ने स्कूल ओनर को हादसे के बाद अरेस्ट कर लिया है. डीसी ने कहा कि जाँच लॉन्च की गई है इनटू सेफ्टी वायलेशंस. चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने ट्रेजेडी की डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत ने डिक्लेयर किया टैक्स ऑन डीम्ड प्रॉपर्टी इनकम अनकॉन्स्टिट्यूशनल. अदालत ने सारे एफबीआर एक्शंस को अंडर सेक्शन 7E नलिफाई किया. कैम्ब्रिज ने लीक्ड एएस लेवल मैथमेटिक्स पेपर को कैंसिल किया, सेट्स न्यू डेट. रिप्लेसमेंट पेपर फॉर मैट टू टेक प्लेस ऑन 9 जून. लीकेज पर जांच हुई शुरू. सीआईई के अनुसार नो एडिशनल चार्ज फॉर कैंडिडेट्स और स्कूल्स. आर्मी का कहना है कि पाकिस्तान फ्यूचर चैलेंजेस के लिए तैयार है. प्लेसेस इंडिया वेयर दे आर. आईएसपीआर चीफ कहते हैं कि न्यूक्लियर नेबर्स के बीच वॉर की जगह नहीं बनती. इंडिया की मिलिट्री को पोलिटिसाइज किया गया. डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डार ने कहा गवर्नमेंट पूरी तरह से यूएस के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है फॉर द रिटर्न ऑफ सी फेरर्स फ्रॉम सीज्ड वेसल. फिलहाल 11 पाकिस्तानी उस वेसल पर हैं. दूसरी ओर स्पोर्ट्स जगत से बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान के फर्स्ट टेस्ट के फर्स्ट डे पर नजमुल हुसैन शांटो शाइन्स विद अ सेंचुरी एज बांग्लादेश पोस्ट 301 फॉर द लॉस ऑफ फोर विकेट्स। सीनियर पेसर उमेश यादव ने कहा जसप्रीत बुमराह इज ट्राइंग टू मेनी थिंग्स एंड दैट इज व्हाई ही इज बीन इनकंसिस्टेंट इन दिस आईपीएल। LSG beat RCB in thrilling clash, stay alive in playoffs race. In form, Kolkata Knight Riders face inconsistent Delhi Capitals today. Bollywood khabron se, Deepika Padukone features among India's top box office stars under the age of 50. Akshay Kumar ki Bhoot Bangla box office par hit sabit hui, fourth week key collections barkarar. Vidya Balan gets emotional watching Irfan Khan in The Last Tenant after 25 years, or Vidya Balan ne kaha he was a natural actor. धुरंधर प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने साल के अंत से पहले बिग सरप्राइज का हिंट दे दिया है। ज्योति ने कहा वी आर नॉट डन येट विद धुरंधर। आमिर खान ने दादी की शादी को रिव्यू किया, प्रेजेस रिधिमा's परफॉर्मेंस और कहा रणबीर से बेटर एक्टिंग किया है रिधिमा ने। एंड रितेश देशमुख ने किया खुलासा, सलमान खान, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन डिडंट इवन चार्ज एनी फी फॉर राजा शिवाजी। सलामे इश्क इन द वर्क्स पार्ट टू, शंकर एहसान लॉय करेंगे रीयूनाइट। ये थी साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताज़ा तरीन हेडलाइन। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। कॉलर हैं, उन्हें लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आप ऑन एयर हैं, प्लीज गो अहेड।
1: हाँ जी, अभी बात तो मैं वही करूँगा जो लोगों को अफेक्ट करती है।
0: आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही।
1: हाँ, जो लोगों को अफेक्ट करती है, एक तो बात यह है कि आपसे आज एक फ्राइडे है, थोड़ी कोई अच्छा गाना लगा देना।
0: बस मिर्ची के अलावा कोई भी और गाना बताइए, लगा देंगे।
1: भाई भिंडी वाला गाना लगा दो।
0: भिंडी है नहीं ना, कोई भिंडी वाला कोई गाना ही नहीं है। आपको बताना पड़ेगा आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
1: अभी मैं लिखूंगा तो फिर बनेगा।
0: हाँ जी,
1: ठीक है ना। या वो शाहरुख खान का लगा देना, दिल है पाकिस्तानी या इंडियन, जो भी हमारा दिल है।
0: अच्छा, शाहरुख खान की फिल्म थी दिल है पाकिस्तानी?
1: नहीं नहीं, वो जिसमें गाना है ना, समझ तको तो समझो दिल है हिंदुस्तानी।
0: अच्छा अच्छा, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ठीक है,
1: जिसमें फ्रॉड बता रहे हैं ना कि पाकिस्तानी इंडियन फ्रॉड कैसे करते हैं, पाकिस्तानियों का तो नाम नहीं है।
0: हाँ हाँ,
1: इंडियन कैसे फ्रॉड करते हैं, ठीक है ना।
0: वो समझाया गया है अच्छे से,
1: वो समझाया गया। अभी बात यह है कि जो पाकिस्तान में जो प्लॉट का है ना
0: जी,
1: ये इतना बड़ा स्कैंडल है और बहुत दुख के साथ ये स्कैंडल करने वाले गवर्नमेंट के टॉप लेवल के लोग सब शामिल हैं।
0: ठीक है,
1: और इस्लामाबाद में अराउंडिंग में ये होता है, लोग बेचारा अपनी अपनी रिटायरमेंट सेविंग लेके कोई प्लॉट लेना चाहता है, उसको उल्टी सुल्टी फाइल पकड़ा देते हैं। वो इस मुल्क को क्या कहोगे, ये सब मुल्क का नाम ही छोड़ दो, उस जमीन को क्या कहोगे जिसके जमीन के अंदर अपने लोग ना सेफ है, ना उनकी जायदाद सेफ है, ना उनकी आबरू सेफ है, ना उनकी जान सेफ है। तो ऐसे मुल्क को बनाने का फायदा क्या है, उसको रखने का क्या फायदा है, ये सवाल है। अगर कोई गोरिल्ला पाकिस्तानी इस पे जवाब दे सके तो दे दे भाई, कि इतनी सब कुछ लोगों के अरबों खरबों रुपए इस फ्रॉडों में है। झूठी
0: नहीं, देखिए पाकिस्तानी आप खुद हैं तो मुझे लगता है आप भी रिप्रेजेंट पाकिस्तान को।
1: नहीं, मैं नहीं हूँ ना, मैं कहाँ हूँ पाकिस्तानी।
0: अच्छा, आप पाकिस्तानी नहीं है, ठीक है ठीक है।
1: मुझे तो लोग इंडियन बोलते हैं, मैं कहाँ पाकिस्तानी।
0: नहीं, लोग क्या बोलते इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्या बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट है
1: भाई। मैं तो
0: कुछ तो लोग कहेंगे।
1: अब एक सेकेंड, मैं फ्लाइट पे पैदा हुआ था, बताओ मैं कहाँ का हूँ।
0: नहीं, अभी आप फ्लाइट में बैठ के बात कर रहे हैं।
1: नहीं नहीं भाई देखो, फ्लाइट में बैठ के नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं, आप कहते हो ना आप पाकिस्तानी हो,
0: मैं मुझे लग रहा है आपके एक्सेंट से कि आप पाकिस्तानी हो, तो मैं इसलिए
1: कहा। मैं पांच जबानें बोलता हूँ, फारसी भी बोलता हूँ।
0: अच्छा
1: अच्छा, और ईस्टर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस भी बोलता हूँ, लैंग्वेजेस बोलता हूँ। 14-15 कंट्री में धक्के खा के बिजनेस किया है, 22-24 कंट्री ट्रेवल किया है। अब मैं और क्या बोलूँ
0: आपको, मतलब आप ग्लोबल सिटीजन है एक तरीके से।
1: ग्लोबल सिटीजन है, और मेरा हर वो वतन है जो सही है, शांत है और लोगों की अच्छाई के लिए चल रहा है। अभी हमने ये इंडिया पाकिस्तान बना के अंग्रेजों को भगा के हमने वो गलती की, इसी पे एक क्रिकेट पकड़ ली है और एक चाय पकड़ ली, उसी पे लगे हुए। ठीक है, तो बात ये भाई, अपने मुल्क को बनाओ, बेमानियां खत्म कराओ, ठीक है, तो ही हल होगा। गुर्बत खत्म करो, गुर्बत सबसे बड़ी बीमारी है। अगर ये खत्म नहीं कर सके तो कोई भी, मोदी हो, पाकिस्तान का चीफ हो, जनरल हो, ये सब बेकार है। ये कसूरवार है,
0: ठीक है जी, मैं आपको एक नई बात बताता हूँ। 1987 में आज के दिन कनाडा में $1 के बिल को हटा के लूनी को इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए आज हमने दोनों ने एक नई चीज सीख ली।
1: ठीक है जी, वेरी गुड,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। आपके रिक्वेस्ट को मैं प्ले करूंगा आगे चलकर, कोई ना कोई अच्छा सा गीत आपके लिए प्ले जरूर करते हैं, आपके फ्राइडे को थोड़ा सा रोमांटिक बनाते हैं। एंड क्योंकि फ्राइडे के दिन जो है बाकी की टेंशंस बाकी दिनों वाली नहीं होनी चाहिए, फ्राइडे को थोड़ा सा प्यार इश्क मोहब्बत और रोमांस और जो भी बाकी चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा मतलब अपने दिमाग को लगाना चाहिए, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे आते आते बंदा वैसे ही स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है। फ्राइडे को भी अगर पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर कैसे चलेगी गाड़ी। एंड 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है, और किसी और लिसनर के भी कोई व्यूज़ हैं जो हमारे लिसनर ने कहा है, उन किसी और के कुछ और व्यूज़ हो सकते हैं, आप डेफिनेटली ऑन एयर आके अपने व्यूज़ दे सकते हैं। मैसेज आने लग पड़ते हैं मेरे सेल पर, वो फिर मुश्किल ये होती है कि सारे मैसेजेस को पढ़ो और यू नो रिप्लाई करो, विच आई ऑलवेज डू, आई ट्राई टू, एंड बट ड्यूरिंग द शो फिर मुश्किल होता है। एंड अगले कॉलर को लेते हैं, आप ऑन एयर हैं, प्लीज़ गो अहेड। हेलो,
2: हेलो
0: जी जी, आप ऑन एयर हैं, प्लीज़ गो अहेड।
2: ओके, मैं प्राउडली कहती हूँ कि मैं इंडिया से हूँ।
0: अच्छा जी।
2: और मैं बहुत खुश हूँ कि इंडिया में 1947 में पार्टीशन हुआ, उसमें जख्मी बहुत हुए हम, लेकिन अब चैन है, आबादी है, तरक्की है, हमें हमारे पॉलिटिशियंस के वचनों पे विश्वास है, जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। और एक बिलेटेड क्या बोलते हैं, बधाई देना चाहूंगी सारे इंडियंस को जो इंडिया में रहते हैं और इंडिया के बाहर रहते हैं, कि कल ऑपरेशन सिंदूर का जो एक साल का जो एनिवर्सरी हुआ उसकी बधाई है।
0: ठीक है जी,
2: क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी हमारे पॉलिटिशियंस बोलते हैं ना वो सही बोलते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते।
0: ठीक है जी, तो आप प्राउड टू बी इंडियन हैं और आप ये मानती हैं कि इंडिया के जो पॉलिटिशियंस कहते हैं वो बिल्कुल सही होता है।
2: मेजोरिटी
0: टाइम सही होता है। चलिए,
2: मेजोरिटी टाइम सही होता है टोटली। जैसे लोग बोलते हैं कि उनके देश के लोग सब झूठ बोलते हैं, और अभी अभी मैंने न्यूज भी सुना, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि बिना प्लॉट हुए हवा में ही प्लॉट के सौदे हो जाते हैं।
0: ऐसी ऑनेस्टली ऐसी चीज इंडिया में भी हुई है, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं खुद इंडिया आई एम वेरी प्राउड टू बी अ इंडो कैनेडियन।
2: नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग उसके लिए ये नहीं बोलते कि ऐसा होता तो मैं इंडियन नहीं हूँ।
0: ठीक,
2: हम फिर भी इंडिया को ही ओन करते हैं, चाहे मेरा देश अच्छा हो, गंदा हो, खराब हो, कुछ भी हो, हम इंडियन ही रहेंगे।
0: बिल्कुल,
2: इंडियन से पाकिस्तानी या बांग्लादेश

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।
1: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
0: दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ब्रैम्पटन एंड जॉर्ज टाउन। एग्जाम्स के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल 7 डेज अ वीक, 905-457-3232। फॉर नेम ब्रांड सनग्लासेस, ऑलवेज रिमेंबर क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा। द सेगमेंट इज ऑल्सो ब्रॉट टू यू बाय होम लाइफ मिरेकल के सुपरस्टार रियल्टर्स सरबजीत गिल, सीपी चटवाल, फॉर रियल एस्टेट बाइंग सेलिंग इन्वेस्टमेंट्स। एक बार इनसे जरूर संपर्क करें, सम अमेजिंग प्रॉपर्टीज that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA. Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 ya 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, jo ki 30 plus locations se serve karte hain 100% pure vegetarian food, zabardast mithaiyon ka dusra naam, Rajdhani Sweets and Restaurant.
2: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive, चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा

0: राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: He's breaking through the midfield.
3: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज। विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी लें और हर एक के साथ पाए एक एक्स्ट्रा एंट्री। आज ड्राइव करें, कल जीतें। Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.

0: Action Unlimited Radio on CMR 101.3 FM, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. और हम पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकूसी इन ब्रैम्पटन. 905-450-2828. टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री के सुल्तान हमारे साथ हैं. सुल्तान जी, 11 AM टू 7 PM देर ओपन 7 days अ वीक. ब्रैम्पटन अप्लायंसेज डॉट कॉम पर जाकर भी आप अमेजिंग डील्स को चेकआउट कर सकते हैं. लेकिन देर आर मोर रीजंस देन वन. मदर्स डे, जी हाँ, मदर्स डे पर अमेजिंग डील्स आपका इंतजार कर रही हैं. और सबसे पहले टीवी वाला सेक्शन, सुल्तान जी आपका स्वागत है.
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया. और ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे जो मदर्स डे स्पेशल प्रमोशन है वो मैं जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि सनी भाई इसमें मैं अपफ्रंट बता रहा हूँ, ये सर्टन लिमिट्स के साथ बहुत कम इन्वेंट्री है जो कंपनीज ने ऑफर की है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस को. अगर हम बात करते हैं 85 इंच टीवी की, तो 85 इंच टीवी आपको आज मिल रहा है जी मदर्स डे स्पेशल पे $1800 वाला सिर्फ 999 में
0: जी.
1: सैमसंग का 85 इंच 999 में लेके मदर्स डे स्पेशल पे आप गारंटेड इसमें $500 से $600 सेव करेंगे, क्योंकि राइट आफ्टर मदर डे ये आपको मिलेगा जी $1500 का.
0: तो
1: डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. मैं अप फ्रंट आपको प्राइसेस बता रहा हूं कि मदर्स डे पे 999 पे 85 इंच टीवी मिलना जरूरी है, लेना जरूरी है. अगर तो फिर मदर्स डे पे ही ले लें, 905-450-2828. अदरवाइज ये $1500 से कम नहीं मिलेगा.
0: क्या बात?
1: आपने सिर्फ कॉल करके नाम एंड नंबर दे के अपना टीवी होल्ड करवाना है. डिलीवरी डेट आप मई जून जुलाई की कोई भी रख सकते हैं. 55 इंच 499 में, 65 इंच 699 में, और 75 इंच 799 में मिलेगा आपको ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस. 905-450-2828. जहां आपको सैमसंग लोएस्ट प्राइस ऑफर कर रहा है मदर्स डे पे स्पेशल बिग स्क्रीन टीवीज में, वहां सोनी ब्रेविया मॉडल, क्योंकि सोनी ने जो लॉन्च किए हैं सोनी ब्रेविया 2, सोनी ब्रेविया 3 और सोनी ब्रेविया 5, द हाई एंड सोनी ब्रेविया 5 75 इंच $3000 वाला, बल्कि सेल प्राइस पे 2799 का भी हमने बेचा है जी. लेकिन मदर्स डे पे ओनली 1999, $800 आप सोनी ब्रेविया 5 पे सेव करेंगे ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस. जहां आपने 6 मंथ में पे करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, फ्री होम डिलीवरी मिलेगी. बोवेड एंड चिंकूजी वाली लोकेशन पे आना है आपको, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड. ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828, 905-450-2828 जी.
0: सुल्तान जी, जहां पर टीवी सेक्शन में मदर्स डे की मोस्ट अमेजिंग डील्स का ऐलान आपने कर दिया है, मैं चाहूंगा कि अप्लायंस लॉन्ड्री में भी मदर्स डे की सबसे बेस्ट डील्स आप जरूर दें, क्योंकि मदर्स डे वो मौका होता है जहां पर हम कुछ ना कुछ अपने मम्मास के लिए करना चाहते हैं स्पेशल. और ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस पर क्या स्पेशल है वो बताइए.
1: बिल्कुल जी, मदर्स डे स्पेशल पे किचन अप्लायंसेस में ऑलमोस्ट 40% का डिस्काउंट हम लेके दे रहे हैं जी अपने कस्टमर्स को, जो भी कस्टमर बिल्ट इन किचन लेना चाहते हैं. क्योंकि ये मंथ स्टार्ट हुआ है जी, और मई मंथ में अगर आपको मदर्स डे स्पेशल पे 40% का डिस्काउंट मिलेगा, तो ये हमारी इंडस्ट्री में, अप्लायंसेस इंडस्ट्री में ह्यूज डिस्काउंट है. मैक्सिमम डिस्काउंट आपको 15 या 20 या मैक्सिमम 25% होता है. 40% का डिस्काउंट मदर्स डे स्पेशल पे लेके दे रहे हैं हम अपनी कस्टमर्स को, जिसमें बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वॉल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवॉशर. और ये बॉश का ब्रांड है जी, बॉश जो कि जर्मन ब्रांड है, पूरे का पूरा बिल्ट इन काउंटर डेप फ्रिज, वो भी आइस एंड वाटर डिस्पेंसर के साथ. ये बॉश का बिल्ट इन किचन मदर्स डे स्पेशल पे आपको $16,000 वाला सिर्फ 9,900 में मिलेगा. मोर देन $6,100 की आप सेविंग करेंगे सिक्स मंथ में आप पे करेंगे। अगर आप अपने किचन को एक नई लुक देना चाहते हैं, हाई एंड प्रीमियम ब्रांड खरीदना चाहते हैं, तो जरूर मदर्स डे पे ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस आपको 40% डिस्काउंट लेके आपकी बिग सेविंग्स करेगा। और ये 40% डिस्काउंट के बाद जो भी अमाउंट बनेगी आपने सिक्स मंथ में पे करनी है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ्री होम डिलीवरी मिलेगी। सिर्फ आपको इसके लिए विजिट करना है, सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक 7 डेज अ वीक स्टोर खुलता है जी, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड है जी, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। हमारे लॉन्ड्री सेक्शन में भी टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर आपको मिल रहा है $1,600 वाला, मदर्स डे स्पेशल पे ओनली 1199, सिर्फ 1199 का पेयर मिलेगा वॉशर एंड ड्रायर दोनों। ये टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर है, लार्ज कैपेसिटी टब स्टेनलेस स्टील में, आपको 1199 का पेयर दिया जा रहा है, जो आप सिक्स मंथ में पे करेंगे फ्री होम डिलीवरी होगी। इसी तरह सिंगल पीस आपको अगर फ्रिज चाहिए तो आपको बॉश का फ्रेंच डोर फ्रिज है काउंटर डेप विद आइस एंड वाटर डिस्पेंसर के साथ, $3,500 वाला, $1,000 डिस्काउंट के साथ 2499 में बॉश फ्रिज ले सकते हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से। स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव चाहिए तो हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स में स्पेशल ऑफर किया जा रहा है। सैमसंग ने बहुत ही शानदार एयर फ्रायर एंड कन्वेक्शन ओवन के साथ स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव $1,300-1400 वाला मदर्स डे स्पेशल पे 899 का लगाया है जी। टॉल टब की डिशवॉशर आपको $1,000 वाली 50% डिस्काउंट आधी प्राइस पे स्टेनलेस स्टील की 499 की मिलेगी। तो हमारे ऐसे बहन भाई जो रियल्टर हैं रियल स्टेट के साथ, अगर उन्होंने भी अपने किसी क्लाइंट का कोई अप्लायंसेस रिप्लेस करवाना है तो ये बेस्ट टाइम है कि मदर्स डे स्पेशल प्रमोशन का एडवांटेज आपको मिलेगा, स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, फ्री होम डिलीवरी मिलेगी और आप सिक्स मंथ में पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। ब्रैम्पटन अप्लायंसेस, ये वन वर्ड है जी, bramptonappliances.com, हमारी वेबसाइट से डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी ले सकते हैं 9054502828, 905-450-2828। और एक बात याद रखें जी, जहां अप्लायंसेस में आपको सेविंग्स हो रही हैं, लॉन्ड्री में वॉशर एंड ड्रायर पे सेविंग हो रही है, वहां बिग स्क्रीन टीवी 85 इंच सिर्फ 999 में और बिग स्क्रीन टीवी 98 इंच $3,500 वाला सिर्फ 1999 में मिलेगा, जो आप सिक्स मंथ में पे करेंगे। सैमसंग का 98 इंच 1999 में मदर्स डे स्पेशल प्रमोशन पे जी, 905-450-2828, 905-450-2828 जी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान जी,
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया
0: जी। 905-450-2828।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940.
1: हाय अंजू, कैसी हो? हाउस योर सन डूइंग?
2: निशा, पूछ मत. सारा दिन कंप्यूटर, टीवी, फोन पर लगा रहता है. आंखें तो खराब होंगी ही. होमवर्क के टाइम बैटरी गुल.
1: मैं समझ गई. उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल.
3: शी इज राइट. चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे. ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज. विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 9054573232. Clear Optical by Varun Kanda.
0: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं. Brampton Crematorium and Visitation Center and Ajax Crematorium and Visitation Center में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है. 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रेमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है. हर कदम हम आपके साथ. 30 Brampton Court in Brampton, 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcvc.info or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 or acvc.info.
4: He's breaking through the midfield.
5: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का. कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज. Winter tires या extended warranty लें और हर एक के साथ पाएं एक extra entry. आज ड्राइव करें, कल जीते. विजिट donvalleynorthhyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
6: सुनदे हो, मेरे प्रादिया च फ्लाइट है इंडिया तो.
7: ओ याद है पर उनू कहीं कि आउंदा होया एक प्लेट छोले भटूरिया दी फड़ लिया वे.
6: इंडियन स्वाद वाले छोले भटूरे खान ले इंडिया दे सुपने ना देखो. choleBhature.ca ते चलो.
8: choleBhature.ca बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट ब्रैम्पटन. छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे ते होर भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड ले पहुंचो. choleBhature.ca. कॉल 9054582448.
9: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga, and 1 by Vaughan Mills.

0: इमिग्रेशन
1: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040, दैट इज 416-451-0040, और विजिट स्काई लेक इमिग्रेशन।

0: एक और कहानी मेरी जुबानी, दो दोस्तों की कहानी। निर्मल और रहीम दो दोस्त थे और वो एक बार अपने गांव के नजदीक जंगल में घूमने लगे। घूमते घूमते वो काफी अंदर चले गए और वापस लौटने लगे, अचानक से उन्हें एक भालू दिखा। भालू ने भी उन दोनों को देख लिया और इनकी तरफ बढ़ने लगा। रहीम को पेड़ पे चढ़ने की कला मालूम थी, उसने बिना निर्मल के बारे में सोचे तुरंत पेड़ पे चढ़ गया। निर्मल ने तुरंत अपना दिमाग लगा के जमीन पर लेट गया क्योंकि उसने ये सुना था कि जानवर शवों को पसंद नहीं करते। जैसे ही भालू नजदीक आया, निर्मल ने सांस रोक ली। भालू ने निर्मल को सूंघा और मरा हुआ समझकर लौट गया। थोड़ी देर बाद रहीम नीचे आके निर्मल से पूछने लगा कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या बोला है, क्या बोला कि वो बोल के चले गया। निर्मल ने कहा, भालू ने कहा कि रहीम जैसे दोस्तों से दूर रहो। अब दोस्तों, कहानी की सीख यह है कि जरूरत पड़ने पे काम आने वाले लोग ही दोस्त कहलाने के लायक होते हैं। स्टे ब्लेस्ड।
1: लीसा की याद नहीं आई तुझे जसी? जसी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
2: रियल एस्टेट इज नॉट इजी बिजनेस, और जो इजी नहीं उसे इजी बनाते हैं रियल्टर राज जोशी फ्रॉम रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली। घर खरीदना या फिर घर बेचना, फर्स्ट टाइम होम बायर्स या फिर इन्वेस्टर्स, सबकी पसंद का रखते हैं ख्याल। ये है राज जोशी, रियल्टर बेमिसाल। कॉल राज जोशी फ्रॉम रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली रियल्टी 647-866-1086, 647-866-1086। राज जोशी, सिर्फ नाम ही काफी है।
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
4: जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। वाकई जिंदगी बहुत ही सुहाना सफर है और कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। एक सुझाव मैं आपको देता हूँ कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के लिए, जैसे ऑटो, होम, लाइफ एंड कमर्शियल इंश्योरेंस, एक भरोसेमंद नाम पूजा गुप्ता जी को कॉल करें 6476280040। दैट इज 6476280040।
3: यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
5: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते अनादि टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होण वाला है तूफानी।
0: Welcome back friends, and it's almost time to say goodbye. अब हमारी मुलाकात आपसे होगी मंडे, यानी नेक्स्ट वीक। मुझे दीजिए इजाजत। CMR 101.3 FM पर साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 PM। Till then, goodbye and God bless, ladies and gentlemen.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The opinions stated by the various contributors to Sean Express are not to be considered as endorsed by Sean Express or CMR. They represent the opinions of the individual or business in question. All information given on this radio show is for education and entertainment purpose only. Moreover, the health tips given on this radio show should be cleared with a physician or nutritionist. We make no guarantee about the accuracy of information presented on this show.
3: Attention please, Sean Express, Masiki Rail Gari, CMRP Station, 101.3 FM par aa chuki hai.
4: Jal mein sunane aayi, subah manane aayi, chatpate gossip ke saath masti lutane aayi. Aayi Sean Express, Masiki Rail Gari, aayi Sean Express, Masiki Rail Gari.
5: Sean Express, Masti Ki Rail Gari.
6: Ek drive and musty show, jisme hai aaj ke zamane ke top songs, taza tareen khabrein aur chatpati gossips. Jo aap drive ko banayenge power drive. Sean Express, Masti Ki Rail Gari. Drive time show with Shalini.
5: Shalini. Brought to you by Sean Media.
7: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों. मैं शालिनी आप लोगों का फिर से वेलकम करती हूँ शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3. म्यूजिक, मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट से भरा हुआ आपका फेवरेट शो. आज का मूड दोस्तों सिंपल है, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड. शुरुआत करते हैं एक छोटी सी शायरी से. मुस्कुराते रहो तो सफ़र आसान हो जाता है, हर दिन फिर एक नया अरमान हो जाता है. जो दिल से जीना सीख ले उसका हर पल खास हो जाता है. तो दोस्तों, इसी पॉजिटिव वाइब के साथ आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं. जहां होगा बॉलीवुड कैलेंडर, आपके फेवरेट सॉन्ग्स, थोड़ी सी फिल्मी गॉसिप्स, मेहमानों का साथ और आपसे हमारी दिल से बातचीत, यानी एक और एक्शन पैक्ड, एंटरटेनमेंट पैक्ड शो जस्ट फॉर यू. तो सुनते रहिए शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी शाम के 4 बजे तक ऑन CMR FM 101.3. गुड आफ्टरनून.

0: शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी स्टेशन CMR 101.3 FM पर आ चुकी है। Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented drive, get on board Shaun Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@shaunmedia.com, shonmedia.com.
1: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Farq aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
0: 970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
1: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
2: Welcome to Madras Restaurant. Swad Swag aur South ka tadka. Friday, Saturday aur Sunday enjoy kijiye authentic South Indian unlimited thali. Starting at sirf 20-26. 20 plus South Indian delicacies. Garma garam aur unlimited. Paratha, idli vada, spicy aromatic curries and more. Unlimited servings, amazing variety aur price jo pocket ko bhi khush kare. Don't forget to try their signature dosa. Biryani and lot more. Madras Restaurant, 905-789-6600. That's 905-789-6600. घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
3: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स।
2: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ।
3: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन।
2: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 905-206-1008, दैट इज 905-206-1008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
2: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
1: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
3: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain first time home buyers ke liye an amazing opportunity. Freehold townhomes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
4: Aap rishte ko chalana chahte hain ya phir ghar basana chahte hain, lena hai koi bahut bada faisla ya karna hai karobar, स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है, या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 437-829-6023, it's 437-829-6023, Master Dhanik Maharaj.
5: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
6: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
1: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
0: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस इम्प्रेस इम्प्रेस।
3: वेलकम बैक टू शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी ऑन CMR FM 101.3 और आप हैं मेरे यानी शालिनी के साथ। इट इज़ फ्राइडे दोस्तों, और बाहर का मौसम आज भी क्लाउडी है कल के जैसे, थोड़ी बहुत सनशाइन बीच बीच में नज़र आ रही है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, पार्टली क्लाउडी स्काई, फील्स लाइक 7 डिग्रीज, और आज का हाईएस्ट टेम्परेचर +13 और लोएस्ट टेम्परेचर रात के 11 बजे जा सकता है 8 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आपको महसूस हो सकता है 6 डिग्री सेंटीग्रेड। 8 मई आज की तारीख है और मई के महीने में है, बहुत जल्दी दोस्तों समा आने वाला है और बस उसी के इंतज़ार में बैठे हैं हम सब लोग कि पता नहीं कब आएगा समर और कब हम सब घूमेंगे, कब हम जाएंगे बीचेस पर। इनफैक्ट लास्ट वीक कुछ मोमेंट्स के लिए ऐसा लगा था कि जैसे मान लो समर आ गया, लेकिन अब लगता है वापस विंटर समर, और इसकी जो लुका छिपी है वो चलती जा रही है। फिलहाल चलते हैं म्यूज़िक की तरफ और 90s के दौर में आपको ले चलते हैं। इनफैक्ट ये जो गाना है हमने है फिल्म क्रिमिनल से, ये 1995 की फिल्म थी और इसी फिल्म से लिया गया, बहुत प्यारा सा गाना है। इस फिल्म में थे मनीषा कोइराला और उनके साथ थे शाहरुख खान, अमेजिंग फिल्म थी 1994 की, थ्रिलर फिल्म थी, महेश भट्ट का डायरेक्शन था, नागार्जुन मनीषा कोइराला ये दोनों थे मेन लीड रोल में, और इट वॉज शॉट साइमल्टेनियसली तेलुगु एंड हिंदी लैंग्वेजेस। म्यूजिक MM कीरावनी का और इसी फिल्म से लिया गया, एक बहुत प्यारा सा गाना है तुम मिले तो दिल खिले। आपकी नजर करते हैं शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी CMR FM 101.3। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, तुम मिले दिल खिले शॉन एक्सप्रेस पर।

0: अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: वीरे वधिया फर्नीचर ली किथे जावा?
2: भाई चार लोकेशन तो देन सेवावा, बस इसे करके ही मैं ता मिड्डा फर्नीचर ते ही जावा।
3: लेटेस्ट डिजाइन एंड हाई एंड फर्नीचर विद बेस्ट सर्विसेज, मार्केट दे प्राइस नालो 10-30% सस्ती प्राइस दा दावा कर देने।
2: मिड्डा फर्नीचर आओ, घर दफ्तर नु सजाओ। ब्रैम्पटन, स्कारब्रो, मिसिसागा ते कैम्ब्रिज लोकेशन ते आओ ता सही,
3: आजमाओ ता सही, अपना बनाओ ता सही। मिड्डा फर्नीचर, कॉल करो 416-901-2810, 416-901-2810।
4: जी दोस्तों, मिड्डा फर्नीचर गैलरी की तरफ चलते हैं। और अब मदर्स डे वीकेंड है, हम सभी लोग काफ़ी कुछ खरीदना चाहते हैं अपनी मॉम्स के लिए। तो मॉम को सबसे प्यारा होता है बच्चों के बाद, फैमिली के बाद घर। तो क्यों ना घर को ब्यूटीफाई किया जाए, मॉम्स के चेहरे पर थोड़ी स्माइल लाई जाए। और हमारे साथ जुड़े हैं पवन मिड्ढा जी, उनसे पूछा जाए कि क्या स्पेशल है टू ऑनर द मॉम्स ऑन द स्पेशल वीकेंड। पवन जी वेलकम, कैसे हैं आप?
5: थैंक यू वेरी मच जी, और रेडियो सुनने वाले सभी बहन भाइयों को, और जितनी मेरी बहनें सुन रही हैं और मां समान बड़ी बहनें सुन रही हैं या माताएं सुन रही हैं, छोटी बहनें, मेरी बच्चियां, देवियां सुन रही हैं, सभी को आने वाला जो ये मदर्स डे है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी सेहत अच्छी रहे, आपका अपने बच्चों के साथ प्यार बना रहे, और आपके साथ जैसा भी मेरा रिश्ता है, किसी के साथ बड़े भाई का है, किसी के साथ छोटे भाई का है, किसी के साथ अंकल का रिश्ता है, और हमारे साथ भी बना रहे, तो लालच अपना तो रखते ही है ना। देखो, शुभकामनाएं आपके लिए मांग रहे हैं और चाहते हैं हमारा रिश्ता भी और स्ट्रांग हो। मजाक की बात है, जोक्स पार्ट, जो लेकिन जो असलियत है वो ये है कि जैसे शालिनी जी, भगवान का भी देना नहीं दे सकते,
4: सही बात है,
5: माँ का भी देना नहीं दे सकते,
4: क्या बात है।
5: और भगवान को भी खुश, तो हम भगवान को भी मतलब मंदिर में जाते हैं, जो आप तिल फूल कहते हैं ना, जाके $5 चढ़ा दिए और कहते हैं मिड्डा फर्नीचर की सेल बहुत सारी हो जाए, बहुत सारी हो जाए। माँ को भी छोटा सा कभी गिफ्ट लेके, जैसे हम भी, मैंने भी कल कहा था $100 का, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ कि info@middafurniture.com पे ईमेल कर दें $100 का स्टोर गिफ्ट। वही बात की आपको नमन करना चाह रहे हैं,
4: क्या बात है।
5: हमारी सिर्फ भावनाएं हैं, क्या दे सकते हैं। माँ क्या $100 से खुश हो जाती है? अगर माँ को, माँ तो स्माइल से खुश हो जाती है। मेरी माँ इंडिया से फोन करके पूछ ली थी, तो आज रात को ठीक सोया कि नहीं सोया? वो खुद सोई कि नहीं सोई हम कभी नहीं पूछते हैं कि माँ तेरे को रात को नींद आई थी? नहीं, माँ हमारे से जरूर पूछती है कि तू रात को ठीक खाया था, तो यूएसए गया हुआ था, वह खाना अच्छा मिल गया था। तो ये माँ है। तो उसी तरह जो आप सब देवी हैं ना, जब भी एक लड़की माँ बनती है तो उसमें वो देवी आ जाती है, वो माँ का रूप आ जाता है, प्रोटेक्टिव, बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव हो जाती है। तो वो उसी तरह छाया छाया में रखती है। तो हमें आपका प्यार चाहिए, साथ चाहिए। बिजनेस तो आप देते ही रहे हैं मदर्स डे पे, तो आपको बस नमन है, आपको नमन है। और जैसे डिस्काउंट की बात है, फिर आपका हक है, बड़े भाई पे भी हक है, बेटे पे भी हक है, अंकल पे भी हक है, जो आप कहेंगे वही कर देंगे। और माँ कभी नुकसान थोड़ा चाहेगी बेटे का, मुझे ये तो कोई माँ आके मुझे नहीं कहेगी कि बेटा ऐसे कर, तेरे को 1000 का आया, मुझे 500 का दे दे। हाँ, 1000 वाले को अगर 1200-1300 में बेच रहे थे, कोई माँ आके कहती है कि पुत्र मैं तो 1000 में चाहिए। अच्छा, माँ मांग पता किसके लिए रही होगी? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए। कोई फर्नीचर अगर माँ लेने आएगी तो क्या घर थोड़ा अपना, उसका अपना घर है, फैमिली का घर है। तो मैं सभी माओं को इन्विटेशन हाथ जोड़ के देना चाहूंगा कि आप मुझे भी, जैसे आप अपने बच्चों को प्यार करती हैं, अपने भाइयों को प्यार करती हैं, अपने बड़ों छोटों को प्यार करती हैं, मुझे भी आपका आशीर्वाद वैसे ही मिला है। और उसका एक श्रेय तो ये मेरी बहन जो होस्ट है, और मैं जब आपको याद करता हूँ तो शिवानी को भी याद करता हूँ। मैं दोनों को इकट्ठा मिला था, और मतलब प्यार से बांधा हुआ है, ना कि हमें बांधा हुआ है, आप बहनों ने हमें सभी को कम्युनिटी के साथ बांधा हुआ है। तो ये प्यार बना रहना चाहिए। फिर डील, मतलब वैसे ये एडवर्टीज वाली डील नहीं है, लेकिन मेरी दिल से डील है कि जो आके मेरी बहनें, मेरी माँ समान माताएं, देवियां कह रहा हूं मैं सभी को, जो आके कहेंगे कि ये लिख लो, और मेरा स्टोर मना नहीं करेगा वो लिखने में, और कॉस्ट पे भी देना पड़ा तो दे दिया जाएगा। फिर माँ को तो सिर्फ प्यार ही दिया जा सकता है, और हम आपको नमन करना चाह रहे हैं। जी हाँ, एज ए टोकन ऑफ लव, डिस्काउंट, वो चाहे $100 का कूपन है या आपको फर्नीचर में डिस्काउंट चाहिए, तो आपका स्वागत है, किसी भी स्टोर पे आएं और आजमाएं, आके पता करें। ये बात की मतलब कई बार मैं बोल रहा हूँ, मैं बोले एक से जगह रहा हूँ, चार स्टोर हैं, चारों पे मैं नहीं बैठा, आपको वो फीलिंग भी आनी चाहिए हर स्टोर पे जाके। अगर हम भी वही दुकानदारी कर रहे हैं तो फिर ये बोलना भी गलत है ना, ये फिर बोलना भी गलत है। तो देखें, ये हम चाहते हैं कि आपका प्यार चार से पांच पे ले आया, चार से एक से शुरू करके, एक से शुरू करके, ये आपका आशीर्वाद तो है कि आप एक से शुरू करके पांचवें पे ले आए। और अच्छे अच्छे जहां लंदन में स्टोर मिला, पूरा 2 किलोमीटर शॉपिंग कम्प्लेक्स ही है, मतलब शॉपिंग शॉपिंग सेंटर है, तो बड़े स्टोरों के साथ, होम सेंस, बुक क्लेयर, मेरे राइट में बुक क्लेयर है, लेफ्ट में होम सेंस और विनर है, तो मतलब उन स्टोरों के अंदर बीच में जगह मिलना भी एक सौभाग्य की बात है। तो ये मेरी माँ का आशीर्वाद है, आप मेरी बहनों का आशीर्वाद है, तो ये प्यार बना रहना चाहिए, ये साथ बना रहना चाहिए। और ये बिजनेस तो थोड़ा सा लालच दिखा रहा हूँ आपसे, बिजनेस आपका वैल्यूएबल बिजनेस हमें मिलता रहेगा तो ये ताकत भी आते आपको लिए डीले लाते रहेंगे। तो आए, जो आप चाहेंगे ना, जिस प्राइस पे चाहेंगे आपको दिया जाएगा, मिड्डा फर्नीचर पे। इस बार 416-901-2810 और किसी भी एडवर्टाइज, माफी मांगूंगा वैसे तो ये डिस्काउंट बोल रहा हूँ, किसी भी, कई बार आइटम क्या होता है आपको मिड्डा भी नहीं पसंद आ रही थी, कहीं पसंद आ रही होती है, 15% प्राइस बीट करके मिड्डा फर्नीचर देगा। और हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ उन बहन भाइयों से जिनके स्टोर होंगे, कंपटीशन करने के लिए नहीं, मेरी बहनों को, मेरी माओं को नमन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच जी। मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर, 416-901-2810, 416-901-2810। थैंक यू वेरी मच जी।
4: थैंक यू सो मच पवन जी, इतनी वार्मथ, इतना इफेक्शन, इतना अपनापन आपसे मिलता है सभी को, हम सभी को, एंड वी ट्रूली एंजॉय टॉकिंग टू यू एंड गेटिंग सम वंडरफुल डील्स। दोस्तों, आप चारों लोकेशन अभी विजिट कीजिएगा और कुछ दिनों बाद पांचों लोकेशन से सर्व करेंगे मिड्डा फर्नीचर। विजिट करें middafurniture.com, 416-901-2810, दैट्स 416-901-2810। पवन जी, थोड़ी देर में फिर आपसे रब्ता कायम करेंगे। थैंक यू।
5: थैंक यू जी।
4: और वेल दोस्तों, एक बार फिर से आपका वेलकम है, अ बिग हेलो टू आवर सोशल मीडिया फैंस, हमें जुड़ने के लिए आज की ब्यूटीफुल आफ्टरनून राइड में, शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी ऑन CMR FM 101.3। और ये वीकेंड दोस्तों मदर्स डे वीकेंड है, और आप लोगों का चाहिए हमें एक बार फिर से अमेजिंग रिस्पॉन्स ऑन द शो। मैं पूछने जा रही हूँ आपसे एक सवाल, और उस सवाल का जवाब मुझे चाहिए, आप अपने लफ्ज़ों में हमें उस सवाल का जवाब बताएंगे। और स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। जिंदगी की भाग दौड़ में हम सब कुछ बोल देते हैं, जिंदगी की भाग दौड़ में हम सब कुछ बोल देते हैं दोस्तों, दुनिया से, सोशल मीडिया पर भी, लेकिन एक इंसान है जिसे हम सबसे ज़्यादा कहना चाहते हैं कुछ और फिर भी नहीं कह पाते, वो है हमारी माँ। कभी थैंक यू कहना रह जाता है, कभी सॉरी दिल में रह जाता है, और कभी बस एक आई लव यू होठों तक आकर रुक जाता है, राइट? ऐसा बहुत बार होता है। लफ्ज़ों में जो बयां ना हो पाए वो एहसास हो तुम, लफ्ज़ों में जो बयां ना हो पाए वो एहसास हो तुम, मेरी हर खामोशी के पीछे छुपी आवाज़ हो तुम। कहना तो बहुत कुछ है माँ तुमसे, पर हर बार दिल ही कह रह जाता है और तुम समझ जाती हो। तो भाई, दिल में बातें ना रखें, अपनी माँ को ज़रूर जाके बोल दें। तो कोई ऐसी चीज़ जो आप अपनी माँ को कहना चाहते हैं और नहीं कह पाए, या कोई कुछ कहना चाहते थे और नहीं कह पाए अपनी माँ से, वो क्या लाइन है, हमारे साथ आज ऑन एयर ज़रूर शेयर करें, शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी पर। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055, दैट्स 416-593-0055। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और फिर चलते हैं आज की ताज़ा हेडलाइंस की तरफ। स्टे ट्यून्ड।
0: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: Call 905-206-1008. That is 905-206-1008. Or visit winlifetime.com. Win Lifetime.
1: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain. First time home buyers ke liye an amazing opportunity. Freehold townhomes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3. शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस इम्प्रेस इम्प्रेस. शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया. न्यूज हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय अंजुम कुरैशी. फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कार एक्सीडेंट क्लेम्स कॉल 416-570-0157. That's 416-570-0157.
3: नमस्कार. शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में सवार हो चुके हैं आप और ये है न्यूज जंक्शन. पहले जान लेते हैं हेडलाइंस. संयुक्त अरब अमीरात ने दावा किया है कि ईरान ने उसके खिलाफ 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन दागे हैं. अटलांटिक महासागर में क्रूज शिप MV होडियंस पर 2 भारतीय नागरिक शामिल. ये वही शिप है जिस पर हंता वायरस फैला है. ईरान और अमेरिका की नेवी के बीच बीती रात हॉर्मुज स्ट्रेट में हुई फायरिंग की चपेट में गुजरात का एक मालवाहक जहाज डूब गया. उधर भारत में सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए CM होंगे. कोलकाता में कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया. तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर जारी राजनीतिक सस्पेंस खत्म हो गया. TV के चीफ और एक्टर विजय मुख्यमंत्री बनेंगे.
4: और अब नजर डालते हैं लोकल हेडलाइंस की तरफ. ओंटारियो के 2 रेजिडेंट्स जो क्रूज शिप आउटब्रेक से जुड़े हुए थे अब होम आइसोलेशन में हैं. टॉप डॉक्टर के अनुसार दोनों ग्रे ब्रूस रीजन के एक ही हाउसहोल्ड से हैं और 45 दिनों तक मॉनिटरिंग में रहेंगे. अच्छी खबर ये है कि दोनों एसिम्प्टोमेटिक हैं और फिलहाल किसी रिस्क की आशंका नहीं है. चलेंगे हॉल्टन रीजन की तरफ जहां हॉल्टन रीजनल पुलिस ने ज्वेलरी स्टोर्स पर हुए स्मैश एंड ग्रैब रॉबरीज में 8 सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया है. ये रॉबरीज बर्लिंगटन, गोल्फ, वाटरलू और सेंट कैथरीन समेत कई शहरों में हुई थी. सस्पेक्ट्स पर 50 चार्जेस लगाए गए हैं. टोरंटो इस वीकेंड रहेगा सुपर बिजी. मेयर ओलिविया चाओ के मुताबिक टोरंटो FC वर्सेस इंटर मियामी लायोनल मेसी मैच में 45,000 लोगों के आने की उम्मीद है. ये फीफा वर्ल्ड कप के लिए रियल लाइफ टेस्ट होगा. उधर TTC ने अनाउंस किया है कि वर्ल्ड कप के लिए 600 से ज़्यादा इवेंट एम्बेसडर्स डिप्लॉय किए जाएंगे. उधर ट्रांजिट अलर्ट आया है. मेजर क्लोजर्स हैं इस वीकेंड. ट्रैवल प्लान्स पहले से बना लें. डॉन वैली पार्कवे पूरे वीकेंड बंद रहेगा 401 से गार्डनर तक. फ्राइडे आज रात 11 बजे से मंडे सुबह 5 बजे तक क्लोजर रहने की उम्मीद है. उधर लाइन 2 सबवे का कुछ हिस्सा भी बंद रहेगा. उधर गो ट्रांजिट सर्विसेज में भी बदलाव के आसार हैं. टोरंटो पुलिस ने स्कार्ब्रो में एल्डरली विक्टिम्स को टारगेट करने वाले फेक ज्वेलरी स्कैम में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. सस्पेक्ट्स पहले फेक ज्वेलरी पहनाते थे और फिर विक्टिम्स का असली गोल्ड ज्वेलरी चोरी कर लेते थे. रेक्सटेल एरिया में लेट नाइट स्टैबिंग की घटना सामने आई है. एल्बियन रोड और इजलिंगटन एवेन्यू के पास एक आदमी को लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज के साथ कल रात हॉस्पिटल भेजा गया. पुलिस ने मौके से एक सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया है. टोरंटो में आज मौसम रहेगा कूल और क्लाउडी, हल्की ठंडक और क्लाउडी कंडीशंस के साथ. वीकेंड में भी मिक्स्ड वेदर एक्सपेक्टेड है. इस वक्त बाहर का मौसम है 10 डिग्री सेंटीग्रेड और आज का हाईएस्ट प्लस 12 डिग्रीज एंड ओवरनाइट लो 8 डिग्रीज जाने की है संभावना. न्यूज हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय अंजुम कुरैशी. For all kinds of car accident claims, call 416-570.

416-570-0157. That's 416-570-0157. Sean Express, गानों की स्वीट डिश। दिस सेगमेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय KCDL कंस्ट्रक्शन ग्रुप। लीगल बेसमेंट कंस्ट्रक्शन से लेकर फुल होम रेनोवेशन, सेपरेट साइड एंट्रेंस, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल एस्फाल्ट पेविंग, रीसर्फेसिंग कंक्रीट, इंटरलॉकिंग एंड मोर। कॉल 647-966-5681. 647-966-5681. वेलकम बैक दोस्तों, और आज का टॉपिक है कि जिंदगी की भागदौड़ में हम सब कुछ बोल देते हैं दोस्तों से, दुनिया से, सोशल मीडिया से, लेकिन एक इंसान है जिसको हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, उसको शायद हम नहीं कह पाते कभी। उस इंसान को हमेशा आंखों के सामने देखने की आदत पड़ जाती है। वी टेक दैट पर्सन फॉर ग्रांटेड, बट वी डेफिनेटली लव दैट पर्सन, एंड दैट वन पर्सन इज हमारी माँ। कभी थैंक यू कहना रह जाता है, कभी सॉरी हमारे दिल में रह जाता है, कभी भूल जाते हैं कि मॉम्स को भी आई लव यू कहना चाहिए। तो भाई आज का सवाल आप लोगों से ये है कि एक ऐसी बात जो आप कभी अपनी माँ से नहीं कह पाए, या एक ऐसी चीज़ जो अपनी माँ को आप बोलना चाहते हैं लेकिन आज तक नहीं बोल पाए, ये इस हवाले से आपको हमें बताना है क्या है वो एक चीज़ जो अपनी मॉम को आप नहीं बोल पाए, या वो एक ऐसी चीज़ जो आप अपनी मॉम को बोलना चाहते हैं। अब यू स्टिल हैव टाइम, तो ज़रूर बताइएगा। ऑन एयर आप कॉल कर सकते हैं 416-593-0055, that's 416-593-0055। और आज का कॉन्टेस्ट स्पॉन्सर किया है मद्रास रेस्टोरेंट ने, और अनलिमिटेड थाली आज दो लोगों को दी जाएगी। दो लकी विनर हम निकालेंगे आज के शो में से, और अनलिमिटेड थाली इसी वीकेंड आप अपनी मॉम के साथ जा सकते हैं, टुडे, टुमारो और द डे आफ्टर। और द सेगमेंट इज को स्पॉन्सर्ड बाय यश विंडोज एंड डोर्स। बहुत प्यारा सा माँ को समर्पित ये गाना है, मेरी प्यारी अम्मी आपकी नज़र करेंगे हम। यश विंडोज एंड डोर्स ने स्पॉन्सर किया है ये गाना। अगर आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में, तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ओंटारियो, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और खुद ही उनकी एक्सपर्ट टीम प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है, यानी कोई मिडलमैन, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सीधे फैक्ट्री से आपके घर तक। सुपीरियर स्टाइल, ग्रेट लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, एवरीथिंग टुगेदर, और प्राइस ऐसी जो आपकी पॉकेट को सूट करे। इसके अलावा फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है, अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो आप राइट अवे कॉल करें यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600, दैट्स 416-732-3600।

0: मेरी प्यारी अम्मी, बहुत प्यारा सा गाना मेघना मिश्रा की आवाज़ में आपकी नज़र किया, सभी मॉम्स को डेडिकेट किया, क्योंकि ये मदर्स डे वीकेंड है और आप लोग बता सकते हैं वो एक चीज़ जो अपनी आप अपनी मॉम से कभी कहना ना सके, और अगर आपको चांस मिला तो वो कौन सी बात है जो अपनी मॉम को आप कहना चाहेंगे, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप अपनी मॉम से कभी नहीं कह पाए अगर आपकी मॉम आपके साथ हैं और आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही उनसे वो कैसे बात कह दें। कभी कभी हमारा काफ़ी डिस्टेंस होता है माँ बाप के साथ, हम इतने कैजुअल नहीं होते, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिल में ही रह जाती हैं, हम कह नहीं पाते। तो इफ़ देयर समथिंग दैट यू वॉन्ट टू से टू योर मॉम, दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर यू। आप लोग आके हमें ज्वाइन करें और बताइए अपनी मॉम से आप क्या कहना चाहते हैं। आई लव यू कहना चाहते हैं, सॉरी कहना चाहते हैं, थैंक यू कहना चाहते हैं, और कहना चाहते हैं कि आप मेरी सबसे बड़ी दोस्त हो, क्या कहना चाहोगे जरूर बताइए 416-593-0055। और आपको बता दें यहाँ पर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के बारे में, हर तरह के घर में रेनोवेशन करते हैं, कोई भी हैंडीमैन सर्विसेज आपको चाहिए, कोई इलेक्ट्रिकल फिटिंग करनी है, कुछ आपको प्लम्बिंग इशू आ गया है, आपका टब क्रैक हो गया है, शावर डोर नया लगवाना है, फ्लोरिंग चेंज करानी है, पेंट कराना है वॉल पर, एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू डू, आपके डेक की भी स्टेनिंग करानी है वो भी आप करवा सकते हैं, या इसके अलावा पूरे घर में कुछ भी आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, बेसमेंट कंस्ट्रक्शन, साइड डोर, राजेश कुमार जी से बात कर लें क्वालिटी कंस्ट्रक्शन में 6472102075 6472102075। हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हैं, आइए करते हैं उनसे मुलाकात। द फर्स्ट कॉलर ऑन एयर, गुड आफ्टरनून।
1: हाय, गुड आफ्टरनून, इट्स पुनीत, हाउ आर यू?
0: हाय पुनीत, आई एम गुड, आप कैसे हैं?
1: Okay, yeah, you know, I lost my mother when I was 2 years old, actually.
0: Oh, 2 years old. Wow.
1: Yeah, so I just want to say, sing 2 lines for her.
0: Sure.
1: Ma, teri mamta kitni pyari, kitna pyar jagati hai, kitna pyar jagati.
0: क्या बात है पुनीत, थैंक यू सो मच, एंड आई एम श्योर आपकी मॉम वहाँ से आपको देख रही होंगी और स्माइल आ गई होंगी उनके चेहरे पर ये गाना सुनकर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, मेनी थैंक्स। और नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे, गुड आफ्टरनून।
2: हेलो, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू?
0: आई एम गुड, हाउ आर यू?
2: आई वॉन्ट टू टेल माई मॉम, she's not there right now, but seven life, if I take it, always I want to be your son.
0: Oh, that is so sweet. What's your name?
2: Kumar.
0: Kumar ji, absolutely fantastic.
2: The unfortunate thing, when I was poor, I was with my mother.
0: Mm-hmm.
2: When I became rich, I was not with my mother.
0: Oh.
2: But that thing happened, eh?
0: How sweet.
2: Okay.
0: This is life.
2: Anyway, happy Mother's Day for everyone,
0: Thank
2: including you.
0: Thank you so Bye-bye. Much, Kumar ji. Appreciate. Welcome. Thanks a lot. Bye-bye. कहते हैं दोस्तों कि जब कोई चीज हमारे पास जिंदगी में होती है,
3: Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812, or email info@seanmedia.com, shonmedia.com.

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट pujahut.com।
0: जय श्री राम। इस तेज रफ्तार जिंदगी में लीजिए एक लवली ब्रेक। चाहे बैक होम जाना हो या करनी हो दुनिया भर की सैर, अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को बनाइए लवली विद लवली फेयर्स। वेकेशन पैकेजेस, टूर्स या फ्लाइट्स, लवली ट्रैवल्स इज ऑलवेज रेडी टू मेक योर ट्रिप मेमोरेबल एंड अफोर्डेबल। कहीं और से टिकट्स बुक करने से पहले एक बार लवली फेयर जरूर चेक करें। लवली ट्रैवल्स, 80 मैरिटाइम बुलेवार्ड, यूनिट नंबर 54 इन ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-5300
2: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
0: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी CMRFM 101.3। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। और मॉम्स के साथ भी रिलेशंस बड़े अलग तरीके के होते हैं। कभी हमारे मॉम डैड के साथ हमारे रिलेशन बहुत ही सीरियस होते हैं, वो भी अच्छा होता है। कभी कभी बड़े फ्रेंडली होते हैं, जैसे मॉम आती है तो हमें लगता है कि कोई दोस्त आया है, राइट? वो भी अपनी जगह ठीक है। सबका अपना अपना सोचना है, अपनी अपनी ज़िंदगी है, और अपना अपना फन करने का जो तरीका है, जो राइट है, वो भी हमारा अपना होना चाहिए, इज़न्ट इट? और इस केस में हम किसी को जज नहीं कर सकते कि भाई वो अपनी मॉम के साथ ऐसा है और मैं अपनी मॉम के साथ ऐसी हूँ। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, ये मेरा मानना है। सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग प्यार बहुत करते हैं लेकिन प्यार जता नहीं सकते। इट्स नॉट इन इन देम सेल्व्स टू शो द लव। वो चीज़, वो एलिमेंट उनके अंदर है ही नहीं, बट लेकिन दे मीन अ लॉट, दे मीन वेरी पॉजिटिव अबाउट देयर फ्रेंड्स, अबाउट देयर फैमिलीज। तो इसीलिए हमारा रीज़न आज जिस टॉपिक पर बात करने का ये था कि कई चीज़ें आप अपने मॉम डैड के सामने यू आर नॉट एबल टू से। सो दिस इज़ योर प्लेटफॉर्म, यू कैन कम एंड यू कैन से दैट टू योर मॉम ऑन एयर, आप कह सकते हैं। और कहते हैं ना कि कभी दिल की बात आप निकाल दो तो दिल हैवी नहीं रहता। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? तो आप ज़रूर आइएगा, ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आज का जो क्विज़ है वो स्पॉन्सर किया जा रहा है मद्रास रेस्टोरेंट की तरफ से। और 3 बजे तक का वक्त है हमारी लाइन्स, 4 बजे तक का वक्त है हमारे पास, लाइन्स ओपन हैं और आप लोग कॉल्स कर सकते हैं। आपके कॉल्स हम ऑन एयर लेंगे। कौन सी वो एक बात है जो अपनी आप मॉम से कहना चाहते हो, जो कभी आप कह नहीं सके अपनी माँ से, ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू गिव अ ट्रिब्यूट टू योर मॉम ऑन शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी CMRFM 101.3। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। और दोस्तों, कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी के बारे में भी बता दें आपको, जो लार्जेस्ट ऑनिंग सप्लायर हैं कैनेडा वाइड। अगर आपको चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी, रिट्रैक्टेबल ऑनिंग, तो आज ही इनसे संपर्क करें। ब्रैम्पटन का बड़ा ट्रस्टेड नाम है फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल फ्री बारबेक्यू दिया जा रहा है विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल। और नंबर इनका नोट कर लें, 416-831-4790, 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन है इनका एड्रेस। California Awning and Canopy, 416-831-4790. और वेल दोस्तों, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 2:49 हुए हैं. एक छोटा सा टाइनी सा कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है. कमर्शियल ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस लौटते हैं अगले बहुत प्यारे से गाने के साथ. एंड स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक. आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव. आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी. अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड. फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812. वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट. स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का. फ्राइडे सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26. 20+ साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली, वड़ा, स्पाइसी अरोमेटिक करीज एंड मोर. अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे. डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर. मद्रास रेस्टोरेंट, 905-789-6600. दैट्स 905-789-6600.
3: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar. I have first time home buyers clear an amazing opportunity. Freehold townhomes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: क्या आप अपने घर में लीगल बेसमेंट कंस्ट्रक्शन करवाने की सोच रहे हैं? तो भरोसा करें KCDL कंस्ट्रक्शन ग्रुप पर। सेपरेट साइड एंट्रेंस, मॉडर्न वॉशरूम, प्रीमियम फ्लोरिंग, कस्टम किचन्स, फुल होम रेनोवेशन, पेंटिंग और विंडो अपग्रेड्स, हर काम प्रोफेशनल फिनिशिंग के साथ। रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एस्फाल्ट पेविंग, रीसर्फेसिंग, कंक्रीट, इंटरलॉकिंग और बहुत कुछ एक ही ट्रस्टेड नाम। घर हो या कमर्शियल प्रोजेक्ट, KCDL कंस्ट्रक्शन ग्रुप आपकी पहली पसंद। कॉल मन्नत कंकवाल 6479665681, 6479665681।
2: पुराना गाना बनाए दीवाना, शोर एक्सप्रेस पर खोले यादों का पिटारा।
1: दिस सेगमेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय विन लाइफटाइम। क्या आप भी चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम? तो विन लाइफटाइम लेकर आए हैं ट्रेडिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट, बस 90 मिनट रोजाना। फ्री सेमिनार है एवरी सैटरडे एट 1 PM इन मिसिसागा। सीट्स हैं लिमिटेड, सीखना है अनलिमिटेड। बुक योर फ्री सीट नाउ 9052061008, 9052061008, और विजिट winlifetime.com। तेरी बातों की खुशबू आज भी दिल में उतर जाती है, तेरे बातों की खुशबू आज भी दिल में उतर जाती है, कुछ धुनें पुरानी होकर भी सीधे रूह तक पहुंच जाती है, और जब इश्क हल्का हल्का मुस्कराए तो दिल खुद कह उठे आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। ये बहुत प्यारा सा गीत है, आपकी नज़र करेंगे 1968 की फिल्म किस्मत से लिया गया है, एवरग्रीन क्लासिक, आज भी रोमांस का सिनोनिम माना जाता है। म्यूज़िक दिया था ओपी नैयर ने, और इस गाने की सॉफ्ट रिदम और सेडक्टिव स्टाइल उस दौर में बेहद यूनिक मानी गई थी। ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, चंदलाई ने मेरी तरफ से और उसके बाद आशा भोसले की खूबसूरत सी आवाज़ में ये गाना आपकी नज़र करेंगे शॉन एक्सप्रेस पर। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं,

Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@seanmedia.com, seanmedia.com. Sean Express News Bulletin brought to you by Sean Media. This part of the show is sponsored by Win Lifetime. क्या आप भी चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम? तो Win Lifetime लेकर आए हैं ट्रेडिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट, बस 90 मिनट रोजाना. Free seminar every Saturday at 1 p.m. in Mississauga. Limited seats but unlimited opportunities. Call 905-206-1008 or visit winlifetime.com. मद्रास रेस्टोरेंट, स्वाद, स्वैग और साउथ का तड़का. फ्राइडे, सैटरडे और संडे एंजॉय करें ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट ओनली 20-26. एंड KCDL कंस्ट्रक्शन ग्रुप, लीगल बेसमेंट कंस्ट्रक्शन से लेकर फुल होम रेनोवेशन, सेपरेट साइड एंट्रेंस, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एस्फाल्ट पेविंग, रीसर्फेसिंग कॉन्क्रीट, इंटरलॉकिंग एंड मच मोर. कॉल 647-766-4335, 647-766-4335.

0: धोखा है एक फरेब है मंजिल का हर ख्याल, यूं देखिए तो सारा सफर वापसी का है। राजेश रेड्डी साहब के इन अशार के साथ आगाज कर रहे हैं आज के इस खास सेगमेंट का, और सबसे पहले रुख कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। संयुक्त अरब अमीरात ने दावा किया कि ईरान ने उसके खिलाफ 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन दागे हैं। यूएई रक्षा मंत्रालय ने एक्स पोस्ट पर कहा कि सभी टारगेट्स को हवा में ही मार गिराया गया, हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। हालांकि इस दावे पर ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। इसी बीच अमेरिका ने सीज फायर के बावजूद ईरान पर फिर बमबारी की। अमेरिका ने कहा कि ईरानी सेना ने उसके जंगी जहाजों पर मिसाइल, ड्रोन और छोटी नावों से हमला किया था। इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो अमेरिका आगे भी हमला करेगा। अटलांटिक महासागर में क्रूज शिप एमवी हेडियंस पर 2 भारतीय नागरिक शामिल हैं। ये वही शिप है जिस पर हंता वायरस फैला है। बीबीसी के मुताबिक अब तक जहाज पर हंता वायरस संक्रमण के 5 मामलों की पुष्टि हुई है और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं नीदरलैंड की लीडेन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में भर्ती हंता वायरस मरीज का इलाज कर रही डॉक्टर करीन एलन वेल्डकैम्प ने कहा कि ये वायरस कोरोना जैसा नहीं है। उन्होंने AFP से बातचीत में कहा कि हंता वायरस का इंसान से इंसान में फैलना आसान नहीं है, इसका ट्रांसमिशन कोरोना की तुलना में काफी मुश्किल है। ईरान और अमेरिका की नेवी के बीच बीती रात हार्मुज स्ट्रेट में हुई फायरिंग की चपेट में गुजरात का एक मालवाहक जहाज डूब गया। ये जहाज गुजरात के द्वारका जिले के सलाया का था। हादसे में जहाज के इंजन रूम में काम कर रहे अल्ताफ तालब नाम के भारतीय क्रू की मौत हो गई, जबकि बाकी 17 क्रू को बचा लिया गया। इंडियन सेलिंग वेसल्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आदम भाई ने मीडिया से बातचीत करते हुए इसकी जानकारी दी। तो अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार होंगी भारत से जुड़ी हुई खबर।
1: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: टाइम। जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: लाइफ टाइम यानी जीतो जिंदगी भर, और विन लाइफ टाइम एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी लेकर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं यहाँ के ट्रेडर एंड ट्रेनर राफे जी। राफे जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
2: ठीक ठाक जी, गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स जी।
1: थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे राफे जी। तो बस एक और हफ्ता निकला, तो ट्रेडिंग के हवाले से कितना प्रॉमिसिंग रहा ये वीक? कितने चेहरों पर आपने स्माइल देखी वहाँ पर?
2: जी एब्सोल्युटली, मार्केट इनसेन थी, ऑल टाइम हाई नैसडैक और S&P के लगे, और उस सारे के अंदर हमारी प्रेडिक्शन वंस अगेन टू रॉक सॉलिड रही।
1: अच्छा,
2: जहां पर हमारे AI के सॉफ्टवेयर ने कहा था वहीं पर प्राइस गई और वहीं से मुड़ रही है।
1: वाओ, अच्छा, दैट्स अमेजिंग। तो अब राफी जी, जैसा आपने कहा कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो सारा कुछ प्रिडिक्ट कर देता है और पहले से प्रिपेयर कर देता है कि किस तरफ ट्रेड, क्या कौन से ट्रेड्स लगाने हैं, किस में आपको फ़ायदा हो सकता है, कौन कौन से ट्रेड्स आपके सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो इस वजह से जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाता है। इज़ दैट राइट?
2: जी एब्सोल्युटली। देखें, हम आप इसको इस तरह देखें कि अगर आपको कोई स्विमिंग सिखाए और आपको समंदर में भेज दे बगैर लाइफ जैकेट के, तो ऐसे तो हम है नहीं है, तो हम आपको बकायदा रिस्क मैनेजमेंट भी सिखाते हैं। okay. सारे सिस्टम में।
1: वंडरफुल। तो राफी जी, ये जो वीकेंड में सेमिनार होने जा रहा है, बिल्कुल फ्री सेमिनार है जो हमारे तमाम लिसनर्स अटेंड करते हैं, उस हवाले से भी डिटेल्स बता दें, कल का सेमिनार कितने बजे होगा और कहाँ पहुँचना होगा?
2: जी, दोनों लोकेशंस में सेमिनार है, आप आए सुने। इसमें एक विन लाइफ टाइम के अंदर, सो 2601 मैथिसन पे, 9052081206 1008, एंड 1 PM स्टार्ट हो जाएगा और दोनों लोकेशंस पे होगा जी।
1: वंडरफुल। तो दोस्तों, बिल्कुल फ्री सेमिनार है, जरूर जाकर देखें कि किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं विदाउट अपनी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट करे, और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, टाइम भी लिमिटेड देना है, और आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं और ये सक्सेसफुल बिजनेस रन कर सकते हैं। वेबसाइट वंस अगेन www.winlifetime.com, नंबर इज 9052061008 9052061008, राइट अवे कॉल करें और कल के लिए बिल्कुल फ्री सीट्स अपनी बुक करें। राफे जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।
2: थैंक यू जी, टेक केयर।
3: शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया।

0: वेलकम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और अब जान लेते हैं भारत से जुड़ी हुई खबरें। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर जारी राजनीतिक सस्पेंस खत्म हो गया है। टीवी के चीफ और एक्टर विजय मुख्यमंत्री बनेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विजय को सरकार बनाने की मंजूरी दे दी है। विजय कल सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। विजय ने शुक्रवार को लोकभवन में लगातार तीसरे दिन राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने राज्यपाल को टीवी के कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके के कुल 118 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीती हैं। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए सीएम होंगे। कोलकाता में कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। बैठक के बाद अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया। इसके बाद शुभेंदु लोकभवन में राज्यपाल से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया। शुभेंदु कल सुबह 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के कई बड़े नेता शामिल होंगे। तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने से नाराज द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने कांग्रेस से अपना गठबंधन खत्म कर दिया है। डीएमके ने लोकसभा में कांग्रेस सांसदों के साथ न बैठने का फैसला किया। सांसद कनीमोजी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखकर सिटिंग अरेंजमेंट बदलने की मांग की। कनीमोजी ने कहा कि बदलते हालातों में कांग्रेस सांसदों के साथ बैठना उचित नहीं। लोकसभा में 22 सांसदों वाली डीएमके विपक्षी इंडिया गठबंधन की चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। इससे पहले इंडिया गठबंधन के लोकसभा में दूसरे सबसे बड़े दल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। उन्होंने ममता से मुलाकात की फोटो और एमके स्टालिन के साथ पुरानी फोटो पोस्ट करके लिखा, हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने गांव स्तर पर सुरक्षा तंत्र काफी मजबूत किया। पिछले एक साल में 5 जिलों में 1500 से ज्यादा विलेज डिफेंस गार्ड्स को ट्रेनिंग दी गई। इसमें हथियार चलाना, टैक्टिकल मूवमेंट, सर्वेलांस और इमरजेंसी रिस्पांस शामिल हैं। वहीं 303 राइफल की जगह SLR बुलेट प्रूफ जैकेट और वायरलेस कम्युनिकेशन सेट भी दिए जा रहे हैं। ये ग्रामीण सीमाई इलाकों में जवानों के साथ 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुग्राम में पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा में शामिल हुए। ये खानसा चौक से SG स्कूल तक 1 किलोमीटर वे पैदल भी चले। यहाँ उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बृजेंद्र की इस यात्रा से हरियाणा को बहुत फायदा होगा क्योंकि उन्होंने हरियाणा के लोगों की पल्स सुनकर समझी है। उन्होंने कहा कि आप हजारों किलोमीटर चले, आपकी मेहनत सबने देखी है, मेरा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हमारे जो युवा नेता हैं उन सबको जनता के बीच में इस तरह की यात्रा करनी चाहिए। और अब एक ऐसी खबर जो बेहद जज्बाती है। लुधियाना में सगे भाइयों ने इकलौती बहन को 175 गज का घर गिफ्ट कर दिया। इसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए है। भाइयों ने सरप्राइज तरीके से बहन को ये गिफ्ट दिया। ढोल बजाते हुए बहन को वहां ले गए जहां ये घर था। जब बहन ने नेम प्लेट में कागज हटाया तो अपना नाम लिखा देख कर वो रो पड़ी। बहन शादीशुदा है। भाइयों का कहना है कि पिता के निधन के बाद बहन हमेशा उनके साथ खड़ी रही, इसलिए अपने घर के नजदीक ही मकान बनवा कर दिया। बहन को घर गिफ्ट करने वाले दोनों भाई एक्टिंग करते हैं। एक भाई बिग बॉस के सीजन 10 में कॉमनर कंटेस्टेंट के तौर पर भी हिस्सा ले चुके हैं। ताजमहल करीब 373 साल पुराना हो चुका है। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में शामिल इस स्मारक के रॉयल गेट यानी शाही दरवाजे के पत्थर अब दरकने लगे हैं। दरवाजे की दीवारों में कई जगह दरारें आ गई हैं, कुछ पत्थर अपनी जगह से खिसक चुके हैं। शाही गेट अब आंधी और बारिश भी नहीं झेल पा रहा। पिछले महीने आंधी बारिश के दौरान 2 बार गेट के पत्थर टूट कर गिर चुके। ये पत्थर मुगल काल के हैं। और अब खबर बॉलीवुड से। धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज की सफलता के बाद डायरेक्टर आदित्य धर अब अपनी अगली बड़ी फिल्म की तैयारी में हैं। फिल्म की को प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने कंफर्म किया कि इस साल के अंत में प्रशंसकों को एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या धुरंधर 3 में रणवीर सिंह और आदित्य धर की जोड़ी दोबारा दिखेगी या फिर इस यूनिवर्स को किसी नई कहानी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। रणवीर सिंह स्टारर इस फ्रेंचाइजी ने बॉक्स ऑफिस पर 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। तो शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में न्यूज जंक्शन का ये स्टॉपेज यहीं तक। शुक्रिया।
1: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812। वेलकम बैक दोस्तों, शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी ऑन CMRFM 101.3। मैं हूँ शालिनी, आपका मैं वेलकम करती हूँ। और गेस व्हाट, हमारे साथ इन स्टूडियो हैं राहुल कश्यप जी, ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम हैशटैग होम्स। और सोशल मीडिया पर भी हमारे सभी जो हमारे फैंस हैं हमें लाइव देख रहे हैं इस वक्त। कोई भी रियल एस्टेट के हवाले से आपकी क्वेरी हो, सवाल हो, कन्फ्यूजन हो, जो आप क्लियरिफाई करना चाहें, गिव अस अ कॉल ऑन द स्टूडियो नंबर 416-593-0055। Rahul ji, very warm welcome. How are you?
2: Thank you, Shaman ji. Good afternoon to you and all our listeners.
1: Good afternoon. Great to see you on a Friday today, Rahul ji. और भाई real estate के हवाले से तो कितनी सारी खबरें आ रही हैं।
2: Absolutely.
1: एक तरफ projects आ रहे हैं, एक तरफ confidence लोगों का build-up हो रहा है, दूसरी तरफ एक ब्रोकरेज के बाद दूसरी ब्रोकरेज में कोई ना कोई इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शटडाउन हो गई, ऑपरेशंस बंद हो गए, ऑपरेशन को पॉज कर दिया। तो कुछ लेटेस्ट खबर है जो आप शेयर करना चाहेंगे?
2: जी, एक्चुअली इट जस्ट केम आउट टुडे, एक बुलेटिन रिलीज हुआ है रिको की तरफ से, एंड उसमें दो और ब्रोकरेजेस हैं अनफॉर्चुनेट जिनको सस्पेंड किया गया है, लाइसेंसेज उनके रिवोक करे गए हैं, प्रपोजल दिया गया उसका, और उसका रीजनिंग ये है, अगेन ट्रस्ट फंड्स राइट, द मिस मैनेजमेंट ऑफ ट्रस्ट फंड जो हुई है वहाँ पे। सो एक तो है मिन कॉम सोल्यूशन रियल्टी इंक, उनके साथ ये हुआ कि उनकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुई है और प्रपोजल दिया गया है उनकी रजिस्ट्रेशन को रिवोक करने का। साथ ही साथ उनके जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं, जस्ट लाइक वी हैव सीन इन द पास्ट। और दूसरी एक और जो ब्रोकरेज है वो है फ्लावर सिटी सिग्नेचर रियल्टी इंक, सो उनके साथ भी ये हुआ है। अगेन द एलिगेशंस आर ऑफ इम्प्रॉपर डिस्बर्समेंट्स एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रस्ट फंड्स। Again, एक तरफ, you know, our industry relies on trust.
1: That's right.
2: That's the basic thing.
1: This is exactly what I was going to say. Yeah. कि भरोसा है तो सब कुछ है, भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं।
2: Absolutely. Yeah. And we have had these conversations. Yes. Even, you know, हमारे clients हैं. When we're dealing with, you know, funds and yes. how we're dealing with funds.
1: Bilkul.
2: So because I own the broker, like I'm the broker record, so I'm responsible right. for these accounts Bilkul. As well. Like Bilkul. Jo trust funds hote hain.
1: Right.
2: So usi ke liye you have to be very, very diligent.
1: Mm-hmm.
2: Yes, RICO is taking steps to mm-hmm. make sure going forward, wo naye mandates nikal rahi hain.
1: Right.
2: Even by the end of this year, they're going to be coming out with new mandates for mm-hmm. financial obligations jo brokerages ki taraf se hongi.
1: Okay.
2: That is going to solidify a lot of things
1: okay.
2: For these brokerages. But wahi hai. जिन्होंने गलतियां करी हुई हैं अब वो गलतियां अगर सामने आ रही हैं वो पकड़ी जा रही हैं, सो यू आर गोना सी अ लॉट मोर लाइक दिस। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन दैट यू नो सम ऑफ दीस ब्रोकर्स आर डिपिंग इनटू देयर ट्रस्ट फंड्स, बिकॉज जब तक आप नहीं पकड़े गए तब तक सब कुछ ठीक है।
1: The
2: day it happens, it shakes up the confidence of
1: that's
2: the industry,
1: right.
2: shakes up the confidence Bilkul. Of the buyers out there. That's why I said it's unfortunate,
1: mm-hmm.
2: right? We don't know the reasons,
1: yes.
2: but it is happening, and we have seen in the past few mm-hmm. of the other brokerages that has gone through this as well.
1: That's right.
2: So one thing that we have had as mm-hmm. a conversation within our brokerage, we have had conversation with our colleagues as well,
1: right.
2: like some of my really close friends who are realtors as well, and the clients that we have spoken mm-hmm. to. You have to know who you're working with at the end of the day.
1: Very important.
2: Again, on the face value, everything looks great,
1: mm-hmm.
2: right? Sab kuch theek hi hai.
1: That's right.
2: But do your due diligence, guys.
1: Mm-hmm.
2: See what the brokerage is, what they're doing, where the funds are going. Ask questions.
1: Mm-hmm.
2: You have to ask questions.
1: Yes.
2: Same thing when we do it. जब हम कोई प्रोजेक्ट लेकर आते हैं तो क्लाइंट्स पूछते हैं कि जो हमारा पैसा है वो बिल्डर अकाउंट में जाता है या लॉयर के ट्रस्ट अकाउंट में जाता है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट, और सबका हक बनता है अपने हार्ड एंड मनी के बारे में पूछने का कि ये जो मैं पैसा दे रहा हूँ ये कहाँ पर जा रहा है। और इनफैक्ट मोर देन एवर नाउ इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कॉशियस अबाउट वेयर द मनी इज गोइंग, how safe is the money.
2: Yeah, and again, you know, the way I see it, some of these situations that are happening, I know it's putting a damper on the industry, but I think wo clean up bhi ho raha hai. ठीक है ना, जो ये लेट्स से बैड एप्पल्स वर आउट देयर वो क्लीन अप हो रहे हैं, सो दे आर गोना बी, यू आर गोना सी अ लॉट ऑफ दीस गोइंग अवे फ्रॉम द बिजनेस व्हिच इज फाइन, देन यू आर वर्किंग विद द पीपल दैट आर एक्चुअली ऑनेस्ट एंड trustworthy.
1: Bilkul,
2: right?
1: Bilkul.
2: Because again, the whole industry relies on trust. Mm. So yes, things are happening, they're coming to the light. Like, but instead of taking it in a way that, oh, ye to har koi aisa karega, ya sab kuch hoga, that's not true.
1: Okay.
2: You have to be careful, obviously, because again, you know, it's that's what the whole business is about.
1: Yes.
2: But I think these steps are critical.
1: Mm-hmm.
2: Rico is doing the right thing.
1: Yes.
2: And one thing I would recommend everybody, aap Rico ki website pe jaye.
1: Acha.
2: Wahan pe public notices hain.
1: Okay.
2: This is made for public awareness.
1: Aur
2: Rico ki website hai rico.on.ca.
1: Okay.
2: So rico.on.ca पे जाके आप वहाँ पे उनके जो न्यूज बुलेटिन हैं रेगुलेटरी एक्शंस हैं यू कैन सर्च फॉर द एजेंट्स उनके नाम से आप सर्च कर सकते हैं ब्रोकरेजेस के नाम से आप सर्च कर सकते हैं उनके अगेंस्ट क्या कंडीशंस डाली गई हैं या एनी फाइन्स हैव बीन एम्प्लाइड ऑन दीज यू नो एजेंट्स और ब्रोकर्स डू योर ड्यू डिलिजेंस राइट एंड यू शुड बी गोइंग इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म रिको इज मेंट टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग दीज स्टेप्स अगर वो ब्रोकरेजेस को सस्पेंड करते हैं या अकाउंट फ्रीज करते हैं उनका एक लाइन होती है उसमें नोटिस में दिस इज इन पब्लिक इंटरेस्ट
1: दैट्स राइट
2: सो यू एज अ पब्लिक डू योर ड्यू डिलिजेंस विद योर इंटरेस्ट गो ऑन टू रिकोज वेबसाइट लुक फॉर दीज न्यूज लेटर्स न्यूज बुलेटिन्स लुक फॉर द ब्रोकरेज दैट यू आर गोना वर्क विद द एजेंट्स दैट यू आर गोना वर्क विद
1: दैट्स राइट
2: सी व्हाट देयर रजिस्ट्रेशन स्टेटस इज और सी व्हाट देयर माइट बी कंडीशंस ऑन देम और व्हाट फाइंस दे हैव हैड बिफोर Because kai baar ye hota hai, like people don't realize
1: That's
2: who
1: true.
2: You're working with.
1: Bilkul.
2: So it becomes very critical, guys. Mm-hmm. Again, I'm transparent, so I tell you exactly where to go look for it. Even go search for me.
1: Yeah.
2: Search for Raul Kashyap on it. Hashtag homes up jaake search karein, and then you'll see the history on it. So
1: Bilkul.
2: that's exactly what you need to do as a buyer, and the transparency has to be there. And that's what the Rico is doing. So
1: Wonderful.
2: I'm glad they're taking these steps.
1: Yes.
2: And hopefully, aane wale time mein thoda kam ho jayega. Because if somebody has even thought about it, they're not gonna be doing it anymore.
1: That's right.
2: It's a very strict position that Rico is taking, and I'm happy to see this happen.
1: Great. So, sare log ab careful ho jayenge aur bilkul professionally documentation aur iske saath pure jo record keeping hai us par bhi dhyan rakhenge sari brokerages pehle
2: and you have to dekho wo to basic hai na that's part of our bylaws that Rico has mandated on as brokerages we have to reconcile our accounts we have to make sure the funds that are there they're only for the purpose that's there
1: true.
2: Supposed to be there
1: bilkul.
2: And nothing else can be used for so yes again you have all the right as a buyer to ask questions where the funds are going how they're going to be used or not and again like I said before you start working with somebody go search on Rico's website
1: right
2: look at the person's history and that will tell you a lot
1: wonderful
2: yeah.
1: So rico.on.ca ye website hai aap zarur visit kijiyega aur wahan par jaakar aap search kar sakte hain kisi bhi brokerage ke bare mein aur rahul ji ka number 6479934844 6479934844 #homestrend kar raha hai har taraf aap jaakar zarur details dekh sakte hain to rahul ji ab baat karte hain latest प्रोजेक्ट्स के बारे में कौन कौन से ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जिनका लोग फायदा उठा सकते हैं
2: एब्सोल्युटली सो I'm very excited. I know it was a bit of a heavy news that we started with, but now we're going to make it more fun. And this is going to be, I think, another project that's going to sell out very soon. So ye jo project hai, iska launch hone wala hai mid-May.
1: Okay.
2: So just in the next couple of weeks.
1: Right.
2: The project is coming up in Vasaiga. So Vasaiga Beach mein aana hai. This is minutes from the Vasaiga Beach.
1: Wow.
2: So over here, we're bringing free whole townhomes. So these are two-story, traditional townhomes, freehold hai. And with the HST rebate, Shani ji, I would want you to take a guess. What price can be?
1: Mid-400s?
2: Yeah, right? That's amazing. That's absolutely right. $449,990.
1: Oh.
2: That's the pricing with the new HST rebate that you're going to be getting. These are freehold towns. And Vasaiga, we all know, like, you know, we go there for the summertime.
1: Wonderful.
2: My family,
1: spot.
2: We visit. Yeah.
1: Yeah.
2: So
1: sure.
2: We have seen Vasaiga grow as well. And there has been a few projects in the past.
1: That's right.
2: Similar kind of townhomes. Obviously, 2-3 years ago, when the projects were built, they were 6.5 lakh. Almost 7 lakh. Now,
1: here,
2: you have 4.5 lakh ki range. You have freehold, two-story. वसेगा में आने वाले हैं टाउन होम्स वेरी प्रोमिनेंट बिल्डर प्रीमाउंट होम्स हैं जो ये लेकर आने वाले हैं इनका प्रोजेक्ट का जो लॉन्च ऑफिशियल लॉन्च होगा दैट इज गोना बी ऑन द मे 20th हाउएवर वी हैव अर्ली एक्सेस एज ऑलवेज सो वी हैव अर्ली एक्सेस वी विल बी एबल टू गेट यू डिटेल्स सो गेट इन टच विद टीम #homes We are going to be extensively making sure our clients, our listeners, agar aap is project mein interested hain, lena chahte hain Vasega ke andar, then get in touch with our team right away. We will make sure you have early access before even the launch happens.
1: Kya baat hai.
2: So, again, guys, you don't want to miss out this opportunity. Freehold towns, you know, you're minutes from the beach, fantastic neighborhood, great developer, pricing, you can't miss it. Like mid 400s with HST rebate.
1: That's amazing.
2: So more details are on the way, guys. So get in touch with our team. And the number to call again, my direct line is 647-993-4844. And Shalini, next week, I'm going to bring another surprise. We're working on a very, very exclusive deal that's going to come in Toronto.
1: Okay.
2: So
1: interesting.
2: We have done outskirts for the last little while.
1: That's good.
2: We have done the Haltons, the Peel region. We're still doing it.
1: Yes. At Cambridge, London.
2: We've done Cambridge. We've done Niagara Falls. We've done Vasega as well now. But next week, I'm going to bring something in that's going to be an exclusive deal for Toronto. So hopefully by Monday, that's going to be all ironed out.
1: Wonderful.
2: And then we can make that announcement as well.
1: Yeah, baat hai. So, dosto, aap number to call or text ye note kar lijiye Rahul Kashyap ji ka 647-993-4844 और hashtag homes के broker of record है राहुल कश्यप जी और जितनी भी खबरें आ रही हैं real estate brokerages को लेकर agents को लेकर तो rico.on.ca या Canadian website है .ca last में लगाना होगा वहाँ पर जाकर आप सारी information ले सकते हैं तो राहुल जी before you go क्या plan है इस weekend का अगर हमारे listeners आकर आपसे मिलना चाहें तो कौन कौन से projects available रहेंगे sign up के लिए
2: जी absolutely so this weekend we're busy we're back in Scarborough same thing those amazing townhomes that we have starting from 454,000
1: amazing
2: we have a lot of you know appointments already booked for Saturday and Sunday so agar hamare listeners hain agar aap Scarborough mein dekh rahe hain move-in ready within anywhere between 30 days to 120 days. These are fantastically priced units. Aapko is pe HST rebate eligibility bhi milti hai. So you're essentially looking at, you know, low 400,000.
1: Oh, wow.
2: Right? For the pricing, that includes minimum two bedrooms, over 860 square feet.
1: Oh, nice.
2: One parking is included.
1: Kya baat hai?
2: Deposit. Flexible.
1: Oh wow.
2: Right? You can buy with as low as 5% down. But book it on a clear
1: that. Oh amazing. It, right? Kya baat hai? That's great.
2: And then if you're a first-time home buyer, obviously you are gonna take advantage of the GST, which is gonna happen for you right away. PST, obviously you have to wait to apply. We have discussed about the rebates, how they work.
1: Right.
2: At the end of the day, I think it's a fantastic you know, opportunity for people. So we have two-story towns there, which are the upper level with the rooftop access. So you have a patio on the rooftop. And then we have lower level units, which are single floor. So you will have the entire floor to yourself with a patio outside as well.
1: Oh,
2: so
1: beautiful.
2: Very, very nicely laid out. Now, one thing I do want to mention, these pricing guys, you're not going to find anywhere else because I'll tell you, the pricing of mid 400s for these brand new towns that comes with appliances, air conditioning, everything is included, one parking, minimum two bedrooms. The main thing you have to consider is, initially when this project was sold in the fall of 2020, the pricing was over 650,000 for these towns. Right? That's what the pricing was. Now you're looking at mid 400s, plus aapko uske upar HST rebate bhi le sakte hain.
1: More than 200,000 ka
2: it's a great opportunity to get into something like that. Even if you are first time home buyer, a regular buyer, or an investor. It's a very high rental yielding neighborhood. You're close to UFT, close to the highways, amenities are close by. There's, you know, middle schools around the corner. It's a very, very convenient location. So anybody that's considering staying within the East End, you don't want to go all the way to the Ajax, Oshawa's, Scarborough, we have it. We do have freehold towns in Oshawa as well.
1: Okay.
2: They're starting in the mid 500s. That's with the HST rebate. Freehold. Traditional. Again, there's a lot of products available. So, jo bhi hamare listeners and clients hain, if you guys are interested, make sure you get in touch with Team Hashtag Homes. Come in this weekend, Saturday or Sunday. We have showings booked. And we want to make sure we book the right unit for you. And again, these are moving ready. So, you'll come in, look at the unit that you want. And then see if that's the one you want to put an offer on.
1: That's wonderful, Rahul ji. So, move-in ready, chahiye aapko pre-construction mein kuch chahiye, resell mein kuch chahiye, city ke andar chahiye, city ke bahar chahiye. You are covered from all the different angles. Hashtag homes, aap search kijiyega. Rahul ji ka direct number 647-993-4844. Rahul ji, thank you so much for joining us today. Aur aap se bahut jaldi phir mulaqat hoti hai agle hafte.
2: Thank you so much, Shalini ji. And thank you to our listeners. Have a wonderful Friday and enjoy the weekend.
1: And happy Mother's Day to you.
2: Happy Mother's Day to everyone as well. Thank you.
1: Thank you so much. दोस्तों Mother's Day की बात रही तो एक बहुत ही amazing सा latest गाना है. This is not about moms, but I'm sure moms would love the song. तो enjoy करते हैं latest गाना Shaun Express मस्ती की रेलगाड़ी CMR FM 101.3. Stay tuned.
3: बॉलीवुड में रोजाना बदले जमाना. शॉन एक्सप्रेस पर ये रहा लेटेस्ट गाना.

0: ड्राइव विद जॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: You work hard.

0: सर्टिफाइड जनरल अकाउंटेंट राजीव मदान, टैक्स अकाउंटिंग के सभी पहलुओं पर पैनी नजर, फर्क आजमाने पे पता चलेगा। कॉल CGA राजीव मदान 905-362-2200,
1: 905-362-2200, 2970 Drew Road, Suite 214B,
0: Mississauga. CGA राजीव मदान, thoughts become things.
2: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ। ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स। संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232, 416-890-3232।
3: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
4: वेल दोस्तों, एक बार फिर से आपका वेलकम करती है शालिनी। और जैसा अभी बता रहे थे आपको यश विंडोज एंड डोर्स के बारे में, व्हाट एन अमेजिंग सिलेक्शन, व्हाट एन अमेजिंग सेट ऑफ सर्विसेज दे गिव यू। अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग, अपनी ही इंस्टॉलेशन होती है, चाहे बात हो वर्ल्ड क्लास विंडोज या बेस्ट ऑफ द बेस्ट डोर्स की। यश विंडोज एंड डोर्स हमेशा तैयार रहते हैं। और धर्म जी हमारे साथ जुड़े जा रहे हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। धर्म जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द शो।
5: थैंक यू वेरी मच, आपको और सारे श्रोताओं को झुककर नमस्कार करता हूँ।
4: नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया धर्म जी। और ये जो वीकेंड है, मदर्स डे वीकेंड है, और जैसा अभी हम बात भी कर रहे थे, मॉम को जो है सबसे ज़्यादा फैमिली के बाद पसंद होता है अपना घर, तो क्यों ना हम घर को ब्यूटिफाई किया जाए। और आप कुछ आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करें, किस तरीके के विंडोज़ और किस तरह के डोर्स हमें मिलते हैं यश विंडोज़ एंड डोर्स की तरफ से।
5: पहले सारी माताओं को मेरा मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। आपका आयु इतना अच्छा हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो, कुदरत को मैं प्रार्थना करता हूँ। यश विंडोज एंड डोर 2012 से विंडो डोर की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है
4: जी।
5: और अकेली ऐसी कंपनी है जो पूरे अक्रॉस ऑन्टारियो में जो विंडो डोर बनाती है, 34 इंस्टॉलर के साथ विंडो डोर इंस्टॉल कर दी अक्रॉस ऑन्टारियो।
4: अरे वाह, क्या बात है, वंडरफुल। और इसके अलावा अगर मैं क्वालिटी की बात करूं धर्म जी, तो आपने अपनी फैक्ट्री में भी मुझे एक पूरा राउंड दिया था और आपने क्वालिटी दिखाई थी, तो कैसी दूसरी जगह से मिलती हैं विंडोज़ और कैसी आपकी तरफ से मिलती हैं विंडोज़ एंड डोर्स, तो उस हवाले से ज़रूर बताएं।
5: पहले तो मैं सारे श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि ओंटारियो में 11,000 डीलर्स हैं।
4: ओह वाओ,
5: जिसमें 10,750 डीलर ऐसा बताते हैं कि हम सीधी फैक्ट्री है और सीधे फैक्ट्री से आपकी प्रोडक्ट आती है।
4: नाइस।
5: तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए ये होता है कि कोई डीलर जो डायरेक्टली वो खुद मैन्युफैक्चर करता ही नहीं है, वो तो ऐसे जगह से विंडो खरीदता है जहाँ से उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिले। उसको क्वालिटी से ज्यादातर 95% लेना देना कुछ नहीं है, उनको प्रॉफिट से लेना देना है।
4: सही बात है।
5: और यश विंडोज एंड डोर 2012 से एक ही जगह से, एक ही फोन नंबर से 14 साल में जिस पर जीरो लॉस उठते हैं, ऐसी कंपनी है जो विंडो डोर बनाती है। विंडो की प्रोफाइल की वारंटी 30 साल, ग्लास की वारंटी 30 इयर्स।
4: ओह वाओ।
5: और अकेली ऐसी कंपनी है ओंटारियो में जो ग्लास लोई 366 आपको बाय डिफॉल्ट दे रही है।
4: अरे वाह।
5: एनर्जी एफिशिएंट वैल्यू R27, और R27 का मतलब ये होता है कि 27 डिग्री विंटर में और प्लस 35 डिग्री समर में ये ग्लास प्रोटेक्ट करता है आपकी विंडो को।
4: क्या बात है, वाओ।
5: उसकी भी पूरी 30 साल की वारंटी है। तीसरी चीज, मल्टीपॉइंट लॉक सिस्टम, छोटा बच्चा भी और बड़े बूढ़े माँ बाप सीनियर भी इजीली खोल पाएंगे, बंद कर पाएंगे। उसकी वारंटी भी पूरी 30 साल की है विद लेबर।
4: अरे वाह, ब्यूटिफुल, 30 इयर्स वारंटी, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई धर्म जी। और एक्सेप्शनली गुड क्वालिटी के विंडोज़ एंड डोर्स आपको मिलते हैं दोस्तों यश विंडोज़ एंड डोर्स से। नंबर वंस अगेन 416-732-3600, 416-732-3600। एक बार आप धर्म जी से मिलेंगे तो कुछ ना कुछ नॉलेज एक्सपीरियंस गेन करके ही आएंगे और ब्यूटिफाई तो करेंगे ही आप अपने घर या अपने ऑफिस को। तो धर्म जी, हमारे अगर लिसनर आपके साथ बिजनेस अपना खोलना चाहें तो किस तरह की फ्रेंच

0: फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी है?
1: पहले तो अगर व्यापारी हो तो अभी रुको मत, विंडो डोर की फ्रेंचाइजी फर्स्ट टाइम किसी कंपनी का अटेम्प्ट है कि जो पार्टनर बनाना चाहते हैं, अपना अपने अपने फैमिली को बड़ा करना चाहते हैं तो आ जाइए अगर व्यापारी है तो। कल ये मौका छूट ना जाए क्योंकि वो टाउन छूट जाएगा और आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा।
0: सही बात, बिल्कुल।
1: तो अभी आप व्यापारी हो तो बहुत सारे टाउन खाली है, जो मैं आपको अभी बताना नहीं चाहता, तो बहुत सारे टाउन खाली है, तो अभी फोन करके इंटरव्यू एक फोन करके एक अपॉइंटमेंट बना के आ जाइए, सिट इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी कैन गो फ्रॉम देयर। और बड़े छोटे इन्वेस्टमेंट पे आप ये छोटा कन्वीनियंस स्टोर से भी कम इन्वेस्टमेंट पे ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है।
0: वेरी नाइस। तो यहाँ पर मैं नंबर फिर से अनाउंस कर दूँ धर्म जी, 416-732-3600 है नंबर, यश विंडोज एंड डोर्स का। आप लोग राइट अवे कॉल करें और धर्म जी के साथ अपॉइंटमेंट बनाएं, ताकि चाहे विंडोज एंड डोर्स आपको इंस्टॉल कराने हो या आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेनी हो। थैंक यू सो मच धर्म जी हमसे जुड़ने के लिए आज। दोस्तों आपसे मैंने पूछा था एक सवाल कि कौन सी एक ऐसी चीज है जो आप अपनी मॉम्स को नहीं कह पाए, कौन सी एक ऐसी चीज है जो आप अपनी मॉम को कहना चाहते हैं, डेफिनेटली हमारे साथ इन स्टूडियो बात कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। गुड आफ्टरनून, गो अहेड प्लीज। हेलो जी, और आई थिंक आप इस वक्त शो इंजॉय करें, यू आर ऑन होल्ड, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं डेफिनेटली आप कह सकते हैं। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, 2891 लास्ट फोर डिजिट्स, गो अहेड प्लीज।
2: हाय शालिनी, कैसी हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रेनू जी?
2: जी रेनू बोल रही हूँ।
0: नाइस टू हियर यू।
2: थैंक यू। आज मातृत्व दिवस के इस उपलक्ष्य में अथाह ज्ञान के भंडार की देवी तुल्य समस्त मातृशक्ति को रेणु लखानी का प्रणाम।
0: क्या बात,
2: माँ तो बस माँ है। हर एक कपड़े का टुकड़ा माँ का आंचल हो नहीं सकता।
0: क्या बात,
2: क्योंकि हम एक शब्द हैं तो वो शब्दों से परे पूरी भाषा है, बस एक जीवन है।
0: क्या बात,
2: क्योंकि माँ ही एक ऐसा दर्द का रिश्ता है शालिनी, जिसका जोड़ एक धरा पर कोई नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल, बिल्कुल, सही।
2: मेरी माँ के बराबर कोई नहीं है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं है। अतः माँ का महत्व शालिनी केवल एक निर्धारित दिवस पर आश्रित नहीं हो सकता, कदापि नहीं।
0: सही,
2: मैं तो बस प्यारी माँ के लिए अपनी कोमल भावनाएं आपके समक्ष व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्हें सुनकर शायद आपकी पलकों की कोर कहीं भीग जाए और शायद मैं आपके दिल की धरती पे संवेदनाओं को छूने में कामयाब हो जाऊं। मुझे तो मेरी माँ से सिर्फ यही कहना है कि जब माँ होती है तो उसके होने का एहसास नहीं होता माँ, और जब माँ नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
2: कुछ है मेरे पास माँ, सब कुछ है मेरे पास माँ, पर फिर भी ना जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है।
0: क्या बात है रेनू जी, और डेफिनेटली बहुत ही इमोशनल लाइंस हैं, एंड सबकी पलकें भीग गई हैं अपनी अपनी माँ को याद करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, आज के कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए, और अगले कॉलर से हम बहुत जल्दी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ मदर्स डे के बहुत अमेजिंग डील्स के साथ जुड़ने जा रहे हैं स्पेक्स एक्सप्रेस से राजन जी। राजन जी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया, गुड आफ्टरनून शालिनी जी, आप सुनाए कैसे जी?
0: गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच।
3: शालिनी जी मदर्स डे स्पेशल है, बहुत सारे हमारे कॉल्स आ रही हैं जी कि क्या क्या स्पेशल्स आपने लगाई हैं।
0: तो
3: दोस्तों बहुत बढ़िया बढ़िया डील चल रही हैं, खास करके मदर्स डे के ऊपर आप अपने मदर को कोई बढ़िया सा गिफ्ट देना चाहते हो तो आप अपनी पॉकेट के हिसाब से ब्रांडेड सनग्लासेस चूज कर सकते हो, क्योंकि हर ब्रांडेड ग्लासेस के ऊपर हमने बहुत बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट रखे हुए हैं। जैसे कि अगर किसी को गुची के या वर्साची के या फिर टिफनी के, टॉम फोर्ड के, ब्लेंसियागा के, प्राडा के सनग्लासेस अपने मदर को गिफ्ट करने हैं या अपने लिए लेना चाहते हो आप, तो दोस्तों ये सभी के सभी ब्रांडेड फ्रेम्स और सनग्लासेस फ्लैट 30% डिस्काउंट के ऊपर दिए जा रहे हैं। ऐसे ही शालिनी जी अरमानी के सनग्लासेस, माइकल कोर्स के सनग्लासेस, मार्क जेकब के सनग्लासेस, कोच के सनग्लासेस, केट स्पेड के सनग्लासेस, ये सभी के सभी सनग्लासेस फ्लैट 50% ऑफ दिए जा रहे हैं। और इससे भी बढ़िया डील, अगर किसी को चाहिए कि बहुत कम पैसों में बढ़िया सा मदर के लिए गिफ्ट आ जाए, तो दोस्तों आप कैल्विन क्लाइन के सनग्लासेस या टॉमी हिलफिगर के सनग्लासेस ले सकते हैं। ये $399 के हैं, आज आपको ये 75% ऑफ करके सिर्फ $99 में हम दे रहे हैं।
0: क्या बात है,
3: ये अमेजिंग अमेजिंग डील्स है जी। इसके अलावा जितने भी लोग आकर हमारे स्टोर के ऊपर कोई भी परचेज कर रहे हैं, मैं फिर रिपीट कर दूं, कोई भी परचेज कर रहे हो दोस्तों, अगर आपने प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस बनवाए हैं, चाहे 129 पैकेज है या फिर 258 का पैकेज है, आपको हर परचेज के साथ स्केचेस के पोलराइज्ड सन ग्लासेस एज अ गिफ्ट बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं।
0: क्या बात है, वाव।
3: सो मैं रिपीट कर दूं जी, हमारा वैल्यू पैकेज होता है $129 का, जिसमें हम आपको सिलेक्टेड ब्रांडेड फ्रेम देते हैं, साथ में सिंगल विजन लेंसेज, इसके साथ भी आपको स्केचेस के पोलराइज सनग्लासेस बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं जी इस वीकेंड के ऊपर, यानी कि आज फ्राइडे और कल सैटरडे को। और अगर आप प्रोग्रेसिव ग्लासेस लेना चाहते हैं तो SLR कंपनी के हाई डेफिनेशन डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेज हैं जी, और साथ में सिलेक्टेड ब्रांडेड फ्रेम, 300 का फ्रेम है जी, 300 के लेंसेज, 600 का पैकेज है शालिनी जी, और ये पैकेज सिर्फ $258 में दिया जा रहा है जी। ऑन टॉप ऑफ इट आप अपने ग्लासेस के ऊपर जितनी मर्जी कोटिंग ऐड कराएं, वो भी फ्लैट 50% ऑफ है। अगर कोई पर्सन दो पेयर बनवा रहा है तो पहले पे कोटिंग 50% ऑफ, दूसरे पे कोटिंग एब्सोल्युटली फ्री है। और सबसे बढ़िया बात, इसके साथ भी हम आपको स्केचेस के पोलराइज्ड ब्रांडेड सनग्लासेस बिल्कुल फ्री दे रहे हैं।
0: क्या बात है, वाओ।
3: तो ये अमेजिंग अमेजिंग डील, अगर हमारे लिसनर्स लेना चाहते हैं तो आप कॉल करके हमें अपना नाम लिखवा दें, 905-460-8888, 905-460-8888। अगर हमारे लिसनर्स आज और कल नहीं आ सकते और अगर उन्होंने अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया है जी, तो ये डील आप नेक्स्ट वीक में भी कभी भी आकर ले सकते हैं, बस आपने कॉल कर अपना नाम लिखवाना है। और जिन इंश्योरेंस के पास बेनिफिट्स हैं, बताते चलें कि मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज को हम डायरेक्ट बिल करते हैं, चाहे आपका आई एग्जाम हो, आपके प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस हो या फिर आपके प्रिस्क्रिप्शन सनग्लासेस। तो पहुंचना कहाँ पे है जी, स्पेक्स एक्सप्रेस के ऊपर, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन में, 410 एंड स्टील्स कह लें या कैनेडियन स्टील्स के इंटरसेक्शन है जी, वॉलमार्ट वाला प्लाजा। और नंबर एक बार फिर से 905-460-8888। और जाते जाते जी, जिन्होंने आई एग्जाम करवाना है, डॉक्टर हमारे पास आज शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे तक अवेलेबल हैं,
0: ठीक है।
3: और अगर आप आज नहीं आ सकते तो कल सुबह भी शालिनी जी हमारे पास डॉक्टर के स्पेशल अरेंजमेंट है जी, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आप वॉक इन भी कर सकते हैं, पर अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक करवाई है तो आपका टाइम बहुत सेव होगा, आपको वेट नहीं करनी पड़ेगी। तो अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए एक ही नंबर, 905-460-8888, 905-460-8888।
0: क्या बात है राजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नंबर फिर से बता दूं, 905-460-8888। स्पेक्स एक्सप्रेस पर जाएं, माँ के लिए तोहफा लाएं, अपने लिए तोहफा लाएं। राजन जी, हैप्पी मदर्स डे इन एडवांस टू यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।
3: थैंक यू जी, एंड सेम टू यू जी, थैंक यू,
0: थैंक यू। और वेल दोस्तों, चलते हैं शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी के अगले कॉलर की तरफ, हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं नेक्स्ट कॉलर ऑन एयर जी, वेलकम, गो अहेड प्लीज।
4: हेलो
0: जी,
4: हेलो जी,
0: जी
4: शकील बात कर रहा हूँ।
0: जी शकील जी, कैसे बताइए?
4: बस ठीक ठाक, बस एक चीज कहूंगा कि मैं जो अपनी माँ को ना कह सका, वो चली गई कि अभी न जाओ छोड़ के, कि अभी दिल भरा ले।
0: अरे वाह,
4: ये बस इतना ही काफी है उसके।
0: हाउ स्वीट, हाउ स्वीट शकील जी, बहुत ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, लास्ट 4 डिजिट्स 5692, गो अहेड प्लीज।
5: हेलो,
0: हाँ जी,
5: यस, हैप्पी मदर्स डे।
0: हैप्पी मदर्स डे टू यू एज वेल। कौन बात कर रहे
5: हैं? हुसैन साहब।
0: हुसैन जी, हुसैन जी क्या कहना चाहेंगे?
5: बहुत बहुत सबको मदर्स डे की मुबारकबाद पेश करते हैं, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है,
0: थैंक यू,
5: बेस्ट,
0: थैंक यू।
5: एंड लास्ट में एक लेडी जो कॉलर जो है ना, याद दिला दी हमारे मदर की।
0: क्या बात है, हाउ स्वीट, हाउ स्वीट।
5: हम हमारे जो मदर थी, जब हमारे पास पैसा नहीं था तो फैन अपना ओवन बना के हाथ से हमको पूरे चलाती थी
0: जी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। कहते हैं कि माँ के बग़ैर घर सिर्फ दीवारें लगता है, माँ के बग़ैर घर सिर्फ दीवारें लगता है, उसकी दुआओं से ही हर सपना संवरता है, जिसने ख़ुद तकलीफ़ सहकर हमें हंसना सिखाया, उस माँ के प्यार का कर्ज़ कभी चुकाया नहीं जाता। तो ये है मदर्स डे के ऊपर चंद लाइनें हमारी तरफ से, और आगे चलते हैं। हमारे साथ अगली मेहमान जुड़ने जा रही हैं। जब भी हम गाड़ी चलाते हैं दोस्तों, अपनी धुन में चलाते रहते हैं, म्यूज़िक सुनते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, कई बार फोकस होता है, कभी फोकस नहीं होता, कभी हमारी गलती होती है, कभी किसी और की गलती होती है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस हो जाते हैं, तो तब बात आती है, हमें अपने आप को ठीक करना होता है, फिज़िकली अपने आप को ठीक करना होता है, मेंटली, और हमें पैसा भी चाहिए होता है, आराम भी चाहिए होता है। तो एक्सीडेंट क्लेम्स की जब बात आती है तो एक ही नाम सामने आता है, अंजुम कुरैशी जी का, जिनकी मदद से आप पहुंचते हैं टॉप ऑफ द टॉप बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉयर्स तक। नंबर है 416-570-0157। हमारे साथ जुड़ेंगी अंजुम जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द शो।
6: बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने एक काम बहुत खराब किया, आपने शेर सुनाया, तो मुझे भी शेर सुनाना पड़ेगा, मुझसे रहा नहीं जाएगा।
0: मैंने बहुत अच्छा किया, मुझे पता है आप बड़ा अच्छा शेर सुनाती हैं, तो इरशाद प्लीज सुनाइए।
6: जब मैं नन्ही बच्ची थी, माँ से पूछा करती थी, क्या मैं सुंदर सी होंगी, क्या दुनिया मेरे हाथ में होगी। माँ धीरे धीरे कहती थी, जो होना है जान तो होगा, मुस्तकबिल पर किसका बस है, मुस्तकबिल किसने देखा है।
0: क्या बात।
6: अब मेरे नन्हे मुन्ने हैं जो मुझसे पूछा करते हैं, क्या वो सुंदर से होंगे, क्या दुनिया उनके हाथ में होगी। मैं धीरे धीरे कहती हूँ, जो होना है जान तो होगा, मुस्तकबिल पर किसका बस है, मुस्तकबिल किसने देखा है।
0: हाउ स्वीट।
6: माँ बनते हैं ना तो हमें पता चलता है कि माँ क्या चीज होती है।
0: सही बात।
6: और वाकई ये दिन जो है माँ को खुश करने के लिए एक बहुत खूबसूरत दिन है,
0: जिसके
6: हर दिन माँ के लिए जो है ना अपनी औलाद की तरफ जो ना एक ऐसा प्यार, एक ऐसा उमंटता हुआ समंदर होता है जो जिंदगी भर खत्म नहीं होता।
0: बिल्कुल।
6: और जब हम बात करते हैं कार एक्सीडेंट की, आपने पूरा मेरा मूड ही चेंज कर दिया। जब हम कार एक्सीडेंट की बात करते हैं,
0: वेरी ब्यूटीफुल जी,
6: जब हम कार एक्सीडेंट की बात करते हैं तो बस आपसे ये कहेंगे कि ये नंबर अपने पास संभाल के रखें, क्योंकि एक्सीडेंट हो जाना आपकी बस में नहीं होता, आप रोड पे होते हैं, कभी भी कुछ हो सकता है।
0: सही।
6: तो जब भी कभी जिंदगी में आपका कार एक्सीडेंट होता है, आपको कानूनी मदद की जरूरत पड़ती है, और एक लॉयर कानून को बेहतर तौर से जानता है, और वो न सिर्फ आपका हाथ पकड़ के चलता है, बल्कि आपके हक के खातिर इंश्योरेंस कंपनी से फाइट करना। और सबसे बड़ी बात यह कि जब भी कभी हम लॉयर का जिक्र करते हैं, हमें सबसे पहले चिंता ये होती है कि हम एक लॉयर की फीस कहाँ से देंगे।
0: सही बात।
6: तो आपको फीस भी नहीं पे करना, आपको सिर्फ आखिर में जाके फीस पे करना है, जब एक लॉयर आपके लिए केस आपको फाइनल करता है तो जाकर आपको फीस देनी है। तो इतनी सहूलतें हों और कानून का मामला हो तो जरूर एक लॉयर की सहायता लेनी चाहिए। 416-570-0157 किसी भी कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं तो हमें कॉल जरूर करें। और एक दफा फिर सबको हैप्पी मदर डे।
0: हैप्पी मदर्स डे टू यू एज वेल अंजुम जी। और बाहर से तो खूबसूरत हैं ही आप, और आपका बड़ा अच्छा पर्सनालिटी है, लेकिन अंदर से भी दिल की आप बड़ी खूबसूरत हैं, और इतनी प्यारी लफ्ज आपने इस्तेमाल किए। हैप्पी मदर्स डे टू यू एज वेल, हैप्पी मदर्स डे टू योर किड्स एंड रेस्ट ऑफ योर फैमिली, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।
6: थैंक यू जी, थैंक यू।
0: यू मोस्ट वेलकम। कहते हैं दोस्तों कि थक जाती है दुनिया के रिश्तों को निभाते निभाते, थक जाती है दुनिया के रिश्तों को निभाते निभाते, पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। माँ के कदमों में वो जन्नत होती है जहाँ हर दुआ बगैर मांगे कबूल होती है। तो एक बहुत प्यारा सा गाना मॉम्स को डेडिकेट करते हैं हम। शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी पर लता मंगेशकर की आवाज़ है, इंजॉय।

0: जी दोस्तों, मॉम को याद कर रहे हैं, मदर्स डे वीकेंड है। डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो। मॉम बच्ची, आपका कॉल मैंने मिस कर दिया, डेफिनेटली आई टॉक टू यू आफ्टर द शो। 416-569-7812, 416-569-7812। आप लोगों से एक सवाल पूछा था, आपका भरपूर सहयोग मिला आज के शो में भी, कि कौन सी एक वो चीज़ है जो अपनी मॉम से आप कहना चाहते हैं और कह नहीं पाते या कह नहीं पाए आप कभी। तो यही बात आपसे हमें सुननी थी। थैंक यू सो मच दोस्तों। और अब मदर्स डे का बहुत ही अमेजिंग तोहफा लेकर या तोहफे लेकर पवन मिड्डा जी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। पवन जी, वेलकम बैक।
1: पहले तो मैंने आपका शायद प्रोग्राम में क्वेश्चन नहीं सुना था, इधर बिजी हूँ, लेकिन मैं अपने इनपुट दे दूं, मैं भी एक आंसर दे दूं कि माँ से जो आपने क्या कुछ कह रहे हो
0: जी।
1: मुझे लगता है आई थिंक सभी माँ हमसे जैसे पूछती है ना, कि खास तौर पे जैसे जब हम जब बच्चे थे तो माँ के बहुत लाडले हैं।
0: सही बात।
1: मतलब जब बच्चे हैं, जब मैच्योरिटी में आ जाते हैं, मैं ये कहूँगा शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, अपने परिवार में अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तो हमने माँ से भी, तो जैसे माँ पूछती है ना तूने खाया कि नहीं खाया, माँ पूछती है ना कि तूने सोया कि नहीं सोया, तो हम भी माँ से जरूर पूछ लिया करें कि माँ तूने अच्छे से खाया कि नहीं खाया, तूने अपनी दवाई टाइम से ली कि नहीं ली, माँ तूने भी हमें मतलब नींद तुम्हें आई कि नहीं आई। तो आई थिंक मेरी इनपुट ये है कि वो माँ, आई थिंक माँ की लाइफ ही बढ़ जाती है।
0: अरे
1: वाह, माँ की लाइफ ही बढ़ जाती है माँ इतने से ही, क्योंकि मैंने कहा था जैसे भगवान को कहते हैं ना, वो जैसे एज ए हिंदू या एज ए मतलब हमारे कल्चर में जैसे तो कहते हैं अक्षत, मतलब थोड़े से चावल चढ़ाने से मतलब वो खुश हो जाते हैं। तो मतलब आप भगवान चावलों का भूखा थोड़ा ये वो एक भावना का भूखा है, इस तरह माँ भी आपकी वो भावना की भूखी है। अगर आप अपने माँ से पूछ लिया ना कि माँ तेरे को रात को नींद आई कि नहीं आई, तूने खाना खाया कि नहीं खाया, दवाई तूने की ली कि नहीं, तुम्हें क्या कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, वो माँ भी आई थिंक ये क्वेश्चन हमें जो आपने कहा कि माँ से नहीं कह पाते, बिजी हो पाते हैं, बिजी हो जाते हैं तो हमने नहीं कह पाते। हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ।
0: नहीं, आप बिल्कुल राइट हैं पवन जी, और बहुत अच्छी आपने बात कही है कि हम ऐसा समझ लेते हैं कि हमें ही बस माँ केयर करेगी, लेकिन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
1: हमारी ही माँ की ही ड्यूटी है। हम भी अगर ऐसा करना शुरू कर देंगे तो हमें लगेगा कि वाओ, हमारी जिंदगी में भी बहुत एक और ब्लेसिंग बढ़ती जाएंगी।
0: ब्यूटीफुल।
1: रही बात मदर्स डे पे, मैं आपसे सारी बहनों को माताओं से पूछ रहा हूँ कि आपका आप जो है ऐसे ही स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने बच्चों के ऐसे ही ब्लेसिंग, चाहे वो छोटी बहन है, उनके बच्चे भी छोटे बच्चे हैं, तो माँ तो हमेशा ही ब्लेसिंग करती है। और हम सभी आपको नॉट अवल मदर्स डे पे ही नमन करें। हमारे कल्चर में तो माँ और बाप तो कहते सुबह ही सुबह शाम दिन रात तो उनकी हम नमन करना चाहिए और करते भी हैं। वी आर प्राउड ऑफ अवर कल्चर। हमारी बच्चों पे भी हमारे मान है, चाहे हम इन वेस्टर्न कंट्रीज में आके भी हमने उसी कल्चर को संभाला हुआ है। तो हैट्स ऑफ टू यू एज टू लिसनर। सॉरी मैंने आपका टाइम ले लिया,
0: नो प्रॉब्लम पवन जी,
1: लेकिन मिड्डा फर्नीचर जो है आपके साथ है, आपके साथ हर खुशी में शामिल है। और रही बात डिस्काउंट की, तो मैंने पिछले लेक में भी कहा था कि ऐड ऐड ऐड हम रोज करते हैं, हर फ्राइडे सैटरडे करते हैं, तो इस बार तो आपकी रिस्पेक्ट है, जितने भी मेरी बहनें आएंगी, जितनी भी मेरी माताएं आएंगी, जितनी बड़ी बहनें आएंगी या छोटी बच्चियां आएंगी, जो सम्मान हो सकता है। और एक और सबसे बड़ी बात कहूँ, जो माइक के घर आके जो आपको मिल सकता है ना, जैसे जो हुजनी होती, जैसे शालिनी आप माइक के जाते हो तो कहते हैं वो आज तो मेरी मतलब कमाल है, भी अब तो मैं उठूं भी लेट तो भी चलता है, मर्जी का कुछ खाऊं तो भी मेरा चलता है। उस हुज से आए, उस मान से आए, हमारे स्टोर पे आए और कहें कि हमें इतना एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप मेरे को हर, आपको भी पता है कि एक मार्जिन 10-15% होता है, हमें अगर छोड़ना पड़ गया मार्जिन तो हम देर नहीं लगाएंगे। मिड्डा फर्नीचर 416-9012810, 416-9012810। थैंक यू वेरी मच जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी। हैप्पी मदर्स डे टू यू एज वेल, एंजॉय योर वीकेंड। 416-901-2810 middafurniture.com। दोस्तों, माँ एक ऐसा शब्द जिसमें पूरी दुनिया बसती है। जब हम छोटे थे तो उसी की उंगली पकड़कर चलना सीखा और बड़े होकर भी हर मुश्किल में सबसे पहले उसी का नाम याद आता है। माफ़ी चाहूँगी, एक लास्ट कॉलर काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे ज़रूर बात कर लें। अरफान जी, वेलकम। जी गो हैड प्लीज़।
2: अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा, पहली तो ये बात है ना कि माँ के लिए स्पेशल एक दिन मनाना, हर दिन हर रात,
0: सही बात,
2: हर पहल जो है ना वो माँ के लिए होता है।
0: क्या बात?
2: और माँ पेरेंट्स एक ऐसी चीज होती है कि जिनके सामने जो औलाद होती है वो लाइक एक रोबोट, कैसे वो उनको इस्तेमाल करें, यस नो उसके ऊपर अमल करना चाहिए।
0: बिल्कुल।
2: तो दूसरी तरफ मैंने ये अक्सर देखा है कि जितनी धूमधाम से ये मदर डे मनाते हैं, यहाँ पे ये हो गया गिफ्ट दिया वो, इतनी देर फादर को कोई इतना नहीं, इतना ज्यादा नहीं मनाया जाता। हालांकि फादर का जितना सेक्रीफाइस होता है अपने बच्चों के लिए अनबिलीवेबल होता है। और चाइना में क्या करते हैं कि चाइना में,
0: जी जी अरफान जी वक्त ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा, बट बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का। हम आपसे जरूर अगले हफ्ते फिर बात करेंगे। शो के बाद हमारा नंबर 416-569-7812, कोई भी आप एडवर्टाइज करना चाहें हमारे शो में अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के साथ, नंबर इज 416-569-7812। हैव अ वंडरफुल वीकेंड अहेड। माँ को डेडिकेटेड है आज का आखिरी गाना, माँ सिर्फ रिश्ता नहीं होती, वो हमारी पहली दोस्त, पहली टीचर, पहली दुनिया होती है। नमस्कार।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
3: जो हो आपके दिल के करीब,
2: जो मनाए आपके त्योहार,
3: रखे चुटकुले तैयार,
2: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
3: जहाँ मचे शायरी की धूम,
2: जो दे खबरें अप टू डेट
3: और दे ढेरों इनाम।
2: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
3: जतिन के संग
2: ऑन CMR 101.3 FM। ट्यून इन मंडे टू फ्राइडे और लॉग ऑन टू CMR.FM।
4: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.
5: हाँ जी बिंदर भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। बिंदर भाइयों, आज ये बंधु से करते हैं सवाल। बंधु ये बताओ, मोटरसाइकिल के कितने व्हील्स होते हैं?
6: कितना आसान सवाल, ऐसे सवाल होते तो मैं डॉक्टर बन जाता।
5: अरे सीधी बात है, बताओ मोटरसाइकिल के कितने व्हील्स होते हैं?
6: बहुत आसान जवाब है, 6 व्हील्स होते हैं।
5: गलत जवाब। मोटरसाइकिल के 6 व्हील्स कैसे हुए, समझाओ हमें।
6: देखिए, मोटर के 4 और साइकिल के 2, 4 + 2 6 हो गए ना।
5: हाँ जी मेरे भाइयों, ये वॉइस हम हैं आपके दोस्त जतीन। मुस्कुराते रहिएगा।

0: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसा कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसाज वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
1: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
2: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दाँत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
2: डॉक्टर नील गजर, 735 ट्वीन एवेन्यू, स्वीट 16, मिसिसागा। कॉल 289-401-0009।

0: earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: घर कहीं भी लेना हो

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
4: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
3: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
5: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
6: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस, कॉल करें 416-660-8545।
7: हाँ जी भाइयों, ये रेडियो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट पर। हैप्पी मदर्स डे सेल बिंद्र भाइयों, 0% इंटरेस्ट फाइनेंसिंग और फ्री गिफ्ट विथ एवरी परचेज। मदर्स डे सेल का जरूर फायदा लीजिए बिंद्र भाइयों। आपको पहुंचना होगा रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट 5200 डिक्सी रोड यूनिट नंबर 53 इन मिसिसागा। कॉल भी कर सकते हैं 647-854-7489 8547489। आइए सीधे चलते हैं हिमानी जी के पास। हिमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है, हैप्पी मदर्स डे, और प्लीज हमारे श्रोताओं को ये बेहतरीन प्रमोशंस बार के बारे में बताएं। ओवर टू हिमानी जी।
8: जी, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले रेडियो वॉइस के सभी लिसनर्स को और रेडियो वॉइस की पूरी टीम को रिच फर्नीचर की तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और हैप्पी मदर्स डे। सो मदर्स डे का स्पेशल ओकेजन है और इस वीकेंड पे, और लकीली ये वीकेंड पे ही आ गया, सो वीकेंड पे सबके पास टाइम होगा और सबने सेलिब्रेट भी करना होगा। आज कल प्लान्स होंगे, सबने अपनी मदर्स के लिए कुछ ना कुछ प्लान किया होगा मदर्स डे स्पेशल के पे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमने भी बहुत सारी डील्स ऐसी लेकर आए हैं हम भी जो मदर्स डे स्पेशल हैं, बेसिकली जिनमें आपके लिए, आपकी मदर्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आप अपनी मदर्स के को गिफ्ट कर सकते हैं या फिर अपने घर के लिए भी ले सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें जिसमें कि बेडरूम सेट्स, सोफा सेट्स, डाइनिंग टेबल्स, कॉफ़ी टेबल्स, बहुत ही स्पेशल डील्स लग चुकी हैं। और मैंने सिर्फ यही रिक्वेस्ट करनी है कि एक बार आप रिट्ज फर्नीचर पे विजिट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कल जब आप लंच डिनर के लिए निकलेंगे बाहर तो एक प्लान जो है वो रिट्ज फर्नीचर की विजिट का ज़रूर ऐड कीजिएगा। और उसके लिए आपने हमारा एड्रेस नोट करना है, विच इज़ रिट्ज फर्नीचर प्लानेट 5200 डिक्सी रोड मिसिसागा, 5200 डिक्सी रोड मिसिसागा यूनिट 53। और ये सारी डील्स को देखने के लिए आपने हमारा फ्लायर चेक करना है, जिसमें आपने करंट फ्लायर सेक्शन बिल्कुल मिस नहीं करना, और उसी में मिलेंगी आपको ये ढेर सारी अमेजिंग डील्स, और जिसमें बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे बेड फ्रेम्स भी लग चुके हैं, डाइनिंग टेबल्स, कॉफी टेबल्स, एक्सटेंड चेयर्स, बार स्टूल्स, हर एक चीज जो घर को चार चांद लगा देती है। कहते हैं ना कि वो औरतें ही घर को खूबसूरत बनाती हैं, तो फिर उसी औरत के लिए आज एक अच्छा सा गिफ्ट चूज करने के लिए रिच फर्नीचर पे आप जरूर आए। और वंस अगेन हमारी वेबसाइट प्लीज नोट कर लीजिए, ritzfurnitureplanet.ca, ritzfurnitureplanet.ca पे जाके आपने हमारा फ्लायर जरूर चेक करना है। एंड वंस अगेन 5200 डिक्सी रोड मिसिसागा यूनिट 53, फोन नंबर है 905-232-7489 पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारे सेल्स रेप से बात कर सकते हैं। और इसके साथ बाकी के फोन नंबर जो है वो आपको हमारे फ्लायर पे दिखेंगे, तो आप किसी भी नंबर पे कॉल करके हमारे सेल्स रेप से असिस्टेंस ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैप्पी मदर्स डे एंड मोस्ट वेलकम टू रिच फर्नीचर प्लानेट। थैंक यू सो मच।
9: रिट्स फर्नीचर का ये मैसेज जरा ध्यान

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi. High end da saman mile sasta.
2: हिमानी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेंद्र भाइयों, हैप्पी मदर्स डे सेल का जरूर फायदा लीजिएगा। 5200 डिक्सी रोड, यूनिट नंबर 53 इन मिसिसागा, 6478547489, 8547489। विजिट कीजिए वेबसाइट ritzfurnitureplanet.ca।
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
5: It's time to cast your vote. Voting is now open for the 2026 Top 25 Canadian Immigrant Awards presented by Western Union. We invite all Canadians to meet the shortlist of 75 finalists from across the country, read their profiles and vote for their three favorites. This is your chance to vote for someone who has become successful in their own right and has made a difference in their community. Don't forget to vote by June the 12th. For more information, visit canadianimmigrant.ca/top25.
2: Dr. Neil Gajjar Associates and Specialists, Family Dentists, caring for all your dental needs, accept कर रहे हैं patients जिनके पास CDCP यानी कि Canadian Dental Care Plan है। अगर आपने ये plan receive नहीं किया है और आप eligible है तो इस plan में enroll होने के लिए visit करें CDCP website। CDCP की website visit करके enroll हो जाइए और कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट का। बेंद्र भाइयों, आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले 905-564-2021, 905-564-2021। डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, आपके फैमिली डेंटिस्ट।
6: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Just specialized in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
7: Radio Voice, aapki pehli choice. 416-660-8545.
2: हाँ जी मित्र भाइयों, यू डू वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। मदर्स डे, दुनिया भर की हर माता को सलाम। मित्र भाइयों, जन्म होते ही खुद की वेदना को भूल, रोते बच्चे को गले लगाती है माँ। दिल की धड़कनों को सुनाकर अपनी खुद की मौजूदगी का एहसास दिलाती है माँ। नन्हे हाथों को थामकर बरसों तक खुद अपना ही अस्तित्व भूल जाती है माँ। देख हमको कभी किसी मुसीबत में, हर हद पार कर हमको संभालती है माँ। कितने भी कड़वे शब्द बोले हो हमने, खाना खा ले ये कहकर सब भूल जाती है माँ। रात देखना उसका भले हमें नहीं भाता, फिर भी रात भर राह तकती है माँ। दुनिया भर की थकान एक पल में मिट जाती, जादू वाले हाथ जब सर पर फेर देती है माँ। जिसकी गोद में सर रख जमाने के गम भूल जाते, ऐसा चैन ऐसा सुकून बस तू ही देती है माँ। आज वो तेरे आंचल की छांव याद आती है, जिसके तले तू जिंदगी की कड़ी धूप से बचाती थी माँ। तू नहीं मगर तेरा एहसास हमेशा साथ है, जिसकी खुशबू हमेशा जिंदगी महकाती है माँ। माँ तुझे सलाम, यह द वॉइस, हम है आपके दोस्त जतीन।

0: वक्त जो है वो बदल चुका था। रामाधीर ने उस गाने को नहीं पहचाना, पर वो रेडियो वॉइस को पहचान गया था। ये वो जमाना था जब लोग अपना ईमेल का पासवर्ड भूल जाया करते थे, पर रेडियो वॉइस सुनना नहीं। और उसके बाद रेडियो वॉइस पर जो एडवर्टाइजर्स का ताता शुरू हुआ, उससे पूरे FM रेडियो का समीकरण ही बदल गया। एडवर्टाइजिंग जो है उसके लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545।
1: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसा कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसाज वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
2: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, द विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर विजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम,
3: संजीव। शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है। इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232
4: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।
5: हाँ जी मित्र भाइयों, रेडियो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। आइए सीधे चलते हैं, जीत लो जिंदगी, हाँ जी विन लाइफ टाइम, रफी जी से करते हैं मुलाकात। रफी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: जी थैंक यू वेरी मच, गुड आफ्टरनून टू योर लिसनर्स।
5: रफी जी प्राइम टाइम शो है, इसलिए नए नए श्रोता भी हमारे साथ जुड़ते हैं। विन लाइफ टाइम की एक झलक पहले जरूर दीजिएगा
6: जी। विन लाइफ टाइम एक ऐसा ट्रेडिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो पिछले 18 साल से मिसिसागा में आपको एक ऐसी स्किल देता आया है जिससे आपको एटलीस्ट टुमारो आने वाले ये नहीं स्ट्रेस होगी कि मेरी इनकम कहाँ से आएगी। घर बैठ के 23 घंटे किसी भी वक्त थोड़े से टाइम के साथ बिना किसी इन्वेस्टमेंट के साथ आप एक ऐसा कारोबार कर सकते हैं, रोज के 100, 200, $300 आसानी से बन जाते हैं।
5: वंडरफुल महेंद्र भाई, और रफी जी ने कहा मिसिसागा में, आइए हम आपको उनका एड्रेस भी बता दे, 2601 मैथसन बुलेवर्ड ईस्ट, यूनिट नंबर 208 इन मिसिसागा। रफी जी धुरंधर है आप, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आप ट्रेनिंग जो लेना चाहता है सेमिनार अटेंड करने के बाद उन्हें 14 डेज फ्री रिस्क फ्री ट्रायल भी देते हैं, इसके बारे में जरूर बताएं।
6: जी एब्सोल्युटली, क्योंकि कुछ भी इन्वेस्टमेंट से पहले हम आपको सो कॉल्ड पेपर ट्रेडिंग करवाते हैं, उसमें एटलीस्ट ये आपको पता लग जाता है कि इस सिस्टम को चलाना कैसे है। फिर आपकी वीकेंड की क्लासेस होती हैं, उसके बाद आप इस लाइव एनवायरमेंट में आते हैं, तो पहले आप उसको हम उसको प्रोडक्ट का टेस्ट आपको जरूर देते हैं।
5: वंडरफुल, और कई स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो ग्रेजुएट कर रहे हैं या फिर मास्टर्स कर रहे हैं, वो भी सोचते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ क्या हम विन लाइफ टाइम में ट्रेनिंग लेकर पैसे सपोर्ट के लिए बना सकते हैं, आप क्या कहेंगे?
6: जी एब्सोल्युटली, आप सिंगल मदर्स हैं, न्यू इमिग्रेंट्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी ड्राइवर लाइसेंस भी नहीं है, वो भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो आप इस कारोबार को पार्ट टाइम स्टार्ट करें और इजीली आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, पूरी दुनिया में बैठ के कर सकते हैं, सिर्फ एक कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट चाहिए और कुछ भी नहीं।
5: और ये भी बताएं कि सेमिनार अटेंड करना क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ आपका कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस भी जरूर बताएं।
6: सेमिनार इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 5 मिनट के इंटरव्यू में हम आपको 5 आवर्स की तो इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकते, तो आप आए देखें सुने साथ बैठें जो रोज एवरीडे विन कर रहे हैं, हमारा पूरा सिस्टम जाने, हमें सारे क्वेश्चन पूछें, इसलिए टुमारो 1 PM का सेमिनार बहुत इम्पोर्टेंट है।
5: हाँ जी मित्र भाई, और आपको बता दे सपोर्ट आपको मिलता है 24 hours a day, 7 days a week। आप इस देश में रहे या दूसरे देश में, अगर यहाँ से ट्रेनिंग ले है तो रफी जी आपके साथ है, उनकी टीम आपके साथ है। रफी जी कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस जरूर बताएं।
6: जी आप सारी डिटेल ले सकते हैं winlifetime.com, 905-206-1008, 905-206-1008।
5: वंडरफुल, द बैनर भाइयों, विन लाइफ टाइम, जीत लो जिंदगी, 905-206-1008, सेमिनार जरूर अटेंड कीजिएगा। रफी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हैप्पी मदर्स डे टू यू।
7: थैंक यू जी, टेक केयर।

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
4: Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
5: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
4: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
6: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
7: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस, कॉल करें 416-660-8545।
8: हाँ जी मित्र भाइयों, अजीब दास्ता है ये बॉलीवुड की। बंदर भाइयों, अजीज मिर्जा द्वारा निर्देशित एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था चलते चलते। बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफल फिल्म थी ये। 11 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 43 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। फिल्म के गाने और शाहरुख खान, रानी मुखर्जी की केमिस्ट्री आज भी लोग याद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म में शेखर सुमन की आवाज ली गई थी। प्रमोशन के लिए शेखर सुमन की आवाज ली गई थी और एक बहुत ही अजीब दास्ता बनी। शाहरुख खान की फिल्म थी चलते चलते। शेखर सुमन ने बताया कि शाहरुख को फिल्म में कमेंट्री और टीजर के लिए एक प्रभावशाली आवाज की जरूरत थी। शाहरुख ने खुद शेखर सुमन को फोन किया और कहा, हाय, मैं शाहरुख खान बोल रहा हूँ, मुझे फिल्म के वॉइस ओवर के लिए तुम्हारी जरूरत है। शेखर सुमन, जो शाहरुख खान के अच्छे दोस्त रहे हैं, तुरंत ही तैयार हो गए। स्टूडियो जाकर रिकॉर्डिंग पूरी कर दी। रिकॉर्डिंग पूरी होते ही शाहरुख खान ने पेशेवर मर्यादा निभाते हुए शेखर सुमन को उनके काम के बदले एक बड़ा चेक भेजा। बंदर भाइयों, शेखर सुमन ने वो चेक ये कहते हुए वापस कर दिया कि ये दो दोस्तों के बीच का मामला है, मैं इसके लिए पैसे नहीं ले सकता। शेखर का मानना था कि दोस्ती में छोटे मोटे काम के लिए पैसे नहीं लेने चाहिए। लेकिन सामने किंग खान, शाहरुख खान थे,

फारूक खान समझ गए शेखर पैसा नहीं लेगा। दूसरे ही दिन शाहरुख खान ने एक बहुत ही महंगी घड़ी सौगात के तौर पर शेखर सुमन को भेज दी। है ना बहन और भाइयों, दिलदार किंग खान शेखर सुमन कहते हैं, वह एक खूबसूरत यादगार तोहफा आज भी मैंने संभाल कर रखा है। बॉलीवुड में ऐसा भी दोस्ताना देखा गया है, बॉलीवुड में ऐसे ही नेक कदम देखे गए हैं। बिंद्र भाइयों, चलते चलते ऐसी अजीब दास्तान सुनकर आप तक खूब तारीफ करते हैं, तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हिट वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस और हमें आपके दोस्त जतीन आइए रियल एस्टेट के धुरंधर प्रवीन अरोरा जी की ओर चलते हैं। मोर देन 20 ईयर्स इन द बिजनेस महेंद्र भाइयों, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या हो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, प्रवीण जी और उनकी टीम से एक बार बात और मुलाकात जरूर करना। 416-910-8923, 416-910-8923, teamarora.com है वेबसाइट, सीधे चलते हैं उन्हीं के पास। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में।
1: जतिन जी, मेरी तरफ से वॉइस के सभी लिसनर को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। जैसे कि एवरी वीक हम अपने लिसनर्स को नई प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी देते हैं और उसके साथ साथ उनको ये भी बताते हैं कि मार्केट का क्या अपडेट है। मार्केट में जतिन जी जो एक्टिविटी है वो ठीक हो रही है, हालांकि जो प्राइसेज हैं उसमें कोई बड़ी चेंज नहीं है, बट जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो जरूर इम्प्रूव हो रही है, नंबर ऑफ सेल्स हैं वो बढ़ रही हैं। तो इस वीक हम काफी अच्छी लिस्टिंग्स जतिन जी मार्केट में लेकर आए हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो हम हमारे जो अपने बायर्स हैं, जो खास करके फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगा कि एक प्रॉपर्टी हम लेकर आए हैं। ये जो प्रॉपर्टी है 21 सेंट यूजिन, ये एंड यूनिट टाउन हाउस है, फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है और जिस टील एंड मेवस के इंटरसेक्शन पे है। इसी के साथ एक प्रॉपर्टी हम लेकर आए हैं जिसका भी प्राइस पॉइंट फर्स्ट टाइम बायर्स वाला है। ये जो प्रॉपर्टी है ये है 15 रोज बड एवेन्यू और ये जो घर है डिटैच घर है और इसकी जो बेसमेंट फिनिश्ड है और ये हमने लगाया है जतिन जी सिर्फ और सिर्फ 799 का। अब बात करते हैं कि जो सेकंड टाइम बायर्स हैं उनके लिए हम एक लेकर आए हैं प्रॉपर्टी 46 ईस्ट मैन। ये जो प्रॉपर्टी है ये क्रेडिट वैली के एरिया में है। 46 ईस्ट मैन जो है ये जो प्रॉपर्टी है इसकी लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है, 3000 स्क्वेयर फीट का घर है ये जो है। इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी हम लेकर आए हैं, ये है 30 व्हीट बेरी। ये जो प्रॉपर्टी है सैंड्रिंगम के एरिया में है ब्रैम्पटन में, इसका भी बेसमेंट अपार्टमेंट लीगल बना हुआ है। ये जो प्रॉपर्टी है अराउंड 2700 स्क्वेयर फीट का घर है, फुली अपग्रेडेड, मतलब बहुत अच्छे इसके अंदर उन्होंने अपग्रेड किए हुए हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर और ये प्रॉपर्टी भी सेकेंड टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है। अब बात करते हैं जो ब्रह्म अपने क्रेडिट वैली का एरिया है, वहीं पे हम एक और प्रॉपर्टी लेकर आए हैं जो आज ही हमने सेल के ऊपर लगाई है, 12 मिड मॉर्निंग। ये जो घर है अराउंड 3600 स्क्वेयर फीट का है, इसकी भी लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है, रेंटल इनकम का पोटेंशियल है और ये जो सब डिविजन है वॉलमार्ट के बिल्कुल ऑपोजिट मिसिसागा रोड के ऊपर है, बहुत ही जैसे आप कह सकते हैं कि डिजायरेबल एरिया है। वहां पे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है 5 ब्लू सेलो। ये जो प्रॉपर्टी है इसकी भी बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है और ये प्रॉपर्टी जो है 5 ब्लू साइलो ये जो है ये अराउंड 3100 स्क्वेयर फीट का डिटैच घर है और ये जो है ये भी उसी सब डिविजन में है। अगर आप अराउंड 3100 स्क्वेयर फीट की प्रॉपर्टी देख रहे हो, अब अगर बात करते हैं कि अगर आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी देख रहे हो और कोई लग्जरी प्रॉपर्टी आप देख रहे हो तो उसके लिए हमने जी एक प्रॉपर्टी लगाई है हेरिटेज रोड के ऊपर। ये जो प्रॉपर्टी है इसका लॉट है 125/250। यहाँ पे आप इस घर की एक्सटेंशन कर सकते हैं, इसको और बढ़ा सकते हैं। ये प्रॉपर्टी जो है ये प्रॉपर्टी की खासियत क्या है कि जो इसका लॉट है और इसके साथ साथ अगर आप इसमें कोई एक्सटेंशन के बिना अगर आप कस्टम बिल्ट भी बनाना चाहते हैं वहां पे तो काफी अच्छी लोकेशन है ये वाली। और मिल्टन में एक हमने प्रॉपर्टी लगाई है, ये जो प्रॉपर्टी है जी 75486 लाइन के ऊपर, ये है अराउंड 6400 स्क्वेयर फीट का घर और ये जो है अराउंड एक एकड़ के करीब का लॉट है और ये जो कस्टम बिल्ट घर है आप जैसे कह सकते हैं कि अगर आप ये जो प्रॉपर्टीज हैं जतिन जी एक टाइम पे 8-8, 9-9 मिलियन की प्रॉपर्टीज थी और अब हमने लगाई है बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे 5.9 मिलियन की। और हम सभी प्रॉपर्टीज के ऊपर इस वीकेंड पे ओपन हाउस कर रहे हैं और इस वीकेंड के ऊपर हम मोर देन 40 के करीब ओपन हाउसेज कर रहे हैं। अगर हमारे कोई भी लिसनर हमारी किसी भी प्रॉपर्टी के ओपन हाउस पे आना चाहें हमें कॉल कर सकते हैं नंबर है हमारा 416-910-8923, या हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जी, teamarora.com। थैंक यू जतन जी।
0: वंडरफुल परवीन जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी। बहेंद्र भाई, अब बारी आपकी, कॉल कीजिए 416-910-8923, 910-8923, teamarora.com। जबरदस्त ओपन हाउसेस लगाए हैं, आप जरूर जाना। परवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ठीक है जतिन जी।
2: इट्स टाइम टू कास्ट योर वोट। वोटिंग इज नाउ ओपन फॉर द 2026 टॉप 25 कनेडियन इमिग्रेंट अवार्ड्स प्रेजेंटेड बाय वेस्टर्न यूनियन। We invite all Canadians to meet the shortlist of 75 finalists from across the country, read their profiles and vote for their three favorites. This is your chance to vote for someone who has become successful in their own right and has made a difference in their community. Don't forget to vote by June the 12th. For more information, visit canadianimmigrant.ca/top25.
0: हाँ जी मित्र भाइयों, लीजाज कॉस्मेटिक्स सेल, प्रेस्टीज ब्रांड नेम्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल हेयर केयर प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल नेल कलर एंड नेल केयर एंड मच मोर। जरूर पहुंचेगा 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम, 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम। लीजाज कॉस्मेटिक्स सेल, आपके लिए, सबके लिए, सब कुछ वहां पर। ये है रिड वॉइस।
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
5: अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
6: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 & 10 ब्रैम्पटन, टेलीफोन 905-799-9400।
7: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
8: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ। ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स। संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो, या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232, 416-890-3232।
9: प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन, इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर।
10: एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 416-660-8545।
11: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसा कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ, विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसाज वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
12: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50 7070 सेंट बार्बरा बुलेवार्ड मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5-10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12-3, डिनर 5-10, वेडनेसडे को बंद। मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं। कॉल करें 9057952299 या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरु लक्ष्मी, साउथ इंडिया के स्वाद का असली तड़का।
13: रिट्स फर्नीचर का मैसेज जरा ध्यान सुनो।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
3: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009
3: Dr. Neil Gajar, 735 Tween Avenue, Suite 16, Mississauga. Call 289-401-0009.
4: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते ओना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना इस च साथ देण के चिप्स चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा ऑयल चेंजेस ब्रेक चेक्स अते टायर बदलण लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होण वाला है तूफानी
5: प्रतिष्ठा परंपरा और अनुशासन इन तीन स्तंभों के अलावा रेडियो वॉइस खड़ा है अपने लिसनर्स और अपने एडवर्टाइजर्स के दम पर एडवर्टाइजिंग इंटरव्यूज टॉक शोज इन तीन स्तंभों के लिए आज ही कॉल करें 416-660-8545
6: हाँ जी महेंद्र भाइयों ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। आइए करते हैं जिंदगी की बात। महेंद्र भाइयों आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जिसे मौत ने अपॉइंटमेंट दी थी। राजा को सपना आया कि कल रात एक सांप उन्हें डस लेगा। क्यों? क्योंकि सांप को अपना पुराना हिसाब बराबर करना था। अब राजा परेशान, मौत सामने खड़ी थी। तब माहौल कुछ ऐसा था, बीते कल का बदला लेने काल का साया आएगा, नसीब की लकीरों को वो जहरीला डंक मिटाएगा। राजा खौफ में था कि कल की सुबह होगी या नहीं। राजा खौफ में था कि कल की सुबह होगी या नहीं। किस्मत का ये लिखा अब कौन बदल पाएगा। दरबारियों ने कहा, महाराज सांप को बिल से निकलते ही मार देते हैं, नो स्नेक नो टेंशन। पर राजा तो बड़े दिल वाला निकला। उन्होंने कहा, भाई कल मरना ही है तो नफरत लेकर क्यों मरूं? क्यों न जाते जाते इस दुनिया को थोड़ी और खुशबू दे जाऊं। राजा ने एक अनोखा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि तलवारें नहीं फूल सजाओ। और तब उन्होंने ये सोच अपनाई। नफरत को मिटाना है तो प्यार की बात करो, नफरत को मिटाना है तो प्यार की बात करो, कांटों भरी उस राह को फूलों की सौगात करो। तलवार से तो सिर्फ गर्दनें झुकती है मेरे दोस्त, तलवार से तो सिर्फ गर्दनें झुकती है मेरे दोस्त, दुश्मन को भी अपना बना ले ऐसी शुरुआत करो। और फिर क्या था, सांप के बिल से राजा के बिस्तर तक इत्र छिड़का गया, गुलाब के फूलों की कालीन बिछ गई और जगह जगह ठंडे दूध के कटोरे। रात को जब सांप रेंगता हुआ आया तो वो हैरान रह गया। उसे लगा मैं तो वॉर करने आया था, यहां तो वेलकम हो रहा है। जैसे जैसे सांप वो फूलों पर चलता गया, उसका जहर ममता में बदल गया और फिर वो करिश्मा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। जहर भी अमृत बन गया जब प्यार का दरिया बह निकला, बदला लेने आया जो वो कीमती तोहफा दे निकला। झुक गया वो जहरीला फन राजा की दरिया दिली देखकर, झुक गया वो जहरीला फन राजा की दरिया दिली देखकर, जो मौत देने आया था वो जान की दुआ दे निकला। हाँ जी मित्र भाइयों, सांप ने राजा को डसने के बजाय अपनी कीमती मणि उनके कदमों में रख दी। तो बेंदर भाइयों, आज का ज्ञान, आज की ये स्टोरी बस इतना सिखाती है, नफरत को नफरत से नहीं सिर्फ मोहब्बत से ही हराया जा सकता है। जिंदगी में हर पल अपनी मुश्किलों का स्वागत मुस्कुराहट के साथ करे, क्या पता वो आपको कोई खुशियों की मणि दे जाए, आपकी जिंदगी खुशियों से हरी भरी रहे, ऐसी हम दिल से प्रार्थना करते हैं। ये थी आज की जिंदगी की बात, यही डू वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

And here we meet again on the day जहाँ FIFA की तैयारी से related एक और major announcement आ गया है सामने। पूछो क्या? भाई टोरंटो अपना पूरी दिल से तैयारी में जुटा पड़ा है जिससे सब smoothly हो पाए during those events। अब देखो ना इतना बड़ा विश्व कप होगा हमारे शहर में, कितने तो tourists भी आए हुए होंगे different countries से। Traffic, transit वो सभी तो ठीक से होना चाहिए, है ना? तो तैयारी के अंतर्गत अब 600 से ज्यादा इवेंट एम्बेसडर्स होंगे जो विजिटर्स को शहर में ट्रांजिट एंड ऑल में ठीक से मदद भी करेंगे, कहाँ जाना है, कैसे जाना है एंड ऑल। सवाल हालांकि ये भी है कि उन्हें विजिटर्स पहचानेंगे कैसे। तो भाई एक खास ब्राइट रेड सॉकर जर्सी व टीम TTC 2026 लोगो तैयार कर ली गई है और साथ में उन्हें आईपैड भी दिए जाएंगे, तो ये एक पहचान होगी अगर कोई ऐसी जर्सी पहने दिखे विद आईपैड, समझो वो अपने एम्बेसडर हैं फॉर दिस, यू नो वॉलंटियर्स की तरह टू हेल्प। साथ में आईपैड्स में ना ट्रांसलेशन फीचर होगा क्योंकि अलग अलग देशों के विभिन्न भाषाओं के लोग होंगे और लैंग्वेज शुड नॉट बी अ कंस्ट्रेंट टू हेल्प, है ना? हाई ट्रैफिक एरियाज में वो पोजिशन होंगे और इस काम के लिए प्रॉपरली ट्रेन भी। बाकी सुपरवाइजर्स, स्पेशल कॉन्स्टेबल्स एंड ऑपरेटर्स तो रहेंगे ही, है ना? इस वीकेंड पर TTC का एक स्ट्रेस टेस्ट भी हो ही जाएगा, लाइक यू नो फुल स्केल ड्राई रन विद टोरंटो FC एंड इंटर मियामी मैच, और जो कमियां अब मिलेंगी उन पर वर्क कर लिया जाएगा टिल जून 12। सो ऑन दिस शोले का डायलॉग जहां वो कहते हैं कि बंदूक जेल में आ चुकी है, बोले तो तैयारी पूरी पूरी है वाली। नोट दिस इज स्वाति एंड पायस्विनी ऑन फिल्मी नुक्कड़ CMR 101.2 FM पर सेइंग कि अब आके आके देखो होता है क्या।

0: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
1: जी हाँ, लीजास कॉस्मेटिक्स की ये लास्ट वीकेंड है सेल का। मदर्स डे के लिए अगर आप गिफ्ट्स खरीदने का सोच रहे हैं तो इससे बेहतर मौका और इससे बेहतर जगह आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी ब्रांड्स आपको वहाँ मिलेंगी और गिफ्ट्स वहाँ पे इसलिए आपको बहुत अच्छी और अच्छी प्राइसिंग पे मिल जाएंगी। तो मम्मियों को तो यही चाहिए होता है ना कि हमारी अच्छी अच्छी सेविंग्स हो जाएं, हम उन पर फालतू खर्च ना करें पर उनको कुछ करें दे भी अच्छा सा। तो इसमें दोनों हाथों में लड्डू होंगे, आम के आम गुठलियों के दाम हो जाएंगे, मम्मी भी खुश हो जाएंगी और डबल खुश होंगी क्योंकि आपने उन पर खर्चा भी किया लेकिन पैसे बचाते हुए इंटेलिजेंटली स्मार्टली किया, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी सेल है। अप टू 80% तक का डिस्काउंट है, सारी ब्रांड्स मिलेंगी। जैसे मैंने कहा, लीजास कॉस्मेटिक सेल में बचत ही बचत होती है और ये गिफ्टिंग का मौका बिल्कुल ना छोड़ें। लीजास कॉस्मेटिक स्प्रिंग वेयरहाउस सेल पे आप जरूर जाएं। इस हफ्ते ये खत्म हो जाएगी, ये आपके लिए लास्ट चांस है। मई 10th को लास्ट मौका होगा इस सेल पे जाने का, आप मम्मियों के साथ वहीं चले जाएं, बेस्ट मौका। 125 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्केट में है ये, नेक्स्ट टू 404 407 एंड इट्स क्लोज टू 401। पहुंचते हैं वहाँ पे और मम्मी की भी दुआएं लें।

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com। इस बायर्स मार्केट में घर का प्राइस बहुत कम मिल रहा है और रियल्टर्स कमीशन भारी पड़ रहा है, क्या करूं?
1: स्मार्ट सेलिंग प्राइस बेशक मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन माय रियल्टो के सेलर एडवांटेज प्रोग्राम से आप खुद डिसाइड करते हैं सर्विस पैकेज और कमीशन भी।
0: यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों मेरे हाथ में।
1: बिल्कुल, लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 0.99%। मैं हूं संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड माय रियल्टो। कॉल मी फॉर अ फ्री मार्केट इवैल्यूएशन एट 4168437600।
0: Property, my choice, my real co, the real estate company, or visit myrealco.com. Not intended to solicit buyers and sellers already under contract.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
3: फायदा उठाए स्प्रिंग स्पेशल मॉर्गेज रेट्स एंड एक्स्ट्रा प्रमोशन का विद अमित खुराना। 5 ईयर्स फिक्स्ड 4.14%, 3 ईयर्स फिक्स्ड 4.19%, 5 ईयर्स वेरिएबल 3.55%, प्लस कैश बैक फ्रॉम बैंक एंड स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अमित खुराना अप टू $1,500। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कॉल अमित 6473412785, 6473412785 और विजिट amitkhurana.com।
4: At Wayne's Auto Group, आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव। चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप, हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम। हर जर्नी को बनाए खास। Wayne's Auto Group, हमेशा आपके साथ। Over 1400 डेडिकेटेड associates जो बोलते हैं आपकी लैंग्वेज। Offering 9 brands across 15 dealerships, from first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही विजिट करें waynesautogroup.com।
5: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑल स्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353। And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
6: Get on your feet with Peppy Nukkar Beats.

released Broadway's On. कौन सी वेब सीरीज शुड बी बिंज वॉच्ड? अगर है कंफ्यूजन तो ट्यून इन फॉर नुक्कड़'स वीकेंड वॉच। Right, weekend watch में first let's talk about Hindi theatrical releases over this weekend. चार हो रही हैं, पहले मैं दो के बारे में बात करती हूँ and then going forward फिर से दो के बारे में बात करूँगी. तो भाई एक है मैं एक्टर नहीं हूँ, टाइटल है फिल्म का मैं सच में नहीं हूँ पर, with brilliant performances by नवाजुद्दीन and चित्रगदा as main leads. बहुत तारीफ हो रही है दोनों की एक्टिंग की, खासकर चित्रगदा के लिए तो कह रहे हैं क्या मतलब टैलेंट है. कहानी है एक स्ट्रगलिंग मुंबई एक्टर की प्लेड बाय चित्रगदा, जो एक फ्रैंकफर्ट बेस्ड डिप्रेस्ड रिटायर्ड बैंकर से कनेक्ट होती हैं वर्चुअली एक्टिंग लेसन्स देने के लिए. वो सिखा रही हैं और नवाज फ्रैंकफर्ट में बैठे हुए वीडियो सेशंस के जरिए ऑनलाइन सीख रहे हैं, कल्चरल गैप्स भरे जा रहे हैं और पर्सनल स्ट्रगल्स शेयर हो रही हैं. बहुत ही इंटेंस कॉन्वर्सेशनल ड्रामा है, एक दिन की कहानी. रिव्यूज मोस्टली कह रहे हैं कि बहुत सॉलिड फिल्म है, बहुत अच्छी बनी है, आप इसे देखें. बट मुझे लग रहा है इट्स अ मैच्योर सिनेमा, नॉट फॉर एवरीवन, यू नो मासी नहीं है फॉर श्योर. तो सबके लिए आई गेस ये नहीं है. आपको थोड़ी आर्ट फिल्मी टाइप और क्लासिक पसंद है तो आप इसे ज़रूर देख सकते हैं. बाकी एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा रिलीज़ हो रहा है जिसके बारे में काफ़ी चर्चा है, उसका काफ़ी प्रमोशन भी हो रहा है. रिद्धिमा कपूर की डेब्यू फिल्म है, जो कि रणबीर कपूर की बहन है, ऋषि कपूर की बेटी है, कपूर खानदान की हैं. तो दादी की शादी फिल्म का टाइटल है, जहाँ पर दादी जो है वो नीतू कपूर बनी है, माई वन ऑफ माई वेरी फेवरेट्स. फिल्म में कपिल शर्मा इज़ ऑल्सो इन लीड रोल, वन ऑफ द लीड रोल्स. कॉमेडी फैमिली एंटरटेनर है, जहाँ पे एक बिंदास जिंदा दिल दादी हैं जो फिर से शादी करना चाहती हैं. अब फैमिली जो है वो शादी रोकना चाहती है, क्योंकि अगर ये शादी हो गई दादी की तो घर में जो पोती शादी के लिए तैयार खड़ी है और करने वाली है शादी, वो भी चुन चुकी है वर, उसमें मुश्किलें आ रही हैं. फिर तो दादी शिमला में रहती हैं, अकेली फैमिली दिल्ली में, और इसमें क्यूट सा सस्पेंस भी है, वो मैं नहीं बताऊंगी वरना आप मुझे मारोगे. बट इट्स अ फिल्म हल्की फुल्की सी, परिवारों को जोड़ती, सोसाइटल नॉर्म्स पर सवाल उठाती लाइट मैनर में, और सीनियर्स के अकेलेपन का मुद्दा उठाती. रिव्यूज अच्छे हैं इसके ओवरऑल, ये फिल्म देखी जा सकती है. इसमें गाने वाने भी हैं, यू नो प्रॉपर बॉलीवुड सिनेमा बट हल्का फुल्का. तो फिलहाल आपको मैं इस फिल्म का एक गाना सुना देती हूँ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. आपको और कौन सी दो थिएट्रिकल रिलीजेज हैं और कुछ ओटीटी, उनके बारे में भी वीकेंड वॉच में करते रहेंगे बराबर.

ये मदर्स डे, हो सकता है वैसा ना हो जैसा आप चाहते हो, हो सकता है जिनको ट्रिब्यूट देता ये दिन है वो आपके पास आपके साथ ही ना हो, हो सकता है उनके गले लग जाना, उनकी वो प्यार भरी डांट खाना, उनकी वो फिक्र भरी आवाज सुनना, उनके आंचल को महसूस कर पाना, उनकी गोद में सर रख पाना। कोई है यहाँ विद दैट अनकंडीशनल लव, ढेर सारा ये विश्वास हो पाना शायद अब संभव ना हो। आप दूर आ चुके हैं उनसे, वजह ये हो या वो ही बहुत दूर जा चुके हैं और वो माँ नाम से सेव नंबर अब सिर्फ नंबर बन के रह गया हो। हो सकता है ये मदर्स डे जैसा आप चाहते हैं वैसा ना हो, तो भी याद रखना कि उनकी दुआएं, उनकी फिक्र वो रहती है सदा, क्योंकि कोई आए कोई जाए आपके जीवन में, एक माँ ही तो है विद हर इररिप्लेसेबल प्रेजेंस एंड लव जो रहती हैं सदा, और इसीलिए बी ग्रेटफुल फॉर हर प्रेजेंस इन योर लाइफ, फिर चाहे वो दूर हो या पास। एंड रिमेंबर कि हर दिन इज मदर्स डे इन आवर लाइव्स, फिर चाहे वो दूर हो या पास।

0: you advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129. 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888. दैट्स 9054608888.
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
3: बिजनेस में ग्रोथ रुक गई है, हो सकता है आपका बिजनेस नेम या वास्तु सही सपोर्ट ना कर रहा हो। पन्ना शाह के साथ पाइए बिजनेस नेम करेक्शन, शॉप एंड ऑफिस वास्तु और बिजनेस ग्रोथ न्यूमरोलॉजी। सही नाम और सही दिशा दोनों बनाते हैं बिजनेस को स्ट्रॉन्ग। आज ही व्हाट्सएप करें 4376733125 और पाइए 10 मिनट की फ्री कंसल्टेंसी।
4: He's breaking through the midfield.
5: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज। विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी ले और हर एक के साथ पाए एक एक्स्ट्रा एंट्री। आज ड्राइव करें, कल जीते। Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
6: लीसा की याद नहीं आई तुझे जसी? जसी को छोड़िए, क्योंकि लीसा कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली।

movies released, Broadway's on. कौन सी वेब सीरीज शुड बी बिंज वॉच्ड? अगर है कंफ्यूजन तो ट्यून इन फॉर नुक्कड़'स वीकेंड वॉच। राइट, वीकेंड वॉच में फिर से आपका स्वागत है। दो फिल्मों के बारे में आपको बता चुकी हूँ, मैं एक्टर नहीं हूँ जो कि मैं नहीं हूँ, और साथ में दादी की शादी के बारे में। तो दोनों डिफरेंट जॉनर की फिल्म है, आप चूज कर सकते हैं, दोनों भी देखी जा सकती हैं। अब साथ में एक और थर्ड फिल्म के बारे में बताती हूँ कि जी, जो कि बहुत डिफरेंट है, और ये है डुक डुक। कॉमेडी सोशल सटायर है, इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ राजस्थान के जो बुलेट बाबा मंदिर है ना, उसकी कहानी समझ लें, वहाँ से इंस्पायर्ड है। वेयर एक ठाकुर एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, और जब वो गुजरते हैं उस वक्त एक्चुअली एक्सीडेंट में एक लूना मोपेड वो चला रहे थे। अब लूना पुलिस स्टेशन में खड़ी कर दी जाती है, पर कहानी वहाँ टर्न लेती है जब बार बार वो लूना अगले दिन वहीं खड़ी मिलती है जहाँ ठाकुर का एक्सीडेंट हुआ था। फिर चाहे उसे रोज कितना ही बेड़ियों से जंजीरों से बांध कर पुलिस स्टेशन पर रखा जाता है, वापस अगले दिन वो फिर वहीं मिलती है ऑन रोड। बस ये जो चमत्कार को नमस्कार होता है, फिर वो तो होना ही होता है ना। वहां से पैदा हुआ एक कल्ट, वहां बन गई ठाकुर की श्राइन, और मोपेट की होने लगी पूजा। सो बेसिकली अंधविश्वास, बर्थ ऑफ ए कल्ट, अपॉर्चुनिज्म, कमर्शलाइजेशन, इन सब पर एक कटाक्ष है। अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी और निखिल अडवाणी जैसे यू नो दिग्गज, उन्होंने इसका को प्रोडक्शन किया है। वर्ल्ड प्रीमियर इसका वैसे 2021 में हुआ था, काफ़ी पहले टिफ में, उसके बाद कई और फेस्टिवल्स में दिखाई गई, रिलीज अब हो रही है। प्लॉट बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे ख्याल से मज़ेदार होगा इसको देखना। इसके अलावा एक और रिलीज हो रही है, अब ये बिल्कुल अलग जॉनर है, तो चारों मैं देख रही हूँ अलग अलग जॉनर की हैं इस बार। कृष्ण अवतारम पार्ट वन है, हृदयम, डब्ड है ये हिंदी में। अब कृष्णा का जो द्वारका से कुरुक्षेत्र तक का सफ़र है, एपिक डिवोशनल जर्नी, उसके बारे में है, लोगों से उनका कनेक्शन, टाइमलेस विजडम, ऑल इन ऑल गीता का ज्ञान ऑफ लव, ड्यूटी एंड लाइफ। मतलब एक कहानी में आपको बहुत सारी कहानियां मिलेगी, जगन्नाथ टेम्पल, सत्यभामा, रुक्मिणी एंड ऑफकोर्स महाभारत की कहानियां। इसको अच्छे स्टार्स मिले हैं, 3.5 और सो, और मुझे लगता है ये देखी जानी चाहिए। ये भी नहीं जानते ज्यादा तो भी जानते हैं तो भी।

0: ऑलराइट, वीकेंड है भाई और इसमें हमारे बहुत सारे प्लान्स होते हैं, ये तो हम सबको पता है। यहाँ पे तो प्लान्स के बिना वीकेंड पूरा ही नहीं लगता। बट एक चीज़ और है कि ये तो टेम्परेरी प्लान्स होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अभी कहाँ जाना है और अभी कहाँ नहीं जाना है। लेकिन एक चीज़ का प्लान हमारी लाइफ में बहुत परमानेंट तरीके से होना चाहिए, वो है सॉलिड करियर प्लान। और उसमें अगर जो गचका खा जाते हैं ना, तो हमें बहुत परेशानी होती है। बस उसी में मदद करता है रूहानी कॉलेज हमारी। एक सॉलिड करियर प्लान पाथ हमें मिल सकता है अगर हम उनके कोर्सेज ज्वाइन करते हैं। पूछो कैसे? उन्हीं से डायरेक्ट पूछ लेते हैं। बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, और सिर्फ कोर्सेज अच्छे नहीं है, वो अच्छी तरह कराते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है बात। और साथ में वो कोर्स करते ही जो हमारे करियर सेट हो जाता है, जो हमारी कमाई शुरू हो जाती है, जो एक फ्यूचर बेस बन जाता है, जो फैमिली सेटल हो जाती है, उसके तो कहने ही क्या। तो क्या होते हैं कोर्सेज, कैसे कराते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। ओम जी वेलकम।
1: थैंक यू स्वाति जी। एक्चुअली बिल्कुल सही बोला आपने कि जो एक साल का एक टाइम होता है, बहुत ही बड़ा टाइम नहीं होता, जस्ट ओनली 1 ईयर, इसके अंदर पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। जो कभी शायद कभी सोचा भी ना हो कि 10 to 15,000 डॉलर पर मंथ की जो इनकम है, दैट्स रियली ह्यूज अमाउंट। और वो भी अपनी मर्जी के हिसाब से जॉब करना, कोई आपका बॉस नहीं है, यू आर द योर ओन बॉस। तो एक जो इसकी क्वालिफिकेशन भी, जो RMT ट्रेडिशनल मसाज थेरेपिस्ट की बात कर रहे हैं रूहानी कॉलेज से, तो इसकी देखो जस्ट 1 ईयर में कोई भी कर सकता है, जस्ट नीड 12th ग्रेड। और 12th ग्रेड में वो भी कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर मेडिकल से ही होना चाहिए, मे बी उन्होंने आर्ट्स में किया हो, कॉमर्स में किया हो, और कोई भी IT का जॉब कर रहे हैं या और कुछ भी कर रहे हैं, वट एवर, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, बैकग्राउंड है या नहीं है। और जस्ट इन 1 ईयर नॉट ओनली की RMT, आफ्टर RMT देर इज अ लॉट ऑफ वेज, लाइक पूरा पूरा एक डायरेक्शन मिल जाता है करियर का। यू कैन डू द एक्यूपंचर, यू कैन डू द ऑस्टियोपैथ, वो सब कुछ हमारे पास में है, एंड यू कैन ओपन योर बिजनेस। तो एक कंप्लीट टेक्निकल लाइफ की सेटलमेंट हो जाती है। जी,
0: तो इसमें आप अक्सर मेंशन करते हैं कि एक साल के अंदर अंदर जब आप RMT या कोई भी कोर्स करके तैयार होते हैं, या बाकी कोर्स में हो सकता है थोड़ा और समय लगता हो, लेकिन उसके बाद आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, आप अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं, जॉब भी लग सकती है। तो मंथली कितनी इनकम बन सकती है?
1: देखिए इनकम यहाँ पे काफी अच्छी है। जो अगर नॉर्मल भी कर रहे हैं तो 12 से 12 to 15,000 डॉलर ये तो होती है। क्योंकि ये मैं इसलिए बोलता हूँ, इतना ज्यादा लोग बोलते हैं कि इतना ज्यादा कैसे हो सकता है, मैं इसलिए ही बोलता हूँ कि भाई मैंने 8-9 सालों से अपने क्लिनिक में पे किया है, इसलिए बोलता हूँ, और अभी भी पे कर रहा हूँ इसलिए बोलता हूँ। तो जो फुल टाइम काम करते हैं, कोई भी RMT अगर सुन रहा है और जिसका क्लिनिक हो, वो भी जानता है कि देर इज अ लॉट ऑफ मनी। सो नॉट कि ओनली आपके पास एक इनकम ये होती है, पर बिल्कुल आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता, आप आपका खुद का स्केड्यूल दे सकते हैं कि आज मुझे काम करना है, मॉर्निंग करना, इवनिंग करना, मतलब आप बिल्कुल एक लाइफ एंजॉय करोगे। जी,
0: और मेरे ख्याल से कई बार जब घर में बच्चे होते हैं तो बहुत इस चीज़ में सहूलियत हो जाती है, चाहे वो आप घर में मदर हैं या फादर हैं, कि अगर जो आपका अपना काम होता है, क्लिनिक अपनी होती है, तो उसमें और हेल्प हो जाती है। अपने फ्लेक्सिबल आवर्स जब होते हैं तो आप घर भी देख पाते हैं इजीली, तो ये बड़ी ड्यूअल ब्लेसिंग हो जाती है।
1: जी, लेकिन चौधरी एक चीज और भी इसमें,
0: जी
1: बहुत सारे जो RMT हमारे कॉलेज से जो पास आउट हुए हैं, तो कई ने क्लिनिक ज्वाइन कर लिए, कई ने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिए, कईयों ने घर से अपना काम स्टार्ट कर लिया, किसी ने बेसमेंट से कर लिया, कहीं ना कहीं से। तो वो बिल्कुल मतलब ऐसा कि बच्चे भी हैं, उनकी भी टेक केयर हो रही है, घर पे भी आप हो, ट्रेवलिंग में टाइम भी बच रहा है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपको कन्वीनियंट हो जाती हैं, और एक आप
0: राइट,
1: लाइफ को बेसिकली इंजॉय कर सकते हो।
0: बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा मुझे एक बात और बताएं कि जिनका ऑलरेडी एक काम है, वो स्विच करने का सोच रहे हैं अपना करियर, तो वो ये कोर्स कैसे कर सकते हैं? बहुत ज्यादा कंबरसम नहीं हो जाएगा, एकदम टू मच हैवी फॉर समवन?
1: नहीं, देखिए हमने इस तरीके से इसको फ्लेक्सिबल रखा हुआ कि हमारे जो क्लासेज है मॉर्निंग 8 o'clock से चालू होता है और रात के 12 बजे तक चलते हैं, अलग अलग बैचेज हैं, तो कोई भी बैच एक तो ज्वाइन कर सकते अपने जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग। और प्लस में हाइब्रिड, हाइब्रिड मीन्स कि 4 से 5 दिन आपको ऑनलाइन ही होंगे, जस्ट 1 डे इन द बिगिनिंग आपको आना पड़ेगा, बाद में ऑफकोर्स थोड़ा ज्यादा होता है, बट वो आपको पूरी तरीके से तैयारी करवाई जाती है। और मान लो किसी दिन कोई क्लास मिस होगी आपसे, जो भी टाइम आपकी बैच है, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी पूरी हमारी पोर्टल पर होती है। आप उसको रात को चाहे 10 बजे 12 बजे जब भी आप कभी भी लॉग इन करके उसको देख सकते हैं। टीचर्स हमारे ग्रुप में होते हैं, उनके व्हाट्सएप पे या फोन पे जो भी कहीं कष्टक होते हैं उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। पूरा कॉलेज यहाँ पे तो हर बंदा यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। जी जी
0: इंटरेस्टिंग। और जाते जाते आप प्लीज़ एक ये बात ज़रूर बताते हुए जाएं, एक प्री मैच का कोर्स आपका बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मुझे पता है बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं और बच्चे भी कई बार कि वो डॉक्टर बने, और इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है, इतने साल लग जाते हैं। रूहानी कॉलेज में कम से कम कुछ साल भी बचते हैं और गारंटी डॉक्टर बन के तैयार होते हैं, तो उसके लिए छोटा सा आप ज़रूर बताएं हमारे सुनने वालों को।
1: कुछ साल बोले तो 4 साल बचते हैं, 4 साल क्योंकि डॉक्टर कोई सोचता है तो थिंक सो इट्स 10 to 12 years इतना लंबा टाइम, बहुत बच्चे फिर इससे पीछे हट जाते हैं। बट हमने फिर आफ्टर ग्रेजुएशन जस्ट 1 year का कोर्स है और फिर डायरेक्ट और ग्रांटेड एडमिशन, कोई आपको इंटरव्यू के नहीं जाना, एमकैट नहीं देना और डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा। पहले तो था कि चलो कैरेबियंस वगैरह में था हमारा, लेकिन अभी हमारा US के अंदर, अमेरिका के अंदर इनलैंड वहाँ भी यूनिवर्सिटी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो आप वहाँ भी जाके सीधा अपने प्रीमेड कोर्स के बाद में सीधा आप गारंटी एडमिशन के साथ में वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं। जी
0: चलें, तो यहाँ पे हमने देखा कि कैरिबियन में अगर आपको इतनी दूर नहीं भेजना, US में कुछ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट है रूहानी कॉलेज का, जहाँ पे बच्चों के 4 साल बच सकते हैं और साथ में सिर्फ 4 साल नहीं बचेंगे, गारंटी होगी कि डॉक्टर बन के वो निकलेंगे। डिटेल्स के लिए, चाहे आपको अपने लिए कुछ कोर्स करना है या अपने बच्चों के लिए प्री मैट का पता करना है, डिटेल्स के लिए आप रूहानी कॉलेज कॉल करके पूछ सकते हैं। अपॉइंटमेंट लें, समझें डिटेल्स और फिर ही डिसीजन लें। 905-731-2555, 905-731-2555, और यू कैन विजिट ruhanicollege.com एज वेल, आपको वहाँ डिटेल्स और मिल जाएंगी। थैंक यू ओम जी, फिर करते हैं अगले हफ्ते आपसे बात। गुड लक।
1: थैंक यू जी।
0: थैंक यू जी।

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042, विजिट filminukkad.com।
1: ले

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: लीसा की याद नहीं आई तुझे जसी? जसी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसाज वेयरहाउस सेल पर। विजिट लीसाजकॉस्मेटिक्स.com।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
4: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन, टेलीफोन 905-799-9400।
5: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
6: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
7: नटवर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।
8: मगर क्यों? पिताजी नहीं माने क्या?
7: वो बात नहीं है, हम जब भी घूमने जाते हैं तुम पता नहीं कौन सा रेडियो चलाते हो। ना वो गाने बजाते हैं, ना तुम अच्छा गाते हो।
8: तो आप क्या गाना भी सीखना होगा?
0: हाँ, सिर्फ CMR at 5 PM पर ट्यून इन रहना होगा। रेडियो CMR at 5 PM, your evening musical drive.

Well, that was from Ishq Vishq Pyar Vyar. Film काफी साल पहले आज ही के दिन रिलीज हुई थी. पसंद भी आई थी ऑफ कोर्स लोगों को, मुझे तो बहुत आई थी. गाने बहुत अच्छे लगे थे इसके मुझे, और तभी तो मेरे ख्याल से चली भी अच्छी खासी थी. सीक्वल भी बना उसी की वजह से विद न्यूअर जनरेशन. अब वो बात और है कि उनका इश्क विश्क प्यार व्यार लोगों को हजम नहीं हुआ. रीबाउंड वाले की बात कर रही हूँ, क्योंकि उनकी जनरेशन वाले लोगों ने भी देखो ना रिजेक्ट ही कर दी फिल्म. मतलब ऐसा नहीं है कि जनरेशन गैप एंड ऑल, किसी भी जनरेशन में पसंद नहीं किया फिल्म को. एक्चुअली मुझे लगता है ये जो सिचुएशनशिप होती है ना, इसका जो फंडा होता है, ये एग्जिस्ट करता भी हो जाए, पर एक्चुअली समझ से उनके भी परे है जिनकी जनरेशन में सो कॉल्ड ये चलता है ना. इस फिल्म, अगर जो मैं ओरिजिनल वाले की बात करूं, इसने ज़रूर ओरिजिनल वाले में अच्छे अच्छे से कलाकार दिए इंडस्ट्री को. अमृता राव थी, प्यारी सी लगती हैं आज भी. शाहिद कपूर थे, डायनामिक. कहते हैं जब फिल्म रिलीज हो रही थी ना, उस वक्त पूरी टीम लिबर्टी सिनेमा हॉल गई खुद मिलके, क्योंकि उन्हें ऑडियंस का लाइव रिएक्शन देना देखना था डायरेक्टली कि क्या होता है हम देखते हैं. किसी ने लेकिन तब तक इंटरवल तक शाहिद को कुछ खास नोटिस नहीं किया था. एंड इट्स लाइक कि ठीक है, ये भी एक बंदा है, फिल्म देखने आया है. पर इंटरवल होते ही, मतलब खत्म होते ही, कहते हैं ही वॉज मॉब्ड. एस्टेब्लिशिंग वन फैक्ट कि जनता को फिल्म देखते देखते आधी फिल्म में ही उनसे इश्क विश्क प्यार व्यार हो गया है, और जिसका हैंगओवर लंबा चल सकता है यार, है ना. पर कहते हैं ना कि समय से पहले किसको कहाँ कुछ मिलता है, तो इनकी भी फिल्में उसके बाद आती तो रहीं पर ठीक ठाक सी चली, कुछ फ्लॉप भी हुई, नन वॉज विद एनी बिग मैजिक, यू नो. बट मुझे ऐसा भी लगता है कि शाहिद को उनका ड्यू जो है एक्टिंग वाला, वो काफ़ी लेट मिला. जब जब भी मैट आई, विवाह आई, हैदर आई, उड़ता पंजाब आई, एंड दैट कबीर सिंह थासू एक्टिंग है ना.

ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं। अब ऐसे में सोचिए, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से 500 डॉलर्स की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू 2029 डॉलर्स, तो कितना अच्छा हो, है ना? यानी कि रेट्स भी सही मिल जाएं, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353

0: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस. लीज और फाइनेंस ब्यूटीफुली डिजाइंड 2026 G70 फ्रॉम ओनली 2.9% और फाइनेंस 2026 GV70 फ्रॉम ओनली 3.9%. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट मार्केम. वी स्पीक योर लैंग्वेज. Genesis Markham, डूइंग लग्जरी योर वे. अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप.
1: ऑल राइट, फिलहाल आपको लेके चलते हैं स्पेक्स एक्सप्रेस पे. इनकी डिटेल्स भी आपको जरूर ऐड के जरिए मैं सुनवाऊंगी फिर से. बट फिलहाल इस मदर्स डे पर क्या क्या हो रहा है खास यहाँ पर, उसकी जानकारी मिलनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मदर्स डे पे गिफ्ट्स हम सभी को चाहिए होते हैं हमारी मम्मियों के लिए. और वो गिफ्ट्स अगर हों ऐसी जिनसे उनको देखने में और मज़ा आने लगे दुनिया को, है ना, और रंगीन हो जाए या टशन उनका अच्छा हो जाए, ऐसे ऐसे गॉगल्स हों बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स के. प्लस मम्मियाँ हमेशा चाहती हैं कि हम सेविंग्स करें, हम कोई भी चीज़ एकदम महंगी ना खरीदें. और अगर यही ब्रांडेड आइटम्स, अच्छी अच्छी ब्रांड्स के चश्मे, गॉगल्स, आप उन्हें बहुत सस्ता खरीद के गिफ्ट करते हैं एकदम फ्लैट डिस्काउंट्स पे, तो वो आपके और कितना नज़र उतारेंगे. अरे वाह, कितना समझदार हो गया मेरा बच्चा. तो ऐसे मौके हाथ से ना जाने दें. स्पेक्स एक्सप्रेस पर मदर्स डे पे बहुत कुछ स्पेशल है इस बार. मम्मी साथ आपके हैं या नहीं है, आप मदर्स डे के नाम का वहाँ से बहुत अच्छी डील्स पे सामान ले सकते हैं. क्या क्या, कैसे कैसे, वो डिटेल्स हम उन्हीं से पूछते हैं. वेलकम राजन सर.
2: थैंक यू सो मच स्वाति जी और फिल्मी नुक्कड़ के सभी लिसनर्स को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेरी गुड इवनिंग
1: जी. तो क्या है मदर्स डे के लिए स्पेशल?
2: बिल्कुल जी. सो मदर्स डे हमारा, आपको पता है कि साल में एक दिन ही आता है, तो हर मदर को भी होता है कि हमारे बच्चे हमारे लिए अच्छा अच्छा कोई गिफ्ट लेकर आए. और हमने भी स्पेशल अरेंजमेंट किया जी आपकी पॉकेट के हिसाब से, क्योंकि हर बंदे का अलग बजट है, हर बंदे की अलग पॉकेट एक्सपेंस है. तो जिनको तो चाहिए बहुत बढ़िया हाई एंड ब्रांडेड सनग्लासेस, तो उनके लिए गुची के, प्राडा के, वर्साची के, डॉल्ची गबाना के, टिफनी के, टॉम फोर्ड के, ब्लेंसियागा के, ये सभी के सभी हाई एंड ब्रांडेड फ्रेम्स और सनग्लासेस के ऊपर स्वाति जी हमने फ्लैट 30% डिस्काउंट किया जी. और ऐसे ही जिनको माइकल कोर्स के चाहिए सनग्लासेस, या फिर कोच के, केट स्पेड के, मार्क जेकब के, पोलो के, रॉस लॉरेन के, तो ये अरमानी के, ये सभी के सभी ब्रांडेड सनग्लासेस के ऊपर दोस्तों आपको आज फ्लैट 50% ऑफ मिल रहा है. और अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छा ब्रांडेड सनग्लासेस भी मिल जाए और आपकी जेब के ऊपर भी ज्यादा जोर ना पड़े, तो उसके लिए हमने स्पेशल आपको टॉमी हिलफिगर के और कैल्विन क्लाइन के सनग्लासेस लेकर आए हैं स्वाति जी. 399 के ये सनग्लासेस हैं और आपको आज ये फ्लैट 75% ऑफ करके सिर्फ $99 में दिए जा रहे हैं. तो ये अमेजिंग अमेजिंग डील्स मिल रही हैं स्पेक्स एक्सप्रेस के ऊपर. और एक स्पेशल स्पेशल डील फिल्मी नुक्कड़ के लिसनर्स के लिए जी, जितने भी लिसनर्स आकर हमारे से कोई भी परचेज कर रहे हैं दोस्तों, चाहे आप हमारा 129 का पैकेज ले रहे हो या फिर 258 का या 50% ऑफ ब्रांडेड फ्रेम, आपको हर परचेज के साथ स्केचेस के पोलराइज्ड ब्रांडेड सनग्लासेस बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं. सो स्वाति जी, बड़ा सिंपल सा जी, हमारे लिसनर्स आए, कोई भी जैसे डील लेते हैं, जैसे हमारा वैल्यू पैकेज है, इसमें हम अपने लिसनर्स को सिलेक्टेड ब्रांडेड फ्रेम और साथ में सिंगल विजन लेंसेज कंप्लीट पैकेज, ये $400 का होता है, ये हम उनको सिर्फ $129 में देते हैं जी. प्लस आप अपने ग्लासेस के ऊपर जितनी मर्जी कोटिंग ऐड करवाएं, सभी कोटिंग्स फ्लैट 50% ऑफ है. और अगर कोई पर्सन आकर दो पेयर बनवा रहा है तो पहले पे कोटिंग 50% ऑफ और दूसरे पे कोटिंग एब्सोल्युटली फ्री है जी. और ऑन टॉप ऑफ इट, इसके साथ भी आपको आज स्केचेस के पोलराइज्ड सनग्लासेस बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे. तो मैं रिक्वेस्ट कर दूं हमारे लिसनर्स को कि जो भी ये डील्स लेना चाहते हैं हमें कॉल कर अपना नाम लिखवा दें, क्योंकि ये डील हमने सिर्फ रिजर्व किया जी हमारे फिल्मी नुक्कड़ के लिसनर्स के लिए. सो नंबर कॉल करने के लिए 905-460-8888, 905-460-8888. और स्वाति जी, बहुत सारे लिसनर्स होते हैं जिनको प्रोग्रेसिव ग्लासेस चाहिए, उनके लिए भी बहुत बढ़िया डील है जी. एसिलोर कंपनी के आपको हम हाई डेफिनेशन डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेज दे रहे हैं जी. $300 की कीमत के ये लेंसेज हैं, प्लस $300 की कीमत का सिलेक्टेड ब्रांडेड फ्रेम है जी. 600 का पैकेज, सिर्फ 258, और उसके ऊपर भी आप अपने ग्लासेस के ऊपर जितनी मर्जी कोटिंग ऐड करवाएं, सभी कोटिंग्स फ्लैट 50% ऑफ, और अगर आप दो पेयर बनवाते हैं तो पहले पे कोटिंग 50% ऑफ और दूसरे पे कोटिंग एब्सोल्युटली फ्री, एंड ऑन टॉप ऑफ इट आपको स्केचेस के पोलराइज सनग्लासेस वो भी साथ में बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं। तो मैं रिपीट कर दूं जी, जो भी लिसनर्स हमारे आज या कल नहीं आ सकते, अगर आप कॉल कर अपना नाम रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो नेक्स्ट 2 वीक्स तक आप कभी भी आकर इन डील्स का फायदा ले सकते हो, एज लॉन्ग एज आपने कॉल करके अपना नाम लिखवाया है। तो कॉल करके नाम लिखवाने के लिए एक ही नंबर 905-460-8888। इसके अलावा जिन्होंने आई एग्जाम करवाना है, डॉक्टर मालवा जी आज शाम के 7 बजे तक अवेलेबल हैं, और अगर आप आज नहीं आ सकते तो कल सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल हैं। आप आई एग्जाम भी करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। सिंपल सा नंबर 905-460-8888, और हमारी लोकेशन है जी स्पेक्स एक्सप्रेस की 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन में, 410 एंड स्ट्रीट्स कैलें, या कैनेडियन स्टील्स की इंटरसेक्शन है जी, वॉलमार्ट वाला प्लाजा, और जिन लिसनर्स के पास बेनिफिट्स हैं, बताते चलें कि मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज को हम डायरेक्ट बिल करते हैं, चाहे आपका आई एग्जाम हो, आपके प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस हो या फिर प्रिस्क्रिप्शन सनग्लासेस। सो एक ही नंबर दोस्तों कॉल करके अपना नाम रजिस्टर करवाने के लिए या अपॉइंटमेंट के लिए 905-460-8888, और जाते जाते एक स्पेशल डील हो जाए स्वाति जी
1: जी, प्लीज मैं तो इंतजार कर रही हूँ, और क्या क्या खजाने में है इस वीकेंड पर।
2: So जी, पहले 5 कॉलर्स जो भी हमें कॉल करेंगे जी, हम उनको टॉम फोर्ड के ब्रांडेड सनग्लासेस फ्लैट 50% ऑफ देंगे। जो भी पहले 5 कॉलर्स कॉल करेंगे जी, टॉम फोर्ड के ब्रांडेड सनग्लासेस अगर आप दोस्तों फ्लैट 50% ऑफ लेना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-460-8888, 905-460-8888। थैंक यू सो मच।
1: मैं आपने इतना अच्छा पिटारा खोला है इस वक्त डिस्काउंट्स का, ऑफ का, फ्री चीजें क्या हैं, यू नो मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना सारी चीजें अगर कोई सुनते हुए कंफ्यूज हो गया है या याद नहीं रख पा रहा है, कह रहे बहुत कुछ है, तो इतना मान के चले बहुत कुछ है आपके लिए। आपको एक बार फोन करना है, रजिस्टर करना है, जाना है, बस आपके लिए वहां पे डिस्काउंट्स हैं, फ्लैट डिस्काउंट्स हैं, बहुत सारी फ्री चीजें हैं, ये मान के चले। अब पूछ लिए फोन करके, रजिस्टर कर लें और पहुंच जाए। और एक चीज जो उन्होंने बताई है राजन सर ने कि आप इस हफ्ते नहीं आ सकते, अगले हफ्ते नहीं आ सकते, तो सिर्फ कॉल करके आपको अपना नाम लिखवाना है इनके पास और आप एलिजिबल हो जाएंगे टू अवेल दीज डील्स इवन आफ्टर विद इन 2 वीक्स। तो 2 हफ्ते तक आप ले सकते हैं, ऐसा ही नहीं है कि इसी हफ्ते आपको जाना जरूरी है टू अवेल दीज। तो बस कॉल कर जरूर करें, डील्स डिटेल में पता कर लें, इनकेस आप ओवरवेलम हो चुके हैं कि इतना सारा कुछ मिल रहा है। तो नंबर इज 905-460-8888। देयर इज लॉट ऑफ स्टफ फॉर यू, गारंटीड है आपको सर्विस बहुत अच्छी मिलेगी और सेविंग्स तो सेविंग्स है ना। थैंक यू राजन सर, मदर्स डे के लिए आपने अच्छे स्पीशल लाए हैं हमारे लिए, थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू।
1: ऑलराइट, ये थे राजन जी फ्रॉम स्पेक्स एक्सप्रेस। जरूर जाएं, वॉलमार्ट वाला प्लाजा है ब्रैम्पटन में, स्टील्स और कैनेडी का इंटरसेक्शन मोटा मोटा, 905-460-8888।
3: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे, आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
4: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
3: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।

0: to advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time. Find out hai spring special mortgage rates and extra promotion ka with Amit Khurana. 5 years fixed 4.14%, 3 years fixed 4.19%, 5 years variable 3.55%. Plus cashback from bank and special gift from Amit Khurana up to $1,500. Terms and conditions apply. Call Amit 647-341-2785, 647-341-2785 or visit amitkhurana.com.
1: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसाज वेयरहाउस सेल पर। विजिट लीसाज कॉस्मेटिक्स.com।

released Broadway's On. कौन सी वेब सीरीज should be binge watched? अगर है confusion, तो tune in for Nukkad's Weekend Watch. राइट तो थिएटर पर दादी की शादी अटेंड करने के अलावा कृष्णा अवतारम हृदयम में कृष्णा से जुड़ी कहानियां जीने के अलावा डुगडुग के साथ थोड़ा सटायरिकल होने के अलावा मैं एक्टर नहीं हूं के साथ कुछ एक्टिंग सीखने के अलावा आप अमेज़न प्राइम पर डकैत के मिशन में भी हिस्सा ले सकते हैं. एक्शन थ्रिलर है. कहानी एक कैदी की जो अपनी धोखेबाज एक्स प्रेमिका से बदला लेने के लिए जेल से भाग जाता है ओनली टू रियलाइज अरे ये तो धोखेबाज थी ही नहीं, मेरा कुछ भला ही था उसमें. लूट वूट की कहानी है. अनफोल्डिंग अननोन ट्रूथ्स विद फोकस ऑन कास्टिज्म एज वेल. देन अमेज़न

पर ही रिलीज हो रही है इंडियन रैपर किंग की डेब्यू फिल्म, नाम है लुक्के। म्यूजिकल एक्शन ड्रामा है जहाँ पे राइवलरी दिखाई है बिटवीन टू एस्पायरिंग रैपर्स, एम्बिशंस कैसे बनते हैं ऑब्सेशन, और आर्टिस्टिक पैशन एंड गेटिंग पर्सनल के बीच की जो एक फाइन लाइन होती है कब हो जाती है फेड, एवरीथिंग इज इन फोकस। इट कैन बी एन इंटरेस्टिंग वॉच टू, क्योंकि दो रैपर्स की भारत के लड़ाई काफी दुनिया सुन ही चुकी है ना। फिलहाल तो किंग भी गा ही रहे हैं, तू आके देख ले। लाइन अप नेक्स्ट।

0: मेरी रेगुलर किराया देने से प्रॉपर्टी मेरे लैंडलॉर्ड की मॉर्गेज फ्री हुई और मेरे अपने घर का सपना वो सपना ही रह गया।
1: अब वक्त है अपने घर का सपना साकार करने का। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माई रियल को, द रियल एस्टेट कंपनी। पिछले 20 सालों में मैंने सैकड़ों फर्स्ट टाइम बायर्स को उनके बजट और जरूरत के हिसाब से घर खरीदने में हेल्प की है। अब बारी आपकी। कॉल मी नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एंड स्मार्ट बायर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम एट 416-843-7600।
0: That's 416-843-7600 और विजिट माई रियल को .com। अच्छा, इस बायर्स मार्केट में अगर घर बेचना आपको एक मुश्किल काम लग रहा है एट अ डिजायर्ड प्राइस, तो माई रियलको के ब्रोकर ऑफ रेकर्ड संजीव मनोचा जी अब लाए हैं सेलर्स एडवांटेज प्रोग्राम, जिसमें लिस्टिंग कमीशन शुरू हो रहा है फ्रॉम जस्ट 0.99%, यानी हजारों डॉलर्स की बचत। बाकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस तो उनका यूं भी सॉलिड है, जिससे घर बेचना हो या खरीदना एक्सपीरियंस आपका बस हैप्पी वाला होगा, विद लिस्टिंग कमीशन स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 0.99%। उन्हें कॉल करें एट 416-843-7600 और सेलर्स एडवांटेज प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स पता कर लें। घर अगर खरीदना है तो भी उनके पास बायर्स रिवॉर्ड्स प्रोग्राम है, जहां अप टू 40% ऑफ हिज कमीशन आपको मिल सकता है एज कैशबैक, अगेन सेविंग यू thousands of dollars. Free consultation hai. Call kare 416-843-7600. Sanjeev Manocha from My Real Co. 416-843-7600 or visit myrealco.com.

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com। विंटर्स में हमारे व्हीकल्स थोड़ी एक्स्ट्रा केयर मेंटेनेंस मांगते हैं, और उसके लिए गो टू माई मैकेनिक ऑटो एंड टायर। सभी तरह की मैकेनिकल रिपेयर्स और टायर सर्विसेज के लिए आप वहाँ किसी भी ऑयल चेंज और सर्विसेज के साथ गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री विंटर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन। गेट अ $20 ऑफ ऑन ऑल सिंथेटिक ऑयल चेंज सर्विसेज। मिशलन टायर्स के ऑथराइज्ड डीलर हैं ये, एंड यू कैन गेट अप टू $150 रिबेट जब आप 4 नए टायर्स खरीदते हैं। इंश्योरेंस से ये डायरेक्ट डील करते हैं। विजिट देयर मार्कहम स्टोर एट मिडलैंड एंड स्टील्स और स्कारब्रो स्टोर मिडलैंड एंड एल्समियर पर। For details, visit mymechanicauto.ca.
1: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, यूनिट 104 in Brampton, 6477602779, 6477602779.
0: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
2: He's breaking through the midfield.
3: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के tickets जीतने का. कोई भी vehicle biker के घर ले जाएं और पाए double entries. Winter tires या extended warranty ले और हर एक के साथ पाए एक extra entry. आज drive करें, कल जीते. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
0: FIFA के टिकट चाहिए घर, तो जाए Don Valley North Hyundai पर. अब पूछो वहाँ क्यों? उन्होंने खूब समझाया हम सबका मन. अब देखो ना, FIFA के टिकट लेना कोई छोटी बात थोड़ी है. मारा मारी हो रखी है भाई टिकट्स की. मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है उन टिकट्स का हाथों में आना. ऊपर से बजट के बाहर उनकी प्राइसिंग फॉर साधारण इंसान, है ना. पर डॉन वैली नॉर्थ हंडई के साथ ये हो सकता है आसान. अब पूछे कैसे? एक बैलेंस है उनका जिसमें एंट्री आपको करनी होगी बस टिल May 31st, दैट्स अ डेडलाइन. और फिर ड्रॉ होगा जून में. जिनके नाम निकल आए उनको मिल जाएंगे टिकट्स फीफा के. अगर आप मुझसे कोई भी हंडई कार लेते हैं ना, तो दो टिकट्स जीतने के लिए आपको ड्रॉ में दो नाम डालने होंगे बैलेट में. अगर विंटर टायर्स लेते हैं विद स्टोरेज, तो एक नाम एक टिकट के लिए डाल पाएंगे. या फिर कोई एक्सटेंडेड वारंटी ले लेते हैं, तो भी एक नाम फॉर वन टिकट आप लकी ड्रॉ बैलेट में डाल पाएंगे. देखिए ऐसे नहीं तो वैसे क्या आपको फीफा टिकट्स मिल पाते हैं? और डॉन वैली नॉर्थ हंडई ने तो अपनी कोशिश आपके सामने रख दी है आपको जिससे टिकट्स मिल पाए. अब आपको करने अपने प्रयास. जल्दी जाए एट डॉन वैली नॉर्थ हंडई, वुडबाइन एवेन्यू, मार्कम. फिर होंगे आम के आम और कटली के दाम.
4: म्यूजिक चार्ट्स पर ये है ऑन टॉप. प्राइवेट स्टूडियो से नुक्कड़ इंडी पॉप.

वीकेंड पर बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि स्प्रिंग लैटिन फेस्टिवल, सकुरा फेस्टिवल, मदर्स डे के इवेंट्स हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट मे 9th को महाराणा प्रताप का जन्मदिन भी मनाया जाता है, तो इससे रिलेटेड भी फ्री इवेंट्स हैं बच्चों को लेकर, मुझे लगता है जरूर जाना चाहिए, जिससे वो जानते हैं, पूछते हैं, पढ़ते हैं, तभी तो इंस्पायर होते हैं, है ना. एंड इंस्पिरेशन से मुझे याद आया बाजीगर का वो जो डायलॉग है ना पॉपुलर सा, कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. मैं देख रही थी कि ये भी इंस्पायर्ड है भाई. अब पूछो कहाँ से. महाराणा प्रताप का एक कोट है, जो अत्यंत विकट परिस्थिति में भी झुककर हार नहीं मानते, वो हार कर भी जीते हुए ही होते हैं, है ना सिमिलर. इस बार भारत गई थी ना, तो हल्दी घाटी, कुंबलगढ़ का किला जहाँ उनका जन्म हुआ था, चित्तौड़ का किला, उनके घोड़े चेतक की समाधि, ये सब्जेक्ट से मैं जी कर आई हूँ. एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि जब भी आप जाएं ना, तो वहाँ के लिए समय ज़रूर निकालें. इंस्पायरिंग भी है, गूज बम्स भी देता है, एंड यस, दैट फीलिंग ऑफ प्राइड, इमेंस प्राइड. सो ऑन दिस हिस्ट्री के हीरोज आर हिस्ट्री ओनली If we consider so, wali note. This is Swati signing off for now, leaving you with a thought कि सही मायने में तो उन हीरो से हमेशा ही हम बहुत कुछ सीखा जा सकता है, but only अगर हमारी सीखने की, जानने की नियत हो तो. हम मिलते हैं जल्दी ही, तब तक love and smiles from me to you.

0: फाइनेंशियल इंक के मोहम्मद सलमान।
1: मॉर्गेज हो तो वही जो आपके लिए हो सही,
0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
2: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888। इट्स 437-237-8888। लाइसेंस नंबर 12458। अलकरम ज्वेलर्स। अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009। It's 9058280009। You log in ho alkaramjewelers.ca। Alkaram Jewelers, farmaish aapki, guarantee hamari। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर, 2 ऑक्शन लेन, ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
3: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
4: 416-570-0157। जी हाँ, 416-570-0157। आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है, आप गिर जाते हैं, आपको टिकट मिल जाती है, आप कॉल कर लीजिए, फ्रॉम द सीन कॉल कर लीजिए, मैक्सिमम कंपनसेशन आपको दिलवा देंगे, फीस हमेशा के सेटल हो जाए उसके बाद। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कई दहाइयों से इसी बिजनेस में है, इसी प्रोफेशन में है, और बहुत ही रिनाउंड लॉ फर्म है जिसके साथ ही काम करते हैं। आपको मैक्सिमम कंपनसेशन दिलवा देंगी, और फीस जैसे मैंने बताया कि एक्सीडेंट क्लेम में जो है वो केस सेटल होने के बाद ली जाती है। अगर बात हो एक्शन क्लेम की, तो साथ ही नाम आता है अंजुम कुरैशी साहब का, नंबर अपने पास महफूज करें 416-570-0157। खुश आमदीद कहेंगे अंजुम कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम, और तमाम सुनने वालों को आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और जैसा कि आपने कहा कि जब किसी का कोई कार एक्सीडेंट होता है या जब एक्सीडेंट का जिक्र आता है तो साथ में मेरा भी नाम आता है, उसकी वजह यह है कि आप एक ही प्रोफेशन में एक ही अरसा दराज लगाया हो तो लोग आपको रिकग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं। और मुझे तकरीबन 27-28 ईयर हो चुके हैं, और जब भी कभी आप हमारे साथ आते हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि आपको अच्छी सर्विसेज मिलें। और जैसे कि लोगों को एक परेशानी होती है कि अगर कार एक्सीडेंट हुआ तो लॉयर के पैसे कहाँ से देंगे, तो जैसे कि आपको पता है कि अंटारियो में कंटिजेंसी फीस होती है, यानी कोई भी फीस आपको अपफ्रंट नहीं देनी, बल्कि जो कुछ भी देना है आपने इन द एंड ऑफ द डे ना, जब लॉयर आपके केस को सेटल करता है, तो बगैर किसी ऑब्लिगेशन के, बगैर किसी परेशानी के आपको सेटलमेंट का पैसा भी मिल रहा है, आपकी तमाम चीजें भी कानूनी तौर पे सही तरीके से डील हो रही हैं, और आपके साथ एक लॉयर हर वक्त खड़ा हुआ है, तो इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। और इसमें एक और बात जो बहुत ज्यादा अच्छी है वो ये कि प्रोविंस है जैसे अल्बर्टा है या दूसरे प्रोविंस है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ वो लोग क्लेम कर सकते हैं जो नॉट एट फॉल्ट होते हैं, लेकिन अंटारियो में अभी तक ये है कि अगर आप एट फॉल्ट भी हैं तब भी आप अपने क्लेम को कर सकते हैं। अगर आप एट फॉल्ट होते हैं तो आपका प्रीमियम बढ़ जाता है, लेकिन आपको सेटलमेंट जरूर मिलता है, लेकिन अगर आप नॉट एट फॉल्ट हैं तो आपका प्रीमियम भी नहीं बढ़ता और आपको सेटलमेंट का पैसा भी मिलता है। मेरा काम आप तक अवेयरनेस लेकर आना, आपका काम इन बातों को याद रखना। हमेशा कहती हूँ आपकी अपनी अंजुम कुरैशी 416-570-0157, 416-570-0157 मेरा नंबर है। किसी भी कार एक्सीडेंट होने की सूरत में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
4: थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। मंडे इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। नंबर नोट कीजिए 416-570-0157, 416-570-0157। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM, स्टूडियोज में आप देखें नंबर 416-593-0003। अच्छा जनाब, आपको पता है कि कल जो है वो होने जा रही है जो एक सीट खाली थी डॉली बेगम की, उसकी नॉमिनेशन की वोटिंग है कल, और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अहम मुकाबला, बड़ा ज़बरदस्त ये हो सकता है। स्कारबोर साउथ वेस्ट राइडिंग है इसकी, और इसमें जो अहम नाम है वो नेट रिक्सन का है, वो एमपी हैं, और वो अब अगर ये इलेक्शन जीतते हैं, एमपीपी का नॉमिनेशन जीतेंगे, ज़ाहिर उसके बाद फिर इलेक्शन होगा, तो ये एक जो लिबरल की जो प्रोविंशियल लीडरशिप है उसके एक ही उम्मीदवार हैं, जब अभी तक जो सूरत नज़र आ रही है। अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, लॉयर भी हैं, और ये बड़ा कांटे का मुकाबला होगा। अगर नॉमिनेशन जीत जाते हैं तो फिर इसके बाद जो प्रोविंशियल लीडरशिप होगी लिबरल की, उसके ये हम उम्मीदवार हो सकते हैं। 416-593-0003, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM, और वक्त हो चला आपको ले चलने का आज की शायरी के सेगमेंट की तरफ। अच्छा, अब एक चीज़ में और शायरी से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। आपको पता है सेंसस के फॉर्म्स जो हैं वो आ चुके हैं, और 12 तारीख लास्ट है बाय लॉ आपको वो फिल करने हैं। उस पर मैंने देखा था कहीं उस पर कोई फ़ाइन भी है। अब इसमें दो एक लैंग्वेज के हवाले से, उसमें आपका नाम आएगा पूरी फैमिली के हिसाब से, क्या क्या रिलेशन है उनका, थोड़ा टाइम लगता है, 5-7 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसका कोड है, कोड को आप डालेंगे, और जब इंटरनेट पर आप तो उसको फिल करना शुरू कर देंगे। आप जहाँ रह रहे हैं उसका एड्रेस कब से रह रहे हैं, दो तीन चीज़ें हैं, लैंग्वेज के हवाले से होगी, घर में कौन सी ज़बान बोलते हैं, तो जो आपकी मदर लैंग्वेज होती है। बहुत से लोग हैं जो पंजाबी बोलते हैं, सरायकी, पश्तो, बलोची, लेकिन जैसे मैंने पिछली बार जिक्र किया था कि यहाँ मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को मुख्तलिफ फंडिंग या मुख्तलिफ सहूलतों के वाले से सेंसस ये देखता है कि कौन सी कम्युनिटी कितनी ज़्यादा तादाद में है। अगर आप मुख्तलिफ इलाकों में देखें, कम्युनिटीज़ को भी देखें, तो आपको वो लिखा होगा कि लैंग्वेज, विच लैंग्वेज दे स्पोक मोर, कौन सी इंग्लिश होती है, फिर उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, तो आप उसमें उर्दू लिखें, क्योंकि बाकी अगर जो चीज़ें लिखेंगे तो वो बहुत कम तादाद में होंगी। उर्दू की अगर तादाद ज़्यादा होगी तो वो आप कम्युनिटी को, हमारी सबकी कम्युनिटी को फ़ायदा हो सकता है। इसमें किसी से कोई ये इतराज़ नहीं है, लेकिन बजाय अपनी मादरी ज़बान पंजाबी, पश्तो, सरायकी, बलोची या सिंधी लिखने के, उसमें उर्दू लिखें, ताकि ज़्यादा जो हुकूमती तरफ से जो कोई फैसिलिटीज़ होंगी, मरात होंगी, वो हमारी कम्युनिटी या पाकिस्तानी जो उसको हासिल कर सकें। 12 तारीख लास्ट डेट है, उससे पहले आपको इसको फिल करना है। तो चलिए, आपके लिए पेश कर रहे हैं आज की शायरी।

शामिल मुझ से खफा हो जैसे, साथ चल मौजे सबा हो जैसे। लोग यूं देख के हंस देते हैं तो मुझे भूल गया हो जैसे। मौत भी आई तो इस नाज के साथ मुझ पे एहसान किया हो जैसे। हिचकियां रात को आती ही गईं, तूने फिर याद किया हो जैसे। ऐसे अनजान बने बैठे हो, तुमको कुछ भी ना पता हो जैसे। जिंदगी बीत रही है दानिश, एक बेजुर्म सजा हो जैसे। यूं ना मिल मुझसे खफा हो जैसे, साथ चल मौजे सबा हो जैसे।

80 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया है, जिसके बाद मिट्टी के तेल की कीमत है वो 318। मिट्टी के तेल से मोटरसाइकिलें चलती तो फिर तो बात थी, ये तो मसला और है। लेवी जो है वो 13 रुपये 91 पैसे बढ़ा दी गई है पेट्रोल डीज़ल पर। पेट्रोल पर लेवी 103 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 117 रुपये, डीज़ल पर 28 रुपये 69 पैसे बढ़कर 42 रुपये 60 पैसे हो गई हैं। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक आज रात 12 बजे से इसका नफाज हो जाएगा। बड़ा मुश्किल है अगर आप देखें एक मोटरसाइकिल वाले के लिए, 1000 रुपये में वो 2-2.5 लीटर पेट्रोल डलवाएगा तो फिर कहेगा क्या, मतलब कितना चला लेगा, मतलब ये बहुत मुश्किल में हलवा हो गया। आई डोंट नो इसके ऊपर हुकूमत किस तरह से चीज़ों को देख, मसाइल ज़रूर हैं लेकिन ये जो बुनियादी ज़रूरतें हैं मोटरसाइकिल सवार के लिए तो बुनियादी पेट्रोल ही है जिसे चलाना, तो इस पे कम अज़ कम कोई तरीका ऐसा ज़रूर इख्तियार करना चाहिए जिससे कम अज़ कम उनकी थोड़ी सी आसानी हो। इस किस्म की अब मजबूरी है जिसने, उसने चलना तो है, मतलब पेट्रोल भी डालना है, काम भी करना है, तो क्या पता अब गवर्नमेंट को अगर मतलब सलामतें सुनवा के ही पेट्रोल डलवाएगा तो उसका फिर फ़ायदा नहीं। 4165930003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। सिर्फ 2 दिन बाकी हैं लीज़र्स वेयर हाउस जो कॉस्मेटिक की स्पेशल सेल है, लीज़र्स कॉस्मेटिक्स 2026 स्प्रिंग वेयर हाउस सेल है जो कि 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम में है। आप तशरीफ़ ले जाइए, ब्रांड नेम आपको परफ्यूम्स कॉस्मेटिक्स हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स अप टू 80% का डिस्काउंट मिलेगा और स्पेशली मदर्स डे के लिए बहुत ज़बरदस्त डील्स हैं। और आपको जाना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम, आप लीज़ाज कॉस्मेटिक्स .com पे जाके भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट टू 404 एंड 407, वेरी क्लोज टू हाईवे 401। और इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को 4 दिन के लिए कैपिटल बैंकेट हॉल मिसागा में होने जा रहा है और ज़बरदस्त किस्म के स्टॉल होंगे, एवरीडे गोल्ड के प्राइजेस होंगे और बेशुमार इनाम घर भी वहाँ जो है उसका भी प्रोग्राम्स होंगे, तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। और इसमें एवरीडे जो है इन्होंने डिफरेंट प्रोग्राम्स रखे हैं, आप उसको भी इंजॉय कीजिएगा, इनाम भी लीजिएगा, ख़रीदारी भी कीजिएगा, मेहंदी भी लगवाइएगा। स्टॉल बुकिंग के लिए इन्होंने रेडियो पाकिस्तान के हवाले से एक स्पेशल डिस्काउंट दिया हुआ है, अगर आप स्टॉल बुक कराना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 416-710-6777, 416-710-6777।

0: तलावट्टी को कॉल मिला।
1: तलावट 6472957861 प्रीकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज स्पेशल पैकेजेस फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स अ मेंबर ऑफ डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल टीम तलावट 6472957861
0: को कॉल मिला।
1: तलावट 6472957861 अपने

0: Village Taste, 4141 Dixie Road, Unit 10 and 11, Mississauga. Dixie or Burnham Thorpe intersection. Authentic Pakistani cuisine in a very traditional setting. 50 se 60 items ka buffet jisme har dish shamil hai. Iske alawa aap takeout aur catering bhi karwa sakte hain. Village Taste mein maujood party hall jisme aap wedding, birthdays ya koi bhi corporate event arrange kar sakte hain. Open 7 days a week. For more information call Faisal Chatta 905-232-3663. It's 905-232-3663. Village Taste, 4141 Dixie Road, Mississauga.
1: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773. कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ते कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं. फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773.
2: Sunshine Radio. Sunshine Radio.

0: 22nd, 23rd at Palacio Event Center, 34107 Coat, Mississauga. May 24th, 25th, and 26th at Icon Event Space, 6887 Dixie Road, Mississauga. No tickets, free parking. Enjoy the shopping player, clothing, jewelry, mehndi, chudiyan, food, entertainment, and much more. Call Shaheen Khan or Matanat Khan at 416-825-9275.
1: बहुत खुशबू आ रही है खाने में, ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो।
2: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए, ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके।
3: हांडी मसाले, बिल्कुल घर जैसा स्वाद।
4: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 416-746-5550-746-5550।
5: कर्ज इंसान का ज़हनी सुकून छीन लेता है। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं, तो ऑल डेट सॉल्यूशन के एम सिद्दीक से राबिता कीजिए 416-671-0577। जीटी भर में 4 लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। मुकम्मल राजदारी और फीस आपके केस के सेटल होने के बाद लेते हैं। केस देखने के बाद मुकम्मल गारंटी के साथ आपको बताएंगे कि कितने फीसद तक कर्ज माफ हो सकता है, और फिर सूद से पाक आसान अकसात में आप अदायगी कर सकेंगे। कलेक्शन कॉल आना हो जाएंगी बंद और आपकी परेशानियां हो जाएंगी खत्म। अभी एतमाद के साथ कॉल कीजिए 416-671-0577। मेटा फर्नीचर होलसेल गैलरी। अगर आप ब्रांड न्यू, पायदार और लेटेस्ट डिजाइन के फर्नीचर की तलाश में हैं, तो मेटा फर्नीचर आपकी तमाम जरूरियात को पूरा करता है। बेहतरीन क्वालिटी और प्राइस की गारंटी। मिसिसागा, ब्रामटन, स्कारब्रो और कैम्ब्रिज की चारों लोकेशंस पर ब्रांडेड, ट्रेडिशनल और हाई एंड फर्नीचर की बेहतरीन वैरायटी। फ्लोर मॉडल्स पर स्पेशल डिस्काउंट। दूसरे स्टोर से 10-30% तक डिस्काउंट मॉडल नंबर की गारंटी के साथ। चारों लोकेशंस के लिए एक ही नंबर 416-901-2810। इट्स 416-901-2810। या लॉग इन हो metafurniture.com। हर हफ्ते स्पेशल डील्स का फायदा उठाइए। मेटा फर्नीचर, हर तरह का फर्नीचर होलसेल प्राइस पर।
6: जी हाँ, हर तरह का फर्नीचर होलसेल प्राइस पे आपको मिलेगा मेटा फर्नीचर होलसेल गैलरी। और एवरी वीक स्पेशल स्पेशल डील लेकर आते हैं, हर त्यौहार पे स्पेशल डील लेकर आते हैं। मदर्स डे की बहुत ही स्पेशल स्पेशल डील्स हैं आपके लिए। चार लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। मिसागा लोकेशन 3050 वेगा बुलेवार्ड, यूनिट 2, 295 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट ब्रामटन, 1319 कैनेडी रोड स्कारबो, 30 पाइन बुश रोड कैम्ब्रिज। और फिफ्थ लोकेशन इनकी लंदन ओंटेरियो में ओपन हो रही है, और आपके लिए 10-30% तो फार श्योर डिस्काउंट मिलता है, और वो डिस्काउंट जो ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है उससे ऊपर मिलता है। ये नहीं कि उसके ऊपर मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये खुद इंपोर्ट करते हैं, रेगुलर इंपोर्ट करते हैं, बड़ी बल्क तादाद में इंपोर्ट करते हैं, इसलिए ये मार्जिन इनको होता है। अपना प्रॉफिट भी रखते हैं, लेकिन आपको भी ज़रूर जो है फ़ायदा देते हैं। तो ड्यूरेबल फर्नीचर चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग फर्नीचर चाहिए, खूबसूरत फर्नीचर चाहिए, आपको लेटेस्ट फर्नीचर चाहिए, तो मेटा फर्नीचर की किसी भी एक लोकेशन पर ज़रूर तशरीफ़ ले जाएँ। 416-901-2810 metafurniture.com इनकी वेबसाइट है। पवन मेरा साहब मसद मौजूद हैं, मजीद डिटेल में से लेंगे। मेरा साहब, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
7: थैंक यू भट्टी साहब, और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के सुनने वाले सभी बहन भाइयों को मेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और मदर्स डे आने वाला है, सभी जो जितने मेरी बड़ी बहने हैं, छोटी बहने हैं, या धियां ध्यानियां जैसे आप कहते हैं, बच्चियां हैं छोटी जिनको माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सभी को हैप्पी मदर्स डे इन एडवांस, और सभी की सेहत अच्छी रहे, बच्चों के साथ प्यार बना रहे, और हमारे साथ भी आपका प्यार यूं ही बना रहे। कल मैंने आपको गीत कहा था ना, वो आई थिंक वो जो नुसरत फतेह अली खान या उनके बेटे ने, मेरे ख्याल राहत जी ने, कि मैं सब तो पहले तेरा माँ कहना सीखा, इस तरह की उसकी वर्डिंग थी ना, जो जब माँ के बारे में बहुत है आपके उधर,
6: क्या
7: कमाल माँ के बारे में बताते हैं। तो मैं जी, तो माँ के बारे में मैं भी क्या कहूँ, माँ तो बस देना ही चाहती है। आज भी एक रेडियो से मेरे से ये सवाल पूछा गया कि ऐसा कुछ है जो आपको लगे कि हम अपने माँ को हमें कहना चाहिए, तो मैं भी ये जरूर कहूंगा कि जिन्हें मतलब हिंदी में, चलो उर्दू में, जैसे कि जैसे माँ हमारे से पूछती है ना कि बेटा तूने खाना खाया कि नहीं खाया, तू अच्छी तरह सोया कि नहीं सोया, आज तेरा दिन कैसा रहा। तो जब हम यंग होते हैं ना, तब तो हम भी बहुत करते हैं, जब हम बच्चे थे तो हम भी माँ की गोदी का आंचल ही था, माँ से बहुत लाड करते होंगे, लेकिन आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं लगा, शायद हो सकता है मेरे लगता हो, कि जब हम और बिजी हो जाते हैं अपनी अपनी लाइफ में, अपने बच्चे हो गए, आपकी हो गए लाइफ, बिजनेस, ये पैसा, धन दौलत, तो अगर हम भी अपनी माँ को पूछ लेना, आज तेरी नींद तुम्हें रात को माँ आई कि नहीं आई, रोटी तूने खाई कि नहीं खाई, दवाई तूने खाई कि नहीं खाई, तो आई थिंक माँ को तो और माँ की और ब्लेसिंग, और माँ तो ऑलवेज ही ब्लेसिंग करती है. तो जैसे मैंने अपना एक थॉट शेयर करा आपसे, रही बात भट्टी साहब आप बताते रहते हैं हम 10-30% इसलिए सस्ते हैं कि कंटेनर बाइंग लाते हैं, और फर्नीचर जैसे नया फर्नीचर भी लाना पड़ता है, नए मॉडल भी एडवर्टीज, वो बिजनेस की एक बिजनेस की नीड भी है. आप भी भैर भाई चाहते हैं कि अभी जैसे हमने एशले के 4 मॉडल ऐड करे हैं, जो फैब्रिक आप मशीन वॉश कर लें या उसे कुछ लग जाए तो इवन देन कमर्शियल ग्रीस लग जाए, आप उसे ब्लीच और पानी लिखा हुआ है लिक्विड कितना मिलाना है वो वॉश कर सकते हैं, कि आपकी फैब्रिक खराब नहीं होगी और दाग हट जाएगा. तो हम ये नया प्रोडक्ट आए हम लेके आए, पहले उसकी ट्राई करते हैं, उसकी वेट करते हैं, जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वो लाते हैं. हमने मेपल वुड की डाइनिंग्स हमारे जो ऐड करी हैं, तो आज हाई एंड फर्नीचर मदर डे है तो माँ की ब्लेसिंग आपको इतना धन धन मिलेगा कि आप अच्छा फर्नीचर आपके घर में ले जाए. इसका मतलब ये नहीं है कि सस्ते वाला नहीं है, हमारे पास सस्ते वाला भी है. मैंने आपको याद है एक हफ्ता पहले कहा था कि वो मैट्रेस लाएंगे 365 डेज की, मतलब एक कंपनी ला रहे हैं 365 डेज स्लीप गारंटी है आपको एक साल तक, एक साल बाद आप एक्सचेंज कर सकते हैं कि इसमें नींद नहीं आती दूसरा मॉडल दे दो हमें मतलब. तो फिर आज हमने अपनी मैंने अपने लेवल पे हमने बैठे, हम बैठे अपनी टीम के साथ, हम बैठे 500 स्टोर, हमने ये डिस्कशन करा कि कोशिश करते हैं कि जो मैट्रेसेस हमारे स्टोरों पे हैं उसमें भी हम स्लीप गारंटी देना शुरू करें. वैसे तो कस्टमर आते हैं फिजिकली, आप लेटते हैं बैठते हैं देख के ले जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई कारण हो गया तो आपको उसके बारे उसमें भी आपकी हेल्प करने को तैयार है. कैनेडियन मेड आपको कुछ इंच टू इंच अगर आपकी कोई सेक्शनल बनाना है तो आपकी बेसिकली अकॉर्डिंग टू योर मेजरमेंट भी बना के देते हैं. हाँ जी हाँ, प्राइस तो अच्छी होएगी और हम आप उसके लिए कंपेयर करें, उसके लिए हमें अजमाएं अपना बनाएं फिर हमें अच्छा लगता है. एशले फर्नीचर की जो कंटेनर में आइटम लाते हैं, जैसे बेड में आपको देने जा रहा हूँ 2779 की हमारी स्टोरेज वाले बेड की प्राइस है. अवेलेबिलिटी भी आप अपॉन ऑर्डर 60-90 डेज भी लगते हैं, ये भी ऑन रेडियो बोल रहे हैं, लेकिन एक बेड के पीछे $800 में सस्ते हैं. आप कंपेयर कर लें, डाइनिंग टेबल लेने हो, मॉडर्न मार्बल टेबल लेना हो, जो भी आपने लेना हो मैट्रेस में. आज मैं किसी नाम नहीं लूं किस स्टोर पे गया, भट्टी साहब $5,000 की मैट्रेस पड़ी थी वहां, नाम भी ले लूं टेम्परापीडिक की 5,000 की मैट्रेसेस है, और एक तरफ हम 129 वाले भी एडवर्टीज कर रहे हैं. तो हर बहन भाई की एक जरूरत है, हम 129 वाले भी सस्ती देंगे और 5,000 वाली तो नीचे लेके आके आपको 3,500 में दे देंगे. ये है मिड्डा फर्नीचर की बचत. तो आप एक बार हमें सेवा का मौका देके देखें. हैप्पी मदर्स डे टू ऑल अगेन, एंड देन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मदर्स डे की. और रही बात मिड्डा फर्नीचर, आपका अपना स्टोर है 416-901-2810 और मिड्डा MIDHA furniture.com serving from 4 location, और पांचवी location की grand opening की date London, जगह तो आपको बताई थी
6: जी जी.
7: और London में बहुत जल्दी एक आधे वीक में वो भी आपको डेट भी अनाउंस कर देंगे. थैंक यू वेरी मच जी,
6: बहुत शुक्रिया मैं साहब. नेक्स्ट सेगमेंट में आपसे बात करते हैं और आपका नगमा जो है वो भी आपके लिए जो है वो भी प्ले करते हैं. थैंक यू, बहुत शुक्रिया
7: जी. थैंक यू
6: नंबर नोट कीजिए, मिड्डा फर्नीचर 416-901-2810 MIDHA furniture.com इनकी वेबसाइट है. 301 रन 4 खिलाड़ी आउट बांग्लादेश की, अच्छी कारकर्दगी उनकी. कहते थे कि तेज विकेट है, 2 विकेट तो जल्दी ले ली पाकिस्तानी बॉलर्स ने, लेकिन उसके बाद शांतु जो उनके कप्तान उन्होंने सेंचुरी बना ली. तो चलिए थोड़ी देर में इस हवाले से आगे चल के हम बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड, स्टूडियो में आप तक नंबर 416-593-0030.
8: The best gourmet pizza with best prices, Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga, or visit pizzapop.ca. Family के साथ dine in करें या take out, बच्चों और बड़ों सभी की पहली choice Pizza Pop. लजीज और मजेदार तंदूरी chicken pizza, cheese steak pizza, chicken shawarma pizza. Exclusive family offer, large tandoori chicken pizza, large cheese pizza, 2 dipping sauce, 3 cans of pop for $24.99 only. For more information and take out order, call 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga.
9: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं. आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं. तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं. इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 Road, Mississauga. Ample parking or close to highways. For more information and booking, call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton May Queens Manor Event Center, 2 Auction Lane, Brompton. For more information, call 416-814-3600. Queens Manor Event Center.
10: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low ya commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts, 905-819-1001. 905-819-1001. License number 12374.
11: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे। अगर आप रिफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कहम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन। अभी कीजिए 416-855-9464। शहबाज अकबर साहब के रابطے के नंबर 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन।
12: अपना हम सफर ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर्स।
13: ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर्स मिसिसागा

0: स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555
1: अगर आपकी कॉरपोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉरपोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं। इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राब्ता कर सकते हैं। साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा। डेडलाइन इज कमिंग सून। अहमद मलिक इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 905-783-1922। इट्स 905-783-1922।
2: जी हाँ 905-783-1922 अहमद मलिक साहब के रबते के नंबर है। अहमद मलिक कर्ज माफ 2.5 से ज़्यादा अरसा हो चुका, हज़ारों की तादाद में लोगों के कर्ज माफ़ करवा चुके हैं। मैक्सिमम कर्ज़ माफ़ करवा देंगे, आसान एक साथ आपके बनवा देंगे और कोई भी मसला हो, किसी किस्म का भी कर्ज हो, एक बार रबता आप इनसे ज़रूर कीजिएगा, मुकम्मल आपकी रहनुमाई करेंगे। 905-783-1922 इनके रबते के नंबर है। खुश आमदीद कहेंगे। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम अर्शद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
2: मलिक साहब, ओवरऑल जो सिचुएशन है, आप मशवरा दिया करते हैं लोगों को कि क्या किस तरह से इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। आजकल की जो सूरत हाल है, मईशत का जो मामला है, खासा मुश्किल है। हर शख्स किसी तौर पर कर्ज के बोझ तले आया है, कहीं मॉर्गेज के मसाले हैं, कई और मसाले हैं, तो बताइए किस तरह से लोग इस सूरत हाल से जो है वो निकल सकते हैं, किस तरह से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं।
3: बिल्कुल अर्शद भाई, ये बताते चलें कि जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ पे ये सीजन आते जाते रहते हैं,
2: ठीक है।
3: रिसेशन, इन्फ्लेशन और प्रोग्रेशन, इसी इकॉनमी ने अब किसी भी वक्त दोबारा उठना शुरू कर देना है। ये ऐसा नहीं है कि पहली दफा कनाडा में ऐसा हुआ है, पहली दफा नॉर्थ अमेरिका में ऐसा हुआ है, ये हर 10 से 12 साल बाद ये वेव आती है। इस मरतबा ये वेव बहुत ज्यादा शदीद इसलिए आई है कि हम अभी कोविड की तबाहकारियों से निकले ही नहीं थे कि उसके ऊपर ही टैरिफ का बोझ आ गया। टैरिफ का जो स्ट्रेस पड़ा है पूरी इकॉनमी पे, अभी हम वो नहीं सह पाए थे कि ऊपर से ये जो वॉर का सीजन है ये शुरू हो गया, वॉर शुरू हो गई है जिसने इकॉनमी को मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख दिया है। हर बंदे का कैश फ्लो रुक गया है, बेयकीनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन एक बात याद रखें कि ये भी एक बिजनेस है, वॉर जो है ये भी एक बिजनेस है, उन्होंने अपना असला बेचना है, इसलिए जंग लगना भी ये भी एक बिजनेस का हिस्सा है। तो इसको एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन लेते हुए अगर कर्जे का बोझ आप पे आ गया इस टाइम पे, और कर्जे का बोझ अर्शद भाई ऐसा स्ट्रेस है नॉर्थ अमेरिका में कि ये आपकी सबसे पहले सेहत को जरूर खराब कर देगा। वही चीजें जो आपको आप 5 साल 10 साल बाद जाके डायग्नोज होनी है, वो आपको 5 से 10 साल पहले डायग्नोज हो जाएंगी इस स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि कर्जे का स्ट्रेस बहुत बड़ा स्ट्रेस है। जिस बंदे पे कर्जा आया होता है, हम डेली बेसिस पे ये देखते हैं कि उनकी क्या मेंटल सिचुएशन हुई है, वो किस हद तक अनरेस्ट हुए हैं स्ट्रेस की वजह से, कितनी उनकी स्लीपलेस नाइट्स चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप आ रहे हैं तो मेरा आपको मशवरा ये है, देखिए मेरा बिजनेस है ये इस बारे में एडवर्टाइज करना, लेकिन अगर कर्जा आप पे आ गया है तो इसको फौरी तौर पर अपने से अलग करें। ये ऐसा कैंसर है जो आपकी सारी खुशियों को तबाह बर्बाद कर सकता है, ये ऐसा स्ट्रेस है। तो इसलिए अगर कर्जा सिर पे आ गया है, वाइल इन रोम डू एज द रोमन डू, ये कानून इसीलिए बना हुआ है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकें, और इसको इस्तेमाल करने में मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प कर सकता हूँ। हमारी कंसल्टेशन अर्शद भाई बिल्कुल फ्री है, कनाडा भर में आप कहीं पे भी मौजूद हैं या कनेडियन कर्जा लेके आप यूएस में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में आपके कोई रिश्तेदार हैं, किसी भी दुनिया के हिस्से में आप मौजूद हैं, हम आपकी फाइल को प्रोसेस करने में आपकी मदद कर सकते हैं। मेरा रबते का नंबर 905-783-1922 905-783-1922 है। अर्शद भाई टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया,
2: थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीक आपसे फिर बात करते हैं, थैंक यू। नंबर नोट करें 905-783-1922 905-783-1922।
1: आप प्रिंटिंग करवाएं सबसे बेहतरीन रेट्स पर, सिर्फ $239 में हासिल करें दो रोल अप बैनर्स और सिर्फ $399 में 10,000 हाफ पेज फ्लायर्स। चाहिए ब्रांडिंग का मुकम्मल हल तो ले आएं कस्टम टेंट कनोपी सिर्फ $899 में, और बिजनेस की जबरदस्त प्रमोशन के लिए 10,000 डोर हैंगर सिर्फ $999 में। मौका हाथ से ना जाने दें, अभी कॉल करें 416-710-6777, इट्स 416-710-6777।

0: रेड पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 FM एक बार फिर ले चलेंगे आपको मीठा फर्नीचर होलसेल गैलरी पर। मीठा हमारे साथ मौजूद हैं मिसागा ब्रामटन और इसके साथ साथ आपके इल्म में है स्कारब्रो और अब आपके लिए लंदन ओंटारियो में भी इसकी फिफ्थ लोकेशन इनकी ओपन होने जा रही है। फोर्थ लोकेशन इनकी कैम्ब्रिज में है। 416-901-2810 रबते का नंबर है। चारों लोकेशन के लिए मीठा फर्नीचर .com इनकी वेबसाइट है। मेरे साथ वेलकम योगेंद्र सर।
1: थैंक यू वेरी मच जी और सभी सुनने वालों को मेरी गुड इवनिंग नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मदर्स डे आने वाला है संडे। सभी जो मेरी बहनें सुन रही हैं जो बड़ी हैं मेरी उम्र से बड़ी हैं, बड़ी बहनें भी माँ तुल्य होती हैं और छोटी बहनें जिनको माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त है, मेरी बेटियाँ जिनको माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त है, सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऊपर वाले से यही दुआ प्रार्थना कि आपकी सेहत अच्छी रहे, आपका अपने परिवार के साथ प्यार बना रहे और मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का ताया चाचा मामा जो भी रिश्ता बनाए, बड़ा भाई छोटा भाई, मैं भी आपने बहुत प्यार मुझे दिया है भट्टी साहब के मार्फत। उसका क्रेडिट तो भट्टी साहब को जाता है
0: क्योंकि
1: हमारे को आपके साथ जोड़ने वाले भट्टी साहब हैं। तो रही बात मिड्डा फर्नीचर की, तो आपकी दुआओं से चार लोकेशन से चल रहे थे, पांचवीं अब खोलने जा रहे हैं और 10% किसी भी प्राइस को एडवर्टीज को बीट करते थे 12%। तो कोशिश भट्टी साहब अब जो इस 2026 में जो मैंने कहते हैं ना मैनिफेस्टो बनाया वो ये बनाया कि आपको हाई एंड बचत भी उसी में होती है भट्टी साहब कि जैसे कोई 3000 वाली चीज आपको 2000 में मिल जाए और लंबी चले भी सही, सुंदर भी लगे और पायबंद भी हो, लंबी भी चले। मतलब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि सस्ते वाली, कई बार आप मैं आई थिंक जितने भी आए हम इमिग्रेंट आए सभी ने हो सकता है किसी यार दोस्त से भी फर्नीचर लेके गुजारा कराओ या बड़ा काम चलाओ जिसे कहते थे हमने लिया हो, लेकिन जब आदमी मेहनते करके जब कमा लेता है तो फिर बंदे का मन करता है खर्च करने को। तो हमने फिर वो कोशिश करी कि बचत भी हो, बचत तो हर किसी को अच्छी लगती है कि हम घर लेने जाए चाहे 5 मिलियन का घर ले रहे हो, अगर हमें वो सस्ता मिल जाए 50,000, 10,000, 2,000 तो क्या हम बचत नहीं करते? तो वो बचत अलग चीज है लेकिन अच्छी चीज अच्छी चीज होती है। तो जैसे एशले के सेक्शन में मैंने कहा कि वो वाले ऐड कर रहे हैं, हमने मैट्रिसेस ऐड कर रहे हैं, मेपलवुड की डाइनिंग्स ऐड कर रहे हैं और लिबर्टी और मैग्नासन को भी कंटेनर में, क्योंकि यूएस में भट्टी साहब वियतनाम से जो आइटम आती है वहां टैरिफ लग गया, यूएस से यहां मंगवाते हैं तो कॉस्ट ही 50% बढ़ रही है, तो उसको भी कंटेनर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी एक महीने से हम 2 महीने के अंदर, मतलब मैंने आज मोटिव दे रहा हूँ कि मदर्स डे है तो मुझे भी ब्लेसिंग मिल जाए कि जो हम नया कुछ करने जा रहे हैं तो उसके ऊपर आप बहन भाइयों का माओं का हमें भी अगर आशीर्वाद मिलेगा तो हम भी सक्सेस मिलेगी और आपके घर में बहुत अच्छा फर्नीचर आने वाला है। तो बी एशले, एशले का भी ने पिछले लिंक में 779 बोला था, डाइनिंग आई है D984 और उनकी आपकी बहुत सस्ती है, फॉर्मल डाइनिंग टेबल की बात है, सिंटर स्टोन की डाइनिंग टेबल हमारे पास भट्टी साहब पहुंची है, सिंटर स्टोन पे स्क्रैच नहीं लगता, मतलब जैसे मार्बल पे कई बार लग जाता था, सिंटर स्टोन स्क्रैच रेजिस्टेंस हीट रेजिस्टेंस वाटर, तो वो उसमें हमारे पास 599 से लेके और अप हर प्राइस रेंज है, फॉर्मल डाइनिंग टेबल भी है उसमें और सोफा तो कस्टम मेड ब्रैम्पटन में आज बच्चे एक लगा रहे हैं 104 इंच का सोफा। तो ये ना सोच ले सुनने वाले कि 104 अगर आपको उसे 80 इंच में बनाना है हम 80 इंच में बना देंगे, आपको अगर 80 इंच से छोटा तो कोई बनवाता नहीं सोफा, मतलब अगर आपको 120 में बनाना है 120 में बना देंगे, तो लेकिन वाव कर उठेंगे आप भी। और क्वेश्चन फोम का साइज है 12 इंच की फोम डाली है, सैग ही नहीं करेगी, मतलब उम्र दर उम्र आपके वो चलता, मतलब जैसे सालों साल चलता रहेगा। तो ये है मिड्डा फर्नीचर और प्राइस तो भट्टी साहब जैसे आप बताते रहते हैं मैं बता रहा हूं आपको कि आप कंपेयर करें तब विश्वास करें, रिश्ता तभी मजबूत बनेगा, अदरवाइज तो मेरी भी आपको ये बात एडवर्टीज की तरह ही लगेगी कि ये किस तरह बोल रहे हैं, नहीं हम जो बोलते हैं वो करते भी हैं और आपको प्रूफ भी देते हैं और उस होनेस्टी से करने से हमें आपका प्यार ज्यादा मिला। तो ताकि हम फिर मैं रेडियो पे भी वही बात करता हूँ जो भट्टी साहब और मैं पर्सनली मिलके करते हैं या आपसे अगर फैमिली आपके फैमिली रूम में या मेरे फैमिली रूम में बैठ के ऐसे जैसे बहन भाई आप बात करते हैं वैसे करते हैं और हमें इसका फायदा मिला है भट्टी साहब, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और ऊपर वाले की इनायत रही तो आगे और ऐसे भगवान करे सभी को तरक्की मिले, पर हमें आपकी वजह से मिली है तो सारा क्रेडिट गोज टू यू गाइस एंड ये प्यार बना रहे। और फिर दोबारा से मदर्स डे की शुभकामनाएं सभी को। और रही बात डील की। हाँ, मैं जाते जाते डील क्या देना चाहूँ, मैं डील यही है कि भट्टी साहब माँ को मैंने जैसे पिछले लिंक में कहा था, माँ तो इतने में खुश हो जाती है कि तूने दवाई खाई कि नहीं खाई, मतलब जो मेरे मेरी उम्र के जैसे हम कहते हैं माँ जिनकी बुजुर्ग होगी या यंग बच्चे भी माँ को अगर स्माइल भी कर देना तो माँ तो उसने में भी खुश हो जाती।
0: बिल्कुल सही।
1: छोटा नन्ना बच्चा होता है माँ के ऊपर पोटी कर देता है, माँ के ऊपर सुसु कर देता है, फिर माँ फिर भी खुश हो रही होती है उसकी कलकारियों से। माँ तो वो माँ तो रब का रूप है, तो माओं को मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन मैं वो फूलों का गुलदस्ता तो ला सकता हूँ आज से लेके और संडे तक, रादर मंडे तक, जो भी मेरी माँ अपने परिवार को लेके या अपने लिए, क्योंकि माँ तो परिवार के लिए ही करती है सारा कुछ, फर्नीचर लेने आएगी, अगर माँ मुझे कहेगी, माँ का मतलब चाहे वो मेरे से उम्र में बड़े हैं या छोटी जो माँ है जिनको मदर्स डे जो मना रहे हैं, अगर वो मुझे कॉस्ट में भी कुछ मेरी ऑफर करेंगे कि पवन भाई अंकल मैंने तो ये प्राइस ही देके जानी है, तो उनकी वो जो ऑफर है वो इनकार नहीं की जाएगी। ये मदर्स डे का मेरी तरफ से गिफ्ट है, मेरी तरफ से ये गिफ्ट, मैं छोटा वर्ड कहूंगा, मैं कहूंगा एक छोटा सा फूलों का गुलदस्ता है और उनको नमन करते हुए जो आप कहेंगे कि पवन भाई ये हुज से ये देना है, माँ मुझे पता है मेरा नुकसान नहीं करा सकती, कॉस्ट से नीचे नहीं बताएगी, और मेरी कॉस्ट ईमान से जो कॉस्ट होगी अगर हमें देना पड़ा तो हम आपको जरूर आपके घर फर्नीचर पहुंचा देंगे। तो आए, हमें अपना बनाए, हमें बहुत अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा। मिड्डा फर्नीचर पर आकर 416-901-2810, 416-901-2810। थैंक यू वेरी मच,
0: बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे बात करते हैं। थैंक यू। अच्छा जनाब, नंबर नोट कर लें, 416-901-2810, 416-901-2810, metafurniture.com इनकी वेबसाइट है। और लीजास कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल सिर्फ दो दिन बाकी हैं, अब 8, 9 और 10, तीन दिन आज आधा वक्त हो चला, और इस वक्त जो है वो 8 बजे तक थी कि वे नाज थी, और कल और परसों तशरीफ ले जाइए, अप टू 80% सेविंग आपको मिलेगी। बेशुमार आइटम्स हैं, ब्रांड नेम आपको कॉस्मेटिक्स, हेल्थ एंड ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल हेयर केयर और ब्रांड नेम परफ्यूम्स आपको मिलेंगे, और स्पेशली मदर डेज के हवाले से बहुत ही स्पेशल इनके पास गिफ्ट हैं। आप तशरीफ ले जाइए 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कहम में, फाइन चॉकलेट्स और डिज़ाइनर सनग्लासेस की